मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 31 सेकंड्स हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा और इस सुहानी सुबह में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हर नई सुबह अपने साथ लेकर आती है नई उमंग, नए विचार और ढेर सारा मनोरंजन, उसके साथ सकारात्मक विचार। और नमस्कार लखनऊ के इस खूबसूरत सफर में हम हैं आज आपके साथ, इस सफर को और भी खास बनाने और भी सुहाना बनाने। तो चलिए निकल पड़ते हैं आज के इस शानदार सफर पर, लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया की ताजा हलचलों पर एक नजर डाल लेते हैं। सुबह के 6 बजने को है, आइए जान लेते हैं क्या कुछ हुआ देश विदेश में समाचारों के माध्यम से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके

0: और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग शो नमस्कार लखनऊ में। दोस्तों, सुबह के 6:05 हुए हैं और समय है कृषि चर्चा का। कार्यक्रम में आज सुनिए आम की सघन बागवानी, इस विषय पर डॉक्टर देवेंद्र पांडे से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता।
4: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आम की सघन बागवानी जहां करना चाहते हैं तो इसकी उन्नत तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी

0: जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र पांडे साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां आम की सघन बागवानी करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है आपकी?
1: जैसा कि सघन बागवानी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम जो है बौनी किस्मों का चयन करें। बौनी किस्मों में जो अम्रपाली है, मल्लिका है, और हमारे संस्थान से अभी दो किस्में निकली हैं, अंबिका और अरुणिका, और ये सारी किस्में जो हैं बौनी भी हैं और साथ साथ हर साल फसल देती हैं। क्योंकि आम में जो अल्टरनेट बेरिंग वाली किस्में जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा है, इनकी सघन बागवानी उतनी सफलतापूर्वक नहीं की जा सकती है जितना कि जो हर साल फसल देती हैं किस्में उनकी हो सकती है। दूसरा ये रहता है कि सघन बागवानी के लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो है ठीक प्रकार से उनको लगाना और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग प्रूनिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि जो है हम उसको सघन में छोटे में पौधों को रख सकें। तो उसके लिए जो है कटिंग और प्रूनिंग और ट्रेनिंग जो है हर साल जो है हम लोग को फसल लेने के तुरंत बाद प्रूनिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो है पौधा छोटा रहता है और हर साल फसल देता है।
0: तो शुरुआत करें कि जहां लेआउट करना है तो क्या अभी भी गुंजाइश है?
1: अब इस समय तो थोड़ा विलंब हो गया है। लेआउट का असली समय रहता है कि मई जून के महीने में हम खेत जहां कि सघन बागवानी करना है उस खेत को अच्छी तरह से जोत लेते हैं, जोत के उसको कुछ दिन 15 दिन के लिए खुला छोड़ देते हैं ताकि उसमें जो कीड़े मकोड़ों के लार्वा हों वो मर जाएं। उसके बाद आपको जितनी दूरी पर सघन बागवानी करना है, जैसे अमरपाली अगर आप लगाते हैं तो 2.5 × 2.5 मीटर पे हम लोग प्लांटेशन करते हैं IRI में, इस पे शोध भी हुआ है पूसा में, तो उसके आधार पर। उसके अलावा जो है हमारे संस्थान ने जो है दशहरी के लिए भी सघन बागवानी की पर कार्य किया है, लेकिन वो अति सघन या सघन में नहीं आएगा, 5 × 5 मीटर की दूरी पर दशहरी को लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से नाप के रेखांकन कर लीजिए, रेखांकन करने के बाद जो है मई जून के महीने में उसमें करीब 50 से लेकर 60-70 सेंटीमीटर तक का, अगर 5 × 5 है तो 60-70 सेंटीमीटर का, और अगर 2.5 × 2.5 है तो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर का गड्ढा खोद के, और गड्ढे की आधी मिट्टी एक तरफ रखें, आधी मिट्टी दूसरी तरफ रखें, ऊपरी आधी मिट्टी में जो है आपको 20 से 30 किलो सड़ी गोबर की खाद और आपको 100 ग्राम 50 हेप्टाक्लोर डस्ट जो आती है वो कुछ गड्ढे की सतह पर बुरका दें और कुछ उस मिक्सचर में बुरका के गड्ढे की भराई कर दें। और भराई करते समय ध्यान ये रखें कि गड्ढा जमीन से 10 सेंटीमीटर ऊंचे भरा हो, ताकि जब हम उसमें पौधरोपण कर सिंचाई करेंगे तो धीरे धीरे बैठेगा, और अगर बराबर की सतह पे भर दिया है और पौधा लगाएंगे तो सिंचाई करेंगे तो गड्ढे के पास पेड़ जहां लगाते हैं उसके पास जो है गड्ढा हो जाएगा और पानी वहां इकट्ठा होगा, जिससे कि जो है पौधों में सड़न होने की संभावना रहेगी।
0: डॉक्टर साहब, जहां रेखांकन हो चुका है तो पौधों की रोपाई चल रही है, क्या रंगीन प्रजातियों की भी सघन बागवानी संभव है?
1: तो हमारे यहाँ से जो दोनों किस्में निकली हैं, अंबिका और अरुणिका, दोनों रंगीन हैं, ड्वार्फ हैं, और अंबिका थोड़ा सा कम डॉर्फ है और उनका उससे ज्यादा डॉर्फ है, और हर साल फलत देती है और रंगीन भी है और लेट मैच्योरिंग भी है, जो ये करीब अगस्त में जाके पकती हैं,
0: यानी बाजार में अच्छी संभावना है।
1: हाँ, क्योंकि शुरू में जो है दशहरी, लंगड़ा, चौसा आता है, उसके बाद ये जो है चौसा के साथ साथ आती है ये किस्में हमारी जो है।
0: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे आम की सघन बागवानी के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 94-155-16-557 94-155-16-557 94-155-16-557।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं बागवान भाइयों बहनों का आम की सघन बागवानी के बारे में? डॉक्टर साहब,
1: सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि किसान भाई जो अच्छी किस्में हैं और अच्छी जगह से खरीदें, और जो हमारी किस्में हैं अंबिका है, अरुणिका है, अम्रपाली और मल्लिका, ये चार किस्में हैं जिनकी सघन बागवानी अच्छे तरीके से हो सकती है। और उसके लिए दूरी का चयन जो है किसान के ऊपर निर्भर करता है, अम्रपाली 2.5 × 2.5, बाकी मल्लिका 3 × 4 के हिसाब से, और अगर अंबिका अरुणिका है तो इसका 3 × 3 या 4 × 4 करें तो ज्यादा अच्छा है।
0: डॉक्टर देवेंद्र पांडे साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और किसान भाई बहन आम की सघन बागवानी कैसे करें, कब करें और क्या क्या इसके फायदे हैं, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आम की सघन

बागवानी, इस विषय पर डॉक्टर देवेंद्र पांडे से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता। इसी के साथ कृषि चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: वीडियो वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने आज का सुविचार सत्य आलेख वचन।
1: सत्य एक शाश्वत मूल्य है जिसका आश्रय लेने वाला व्यक्ति सदैव विजयी होता है। इसी कारण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद का प्रमुख वाक्य है। सत्य शब्द संस्कृत भाषा के सत शब्द से यथ प्रत्यय लगकर बना है, जिसका अर्थ है वास्तविकता, यथार्थ। दार्शनिक और आध्यात्मिक संदर्भों में यह वह शाश्वत और अपरिवर्तनीय स्थिति है जो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में निर्बाध रहती है। सनातन धर्म और उपनिषदों के अनुसार जो कभी नहीं बदलता और तीनों कालों में एक जैसा रहता है, वही सत्य है। व्यावहारिक दृष्टि से यदि विचार करें तो सत्य का अभिप्राय है किसी भी घटना, वस्तु या परिस्थिति को ठीक उसी प्रकार में स्वीकार करना और प्रस्तुत करना जैसी वह वास्तव में है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, नहीं सत्यात् परो धर्मः। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरित मानस में लिखते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। महात्मा गांधी सत्य को जीवन का सर्वोच्च व्रत मानते थे। वो कहते थे सत्य ही ईश्वर है। उनके अनुसार जो विचार, वाणी और कर्म से शुद्ध हो और किसी को नुकसान न पहुंचाए, वही सच्चा आचरण है। सत्य का अर्थ केवल सच बोलना ही नहीं, अपितु किसी भी अन्याय या अनुचित बात के सामने न झुकना और अहिंसक तरीके से वास्तविकता व न्याय के लिए संघर्ष करना सत्याग्रह है। शास्त्रों में सत्य की महत्ता को अत्यंत श्रद्धा एवं आदर के साथ स्वीकार किया गया है। व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, किंतु कभी भी अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। भाव यह है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन उसे इस तरीके से बोलना चाहिए कि वह न तो दूसरों के लिए अप्रिय हो और न ही हम असत्य बोलकर किसी को पीड़ा पहुंचाएं। सत्य बोलते समय भी संयम और अहिंसा का पालन आवश्यक है। तैत्तिरीय उपनिषद में सदैव सत्य बोलने और धर्म के आचरण करने की शिक्षा दी गई है। सत्यम वद धर्मम चर, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसे पहली बार 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। सर्वविदित है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सत्य का आश्रय लेकर जगत में प्रसिद्ध हो गए। यद्यपि उनके जीवन में अनेक संकट आए, किंतु वे सत्य के मार्ग से जरा सा भी विमुख नहीं हुए। रघुकुल के राजाओं की यह गौरवशाली परंपरा रही है कि चाहे प्राण भले ही चले जाएं, किंतु वे सत्य के मार्ग से किंचित भी विचलित नहीं हुए। इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी की यह चौपाई अत्यंत हृदयग्राही है। रघुकुल रीति सदा चलियाई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। यद्यपि सत्य का पालन करने वाले व्यक्ति के सामने कठोरतम विपत्तियां, समस्याएं आती हैं, किंतु वह अपने पथ से कभी अलग नहीं होता। सत्य की ही सदैव विजय होती है। सच का सदा बोल है बाला, झूठे का मुंह हो नितकाला। कबीर की यह उक्ति सदैव प्रासंगिक रहेगी। सत्य बोलने से आत्मविश्वास में वृद्धि, विचारों की दृढ़ता एवं निर्भयता आती है। इसके विपरीत असत्य भाषण पाप माना जाता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप,

0: जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जीवन में सत्य का बर्ताव करने से ही भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार मानव जीवन के लिए सत्य का अनुपालन अत्यंत श्रेयस्कर है।
1: अभी आपने सुना आज का सुविचार सत्य। आलेख एवं वाचन था डॉक्टर सूर्य प्रकाश शुक्ला का। श्रोताओं, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं मॉर्निंग शो नमस्कार लखनऊ। हम सभी को जीवन की सभी कष्टों और समस्याओं का समाधान केवल ईश्वर की शरण में ही मिल सकता है। इसलिए आइए सुबह सवेरे हम भी चले उनकी शरण में और करें उस परमपिता परमेश्वर की आराधना।

श्रोताओं नमस्कार। सावन का पावन महीना आरंभ हो चुका है और कहते हैं इस माह में शिव की महिमा और बढ़ जाती है। यूं भी उनकी महिमा तो अनंत है, उनका स्वरूप स्वयं प्रकाश का प्रतीक है। शिव की महिमा अपरंपार है, जो त्रिलोक के अधिपति हैं, जिनका तेज स्वयं सूर्य को भी मात देता है। तो आइए सुबह सवेरे आराधना का आरंभ करें, उन्हें नमन करते हुए, उन करुणा के सागर को प्रणाम करते हुए जो कैलाश के वासी हैं।

श्रोताओं, सावन हो या कोई भी पावन बेला, भगवान शिव का स्मरण मन को शांति और नई ऊर्जा से भर देता है। आइए भोलेनाथ की महिमा का गुणगान करता एक और पावन भजन सुनें।

ओम नमः शिवाय तू जप ले मन। जी हां श्रोताओं, भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। श्रोताओं, ईश्वर एक है, उनके रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं, उनकी भक्ति के मार्ग भी अनेक हैं, किंतु भक्ति तो वही सच्ची है जो मन को निर्मल करे और हृदय को उनसे जोड़ दे। तो आइए उस सर्वव्यापक ईश्वर को हम सब सच्चे हृदय से प्रणाम करते हुए ये भजन सुनें।

राम सीता तथा लक्ष्मण ने पर्णकुटी छवाई और एक बार पुनः सुख शांति पूर्वक निवास करने लगे। लक्ष्मण जी ने अग्रज को अपना स्वामी जानकर उनसे ज्ञान, वैराग्य और उस माया का वृत्तांत पूछा जिसके वश में होकर प्रभु भक्तों पर दया करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थी शोभा जोशी और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को हम बता दें, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः गतसायं ईरानदेशस्य विदेशमन्त्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह दूरभाषया वार्तालापम् अकरोत्। अस्मिन् वार्तालापे सः अस्मिन् क्षेत्रे प्रवर्तमानायाः शत्रुतायाः विषये भारतस्य गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतस्य पदकसंख्या 23 यावत् वर्धिता, यस्मिन् 5 स्वर्णपदकानि, 12 रजतपदकानि, 6 कांस्यपदकानि च सन्ति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग शो नमस्कार लखनऊ। श्रोताओं, प्रातः के 7 बजे है और समय है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का। कार्यक्रम में आज सुनिए नीना सोनकर से जानकारी, विश्व स्तनपान सप्ताह, माँ और बच्चे दोनों के लिए अमृत समान।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ नीना सोनकर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम स्वास्थ्य चर्चा। श्रोताओं, आज का विषय बेहद कोमल है लेकिन उतना ही सशक्त और जीवन को आकार देने वाला भी है। ये विषय है स्तनपान। एक माँ की गोद से निकलता हुआ वो पहला पोषण जो किसी शिशु को जीवन का पहला सहारा देता है, और इसी भाव को समर्पित है विश्व स्तनपान सप्ताह जो हर साल 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। ये सप्ताह सिर्फ एक जागरूकता अभियान नहीं है, ये एक स्मरण है, एक सराहना है और एक सामाजिक जिम्मेदारी की पुकार भी है। स्तनपान का अर्थ केवल दूध पिलाना नहीं होता है, ये एक जीवन की प्रक्रिया है। जब एक नवजात शिशु अपनी माँ की गोद में आता है और पहली बार माँ का दूध पीता है तो वो केवल भूख नहीं मिटा रहा होता है, वो जीवन का पहला पाठ पढ़ रहा होता है, सुरक्षा, स्नेह, जुड़ाव और पोषण का पाठ। माँ का दूध शिशु के लिए प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण और परिपूर्ण भेंट है, जिनमें न केवल उसकी शारीरिक जरूरतें पूरी होती हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक आधार भी मिलते हैं। माँ के दूध में पाए जाने वाले तत्व इतने विशिष्ट होते हैं कि विज्ञान भी उनका विकल्प नहीं खोज पाया है। इसमें मौजूद कोलेस्ट्रॉल, जिसे पीला दूध या पहला दूध भी कहा जाता है, एंटीबॉडीज से भरपूर होता है जो नवजात के भीतर प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक शक्ति का निर्माण करता है। ये उसे सर्दी, खांसी, दस्त, कान के संक्रमण जैसे सामान्य रोगों से बचाने में मदद करता है। और खास बात तो ये है कि ये गुण उस विशेष शिशु की जरूरतों के अनुसार खुद माँ के शरीर में बनते हैं, यानी ये पूर्णता व्यक्तिगत, जैविक और जीवनदायी पोषण है। श्रोताओं, अब हम बात करें माँ के स्वास्थ्य की, तो स्तनपान केवल बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं होता है बल्कि माँ के लिए भी कई पर लाभकारी है। प्रसव के बाद स्तनपान कराने से गर्भाशय तेजी से अपने सामान्य आकार में लौटता है, शरीर में अतिरिक्त फैट और कैलोरी कम होती है और लंबे समय तक स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी कम होता है। साथ ही ये एक मानसिक रूप से संतुलित अनुभव भी है जिससे माँ के भीतर अपने नवजात के प्रति गहरा जुड़ाव पैदा होता है और अवसाद की संभावना बेहद कम हो जाती है। लेकिन श्रोताओं, जब हम इस विषय की महत्ता की बात करते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि हम उन सामाजिक और मानसिक बाधाओं की भी चर्चा करें जो स्तनपान को चुनौती बनाती है। बदलते समय में, शहरी जीवन की आपाधापी में, ऑफिस और घर की दोहरी जिम्मेदारियों में फंसी महिलाएं स्तनपान के लिए समय और स्थान दोनों से संघर्ष करती हैं। कई बार सामाजिक दबाव या जानकारी की कमी के कारण वे बच्चों को यानी अपने शिशु को फॉर्मूला दूध देना शुरू कर देती हैं, ये मानते हुए कि ये पर्याप्त है, लेकिन यहीं पर हमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है। स्तनपान को लेकर शर्म या असहजता नहीं बल्कि सहयोग और सहानुभूति की जरूरत होती है। जब परिवार में सास, पति या अन्य सदस्य ये समझते हैं कि माँ को स्तनपान के लिए आराम, पौष्टिक आहार और मानसिक शांति चाहिए, तभी ये यात्रा सुखद बनती है। कार्यस्थलों को भी चाहिए कि वे मातृत्व को बोझ नहीं बल्कि जीवन रचने का सम्मान माने और स्तनपान के लिए सुविधाएं प्रदान करें। वर्किंग मदर्स के लिए दूध संग्रहण और सुरक्षित रखने की

0: व्यवस्था, ब्रेक टाइम और अलग स्थान देना एक अत्यंत संवेदनशील कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविकाएं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से मां को स्तनपान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गर्भावस्था के दौरान ही स्तनपान की जानकारी भी दी जा रही है ताकि माँ मानसिक रूप से तैयार हो और प्रसव के तुरंत बाद स्तनपान की शुरुआत हो सके। श्रोताओं, एक खास बात ये भी है कि माँ का दूध केवल शारीरिक पोषण नहीं देता है, ये बच्चे के मस्तिष्क के विकास में भी अहम भूमिका निभाता है। रिसर्च से ये साबित हुआ है, ये सिद्ध भी हुआ है कि जो बच्चे 6 महीने या उससे अधिक समय तक स्तनपान करते हैं उनकी IQ यानी बौद्धिक क्षमता अधिक विकसित होती है, वे भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं और आगे चलकर उनमें सामाजिक व्यवहार की समझ भी अधिक होती है। श्रोताओं, माँ और बच्चे के बीच का ये जुड़ाव इतना अनमोल होता है कि इसे किसी भी कृत्रिम विकल्प से बदला नहीं जा सकता। माँ का दूध शिशु के लिए सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एक कवच है और ये कवच माँ के हृदय से बनता है बिना किसी लागत के लेकिन अपार मूल्य के साथ। तो आइए इस विश्व स्तनपान सप्ताह पर हम ये निश्चय करें कि हम हर माँ को ये भरोसा देंगे कि वो अकेली नहीं है, परिवार, समाज और शासन सभी उसका साथ देंगे। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: विश्व स्तनपान सप्ताह, माँ और बच्चे दोनों के लिए अमृत समान। आज की स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे ये जानकारी नीना सोनकर से। इसी के साथ अब स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज रात 8 बजे से सुनिएगा संसद समीक्षा। रात्रि 9:30 से आप सुनेंगे राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती। कार्यक्रम में आज वृत्त चित्र सुनिएगा आजादी का काव्य पथ। रात्रि 10 बजे से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। श्रोताओं, ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल में सुनिएगा सिद्धार्थनगर और सोनभद्र जिलों की खबरें। प्रातः 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के तहत समाप्त फरमाइएगा आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश में नगमगी। सदाकार होंगे सुरेंद्र राजेश्वरी। लोकरंग और लोकमाधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे राम कुमार व साथियों का आल्हा गायन। लोकरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 9:50 पर और लोकमाधुरी कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा दिन में 2:45 से। बहने सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन दिन में 1:15 से। 2:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा भेंटवार्ता दलहनी फसलों में सामयिक प्रबंधन। इस विषय पर अखिलेश कुमार सिंह से भेंट कर बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

हमारी सायकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे से। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 से। शाम 5:45 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा नई उड़ान। शाम 6:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम लोकायतन। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर कृष्णमणि चतुर्वेदी की वार्ता। विषय होगा लोकगीतों के सावन।

शाम 6:50 पर कार्यक्रम होगा खेती किसानी। 7:33 पर सुनिएगा विज्ञान जगत। एआई और एडवांस तकनीक से स्मार्ट होता ई गवर्नेंस, इस विषय पर डॉक्टर जीशान अली सिद्दीकी से प्रवीण कुमार की भेंट वार्ता आप सुन सकेंगे। आज प्रातः 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम आज सुबह। रात्रि 8:15 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे अनुराधा पौडवाल के गाए भजन, और अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

सभी श्रोताओं को रिंकी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम विविधा में। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संपत्ति या उसकी सत्ता नहीं, बल्कि उसके जागरूक और आत्मसम्मानी नागरिक होते हैं। जब लोग अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझने लगते हैं, तब इतिहास एक नया अध्याय लिखता है। जी हाँ, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी एक ऐसा अध्याय है जिसने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया और दुनिया को अहिंसा की अद्भुत शक्ति से परिचित कराया। आज विविधा के सफर में हम बात करेंगे उसी प्रेरणादायी अध्याय की, क्योंकि आज यानी 1 अगस्त को है असहयोग आंदोलन दिवस। दोस्तों, हर आंदोलन के पीछे कोई ना कोई पीड़ा होती है। उस समय देश का वातावरण निराशा और आक्रोश से भरा हुआ था। लोगों को लगने लगा था कि उनकी भावनाओं और अधिकारों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। अनेक घटनाओं से जनता के मन को गहराई से आहत लगी थी। ऐसे समय में महात्मा गांधी जी ने एक बिल्कुल अलग रास्ता सुझाया। वो दौर था सन 1920 का। उन्होंने कहा, यदि अन्यायपूर्ण शासन जनता के सहयोग से चलता है तो जनता शांतिपूर्वक अपना सहयोग वापस लेकर भी उसका विरोध कर सकती है। और आप जानते हैं, यही विचार आगे चलकर असहयोग आंदोलन का आधार बना। यह आंदोलन किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध था और इसका उद्देश्य आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार प्राप्त करना था। धीरे धीरे पूरे देश में एक नई चेतना फैलने लगी। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू किया, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना सम्मान की बात बन गया। अब खादी केवल वस्त्र नहीं रहा, बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय शिक्षा की ओर कदम बढ़ाए। अनेक लोगों ने सरकारी सम्मान और सुविधाओं का त्याग तक कर दिया और समाज के हर वर्ग ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस आंदोलन में भागीदारी निभाई। दोस्तों, यही वो समय था जब स्वतंत्रता केवल नेताओं का सपना नहीं रही, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की सामूहिक आकांक्षा बन गई। आपको बता दें, असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी व्यापकता थी। गांव हो या शहर, किसान हो या व्यापारी, विद्यार्थी हो या महिलाएं, हर किसी ने महसूस किया कि देश की आजादी केवल किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि

ही पूरे समाज का कर्तव्य है। असहयोग आंदोलन की सफलता केवल इस बात में नहीं थी कि उसने अंग्रेजी शासन का विरोध किया, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ही यही थी कि उसने भारतीय समाज में आत्मविश्वास जगाया। उसने लोगों को यह एहसास कराया कि यदि समाज एकजुट होकर शांतिपूर्वक और जिम्मेदारी के साथ खड़ा हो जाए तो बड़े से बड़ा परिवर्तन संभव है। आज हमें किसी विदेशी शासन से असहयोग नहीं करना है, लेकिन हमें उन बुराइयों से अवश्य असहयोग करना है जो समाज और देश को कमजोर करती है, जैसे भ्रष्टाचार, भेदभाव, हिंसा, गंदगी, पर्यावरण की उपेक्षा और सामाजिक असंवेदनहीनता। दोस्तों, यदि हम सब ईमानदारी से अपना काम करें, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करें, सार्वजनिक संपत्ति को अपना मानकर उनकी रक्षा करें, नियमों का पालन करें और समाज में सद्भाव बनाए रखें, तो यही उस आंदोलन की भावना को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। याद रखिए, आजादी केवल अधिकार नहीं देती बल्कि हमें जिम्मेदारियां भी सौंपती है, और जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझता है तभी राष्ट्र प्रगति करता है। तो श्रोताओं, असहयोग आंदोलन दिवस हमें ये याद दिलाता है कि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा हमारे अपने निर्णयों से होती है। जब इरादे सच्चे हो, उद्देश्य स्पष्ट हो और मार्ग अहिंसा तथा सत्य का हो, तब इतिहास भी नई दिशा ला देता है। आइए आज हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम को नमन करें जिन्होंने हमें स्वतंत्र भारत का गौरवशाली वर्तमान दिया है। साथ ही ये भी संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हुए एक जागरूक, संवेदनशील और सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इन्हीं विचारों के साथ अब मुझे यानी रिंकी शर्मा को आज की विविधा से दीजिए अनुमति। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर

0: टास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। वर्ष 2031 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों में उत्साह, केंद्र सरकार के प्रति जताया आभार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होगा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से किया हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर सहभागिता का आह्वान। 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य। और श्रावण मास में मंदिरों और शिवालयों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। इस अवधि के दौरान इस योजना के लिए कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के माध्यम से डीबीटी द्वारा पात्र किसान परिवारों को समय पर और पारदर्शी आय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों को कृषि निवेश बढ़ाने और अपनी आजीविका को मजबूत करने में मदद मिल रही है।
3: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
2: प्रदेश के किसानों ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। जौनपुर के किसान श्याम दत्त ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत दी गई सहायता से किसानों को कृषि आवश्यकताओं से जुड़ी चीजें खरीदने में बहुत मदद मिलती है।
4: ये जो हमें एक पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है, मैं अपनी किसान से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता हूँ। मैं इसी पैसे से बीज खरीद लेता हूँ, इसी पैसे से खाद खरीद लेता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने किसान सम्मान निधि को आगे तक बढ़ाया है।
2: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की बढ़ी हुई सहायता को भी मंजूरी दे दी है। स्वीकृत बजट पिछली खेलो इंडिया योजना की तुलना में लगभग 8 गुना है। केंद्रीय कैबिनेट ने 5,070 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देशभर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आगामी 25 से 29 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, नवाचार उत्पादों और निर्यात सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। एक रिपोर्ट।
5: ट्रेड शो के चौथे संस्करण में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत B2B खरीदारों, करीब 4.5 लाख से अधिक B2C आगंतुकों और 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 4000 से अधिक MOU

0: 600 करोड़ रुपए से अधिक प्रस्तावित एमओयू मूल्य और 13,500 करोड़ रुपए से अधिक बिजनेस इंक्वायरी होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया और रूस सहित अन्य देशों के साथ भी सक्रिय संवाद स्थापित कर उनकी अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने वीबीजी रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर सहभागिता का आह्वान करते हुए इस वर्ष 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण, उपलब्धता एवं वितरण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा स्वयं सहायता समूहों, खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं, एमएसएमई इकाइयों एवं स्थानीय उत्पादन केंद्रों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि राशन की दुकानों, ग्राम पंचायत भवनों, जनसेवा केंद्रों, तहसीलों, विकासखंड कार्यालयों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, डाकघरों, पेट्रोल पंपों एवं अन्य निर्धारित केंद्रों के माध्यम से आम जन को राष्ट्रीय ध्वज सहज उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 14 एवं 15 अगस्त प्रदेश के सभी सिनेमा घरों में राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का अनिवार्य प्रसारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस तथा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के सभी कार्यक्रम पूरे सम्मान, गरिमा एवं राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ आयोजित किए जाएं। समाचार कक्ष से अरुण।
1: प्रदेश भर के शिव मंदिरों और शिवालयों में पवित्र श्रावण मास पर भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही श्रद्धालु वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्शन लागू किए गए हैं। अमरोहा में पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि श्रावण मास के प्रत्येक रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक नेशनल हाईवे 9 पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बदायूं में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रत्येक शनिवार और सोमवार को कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। अंबेडकर नगर में कांवड़ यात्रा को सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए 9 जोनल, 78 सेक्टर और 9 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं।
3: कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत ये अयोध्या का रूट है टांडा होके, उसपे भी विशेष रूप से इंतजाम किए गए हैं। सारे सड़कों को गंदा मुक्त किया गया है। जो हमारे मेन घाट है महादेवा घाट, उसकी लगातार सफाई के लिए 3 शिफ्टों में सफाई कर्मी लगाए गए हैं। प्रकाश की व्यवस्था की गई है, 3 लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि किसी की भी जल लेने के समय कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। और जिला प्रशासन समुचित रूप से सतर्क है और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है।
1: गोरखपुर में भी व्यापक यातायात डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है जो सावन के प्रत्येक सोमवार को प्रभावी रहेगी। मौसम विभाग ने आज से आगामी 5 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश तथा हरिद्वार, बिजनौर और नरौरा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं के कछला गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते जिले के 36 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2031 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों में उत्साह, केंद्र सरकार के प्रति जताया आभार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होगा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से किया हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ कर सहभागिता का आह्वान। 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य और श्रावण मास में मंदिरों और शिवालयों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। इसी के साथ

0: प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

0: दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, हेलो। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा और आप सभी का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम आज सुबह में। और आज के इस सफर में कौन है मेरे साथ?
1: रिंकी, मैं हूँ आपके साथ निधि श्रीवास्तव। और हमारे सभी सुनने वालों को मेरा यानी कि निधि का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।
0: इतनी उत्सुकता के साथ, इतनी एनर्जी के साथ निधि आप आई हैं प्रोग्राम में। चार चांद लगा देंगी आज तो आप।
1: और आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हो और आपके साथ मजा ही आ जाता है।
0: अच्छा, हम अपनी तारीफ करें, इससे ज्यादा जरूरी कि हमारे जो श्रोता है ना, मैं ये कहना चाह रही थी कि आपकी एनर्जी से वो भी जाग गए होंगे कि भाई आज सुबह तो सुबह हो गई, क्योंकि निधि जी बहुत एनर्जेटिक फॉर्म में है आज। तो चलें फिर हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और अब जो अगला आधा घंटा है, हाँ, वो बहुत खास होने वाला है आपका, क्योंकि आप समझ ही गए हैं कि रिंकी और निधि हैं आज आपके साथ।
1: बिल्कुल, और हमारे सभी सुनने वालों के लिए ये दिन अच्छा हो, शुभ हो, खास हो, क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत होती है, एक नया मौका होता है जीने का। तो इसे पूरे उत्साह के साथ शुरू करना चाहिए। तो
0: जी हाँ, और देखे ना, आज पहली तारीख है, महीना शुरू हो रहा है नया नया। हम कार्यक्रम शुरुआत की बात कर रहे हैं, महीना भी नया शुरू हो रहा है, तो सब कुछ नया नया सा है। सावन भी शुरू हुआ अभी दो चार दिन पहले ही, है ना,
1: सब कुछ शुरू ही हो रहा है।
0: जी, तो भाई हम भी कार्यक्रम की शुरुआत एक बेहतरीन तरीके से करते हैं।
1: अच्छा, तुम्हें याद है रिंकी एक बात कि जब पहले पहली तारीख आती थी तो कितना इंतजार होता था ना?
0: सीरियसली बहुत इंतजार होता था।
1: पहली तारीख आ गई। छेड़ी पता है, क्योंकि आज फिल्म अभिनेता निर्देशक निर्माता भगवान दास का जन्मदिन है।
0: अच्छा,
1: उनका एक गाना है ना, आज पहली तारीख है।
0: बहुत खास, और हमें लगता है कि अभी भी लोगों को इंतजार होता है पहली तारीख का। हाँ। भले ही वो किसी और फॉर्म में हो, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनकी महीने की तनख्वाह ही एक तारीख को आती है ना, तो उन्हें तो इंतजार रहता ही है, और भी बहुत सारे लोगों को इंतजार रहता है पहली तारीख का। तो हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता जरूर हमसे साझा करेंगे जब उन्हें वक्त मिलेगा तो, कि क्यों क्यों उन्हें इंतजार रहता है।
1: जरूर सुनवाएंगे अपने श्रोताओं को।
0: जी बिल्कुल, आज ये गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, मैंने आपसे कहा था कि सावन शुरू हो चुका है, और सावन का भी एक गीत आज एक हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई हर चीज शुरुआत हो रही है और हम सावन को
1: सावन ही करना सुनाए, ऐसा तो हो नहीं सकता।
0: लेकिन जब इतनी सारी बातें हो रही है तो समय है आज के सुविचार का। वो भी अपने श्रोताओं को बता दें कि क्या कहता है आज का सुविचार।
1: बिल्कुल रिंकी,
0: है ना, देखिए हम आपसे हर बात की परमिशन लेते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हमने आपसे पूछा नहीं।
1: नहीं रिंकी, बिल्कुल आप पूछे मत, आप बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन सबको देती है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
0: जी बहुत शुक्रिया। और चलिए हम श्रोताओं को बताते हैं आज का सुविचार कह रहा है कि जीवन में सबसे बड़ी

0: जीत किसी और को हराने में नहीं बल्कि खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाने में है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: दोस्तों, अक्सर हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। कोई हमसे आगे निकल गया, किसी को हमसे अधिक सफलता मिल गई, किसी को ज्यादा पहचान हमसे मिल गई, और फिर हम अपने ही प्रयासों की कीमत कम आंकने लगते हैं, जबकि हकीकत ये होती है निधि कि हमने भी जी जान से मेहनत की होती है, लेकिन कहीं 19-20 का अगर फर्क रह गया तो हम अपने आप को बहुत पीछे समझने लगते हैं।
1: बिल्कुल। तो रिंकी, आपका कहने का मतलब ये है कि हम अपने को जिताने की कोशिश करें बजाय इसके कि अगले को हराने की कोशिश करें।
0: जी बिल्कुल। और हम ये भी माने कि हम जीते भी हैं, हम हमेशा अपनी जो कार्य क्षमता है उसको नजरअंदाज ना करें, कम करना आगे, है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो बातें ये बहुत सारी होती रहेंगी, लेकिन पहले हम अपने श्रोताओं को एक खूबसूरत सा, देखिए मैंने निधि से बात करने से पहले ही खूबसूरत सा एक सावन का गीत निकाला था, तो पहले हम आपको वो सुनाते हैं, फिर आगे निधि आपके लिए खूबसूरत से नगमे लेकर के आई हैं, वो सुनते हैं।

0: बेहद ही खूबसूरत सा गीत था रिंकी, बहुत ही सुंदर, मजा आ गया। मंजिल फिल्म का गीत था जो आई थी 1979 में, और आवाज लता मंगेशकर की, मतलब गजब का ही वो गाती हैं भाई, बहुत ही बढ़िया।
1: जी बिल्कुल, और इसीलिए सुबह सवेरे यह खूबसूरत सा नगमा हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर के आए थे। भले ही लखनऊ वालों को अभी बारिश का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन सावन तो है।
0: हाँ बिल्कुल है,
1: है और देखिए निधि, मजा तो तभी जीवन में आता है जब सारी चीजें जैसे आप सोच रहे हैं वैसे हो जाए, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता, और मुझे लगता है

0: मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है ना।
1: इसी बात पर किसी ने कहा है कि अगर आपके मन की हो रही है तो ठीक, लेकिन अगर आपके मन की नहीं हो रही है तो वो उससे भी अच्छा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ईश्वर है, जो एक शक्ति है, वो आपके लिए बेहतर ही सोच कर रखते हैं।
0: जी, और देखिए इस जो रास्ते की हमने बात की, इस रास्ते पर जो आज का युवा है वो बहुत ज्यादा इस चीज को महसूस कर पाता है कि हम जो सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा, खासकर

0: जो एक शक्ति है वो आपके लिए बेहतर ही सोच कर रखते हैं।
1: जी, और देखिए इस जो रास्ते की हमने बात की, इस रास्ते पर जो आज का युवा है वो बहुत ज्यादा इस चीज को महसूस कर पाता है कि हम जो सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा है, खासकर जब बात रोजगार की आती है ना, तब ऐसा जरूर होता है। तो हम अपने श्रोताओं की ये समस्या आज दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक विशेष भेंट वार्ता हम आपके लिए लेकर के आए हैं श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी जी, जिला सेवायोजन अधिकारी के साथ में, जो वन मिलियन रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है। कब, कहां और किस जगह पर, किस समय ये आयोजन होने जा रहा है, इनसे हमने बात की। और चलो निधि, आपको भी सुनवाते हैं और अपने श्रोताओं को भी सुनवाते हैं खास बातचीत।
2: जी बिल्कुल,
3: सभी श्रोताओं को रिंकी शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रोजगार मेले एक ऐसा मंच बनकर उभरे हैं, जहां एक ही स्थान पर कई प्रतिष्ठित कंपनियों से मिलने, अपनी योग्यता के अनुरूप अवसर तलाशने और सीधे साक्षात्कार में भाग लेने का अवसर मिलता है। ऐसे आयोजन न केवल युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ते हैं, बल्कि उन्हें अपने करियर की दिशा तय करने का भी एक बेहतर माध्यम प्रदान करते हैं। बहुत सारे निजी और कभी कभी सरकारी संस्थानों की सहभागिता से आयोजित होने वाले रोजगार मेले युवाओं और नियोजकों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु की तरह काम करते हैं। ऐसा ही एक मेला हमारे शहर में भी आयोजित होने जा रहा है। कब, कहां और किस तरीके से इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रज्ञा त्रिपाठी जी, जिला सेवायोजन अधिकारी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस रोजगार मेले के बारे में और अधिक जानकारी। प्रज्ञा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: जी धन्यवाद।
3: 3 अगस्त को आयोजित होने वाले रोजगार मेले के बारे में हमारे दोस्तों को आप क्या जानकारी देना चाहेंगी?
4: आप लोगों को सूचित करना चाहती हूँ कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे से वन मिलियन रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जो वन मिलियन फाउंडेशन और क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में लगभग 25 कंपनियां आ रही हैं, जिसमें 10th से लेकर के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, एमबीए, आईटीआई, पॉलिटेक्निक पास बच्चों के लिए रोजगार के सुनहरे अवसर हैं। और बच्चे इसमें 10,000 से लेकर के 40,000 तक की जॉब है और अपनी योग्यता के अनुसार इसमें अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं। तो बच्चों को मैं बताना चाहूंगी कि वो जो है वो सेवायोजन की वेबसाइट है rozgarsangam.up.gov.in। एक बार फिर से दोहरा दूंगी, rozgarsangam.up.gov.in। इस पर रजिस्ट्रेशन करके मेले की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अप्लाई करके सीधे मेले में आके प्रतिभाग कर सकते हैं। तो और इसके संबंध में अगर और अधिक जानकारी चाहिए तो बच्चे वेबसाइट पर हमारी पूरी सूचना देख सकते हैं। तो मैं बच्चों से कहूंगी कि अधिक से अधिक संख्या में आए और रोजगार के अवसर प्राप्त।
3: जी जी, जानना चाहेंगे प्रज्ञा जी आपसे कि ये आयोजन कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है और इसका समय क्या है?
4: ये फिर से मैं बता दूंगी कि ये 3 अगस्त 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगा।
3: जैसे आपने बताया कि इसमें सीधे ही भाग ले सकते हैं, तो कोई पंजीकरण करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई पंजीकरण शुल्क है इसमें?
4: अभी मैंने आपको बताया कि सेवायोजन की वेबसाइट है rozgarsangam.up.gov.in। इस पर बच्चा रजिस्ट्रेशन करेगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको इस मेले की संपूर्ण जानकारी दिखाई देगी कि कहाँ की जॉब है, कितनी सैलरी है, क्या योग्यता है, ये सब बच्चे को उस वेबसाइट पर दिखेगा और वो अप्लाई करके मेले में आके सीधे इंटरव्यू दे सकता है।
3: जी, अप्लाई करना जरूरी है, इंटरव्यू फिर सीधे हो जाएगा। जी, रोजगार मेले में किन किन कंपनियों या संस्थानों की भागीदारी रहेगी? युवा कोशिश करता है कि वो जानकारी लेकर के वहाँ पहुँचे कि हम कहाँ पर इसके बाद इस मेले में जब हम शामिल होंगे तो उसके बाद हमें कहाँ नौकरी का अवसर मिलेगा। तो अगर कुछ कंपनियां हो, प्राइवेट सेक्टर या
4: प्राइवेट सेक्टर की 25 कंपनियां प्रतिभाग करेंगे, जिसमें टाटा मोटर्स, रिलायंस, एयरटेल और ऐसी लगभग 25 कंपनियां हैं जिसमें विभिन्न योग्यताओं के बच्चों के लिए जॉब उपलब्ध हैं। और कुछ कंपनियां लखनऊ में ही जॉब दे रही हैं और कुछ नोएडा, गुड़गांव आदि क्षेत्रों के लिए बच्चों को हायर कर रही हैं।
3: जी, जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को, और खासकर वो युवा जो इस रोजगार मेले में प्रतिभाग करना चाहते हैं?

0: बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि वो रोजगार मेले में अवश्य प्रतिभाग करें, उनको जॉब मिलेगी उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। और यदि वो इस बार नहीं भी सफल होते हैं तो उनको एक एक्सपीरियंस मिलेगा जो आगे और इंटरव्यू में उनके काम आएगा। तो मैं बच्चों से कहना चाहूंगी कि वो मेले में प्रतिभाग अवश्य करें, क्योंकि वो उनके लिए कहीं ना कहीं एड ऑन ही होगा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा जी, आपने रोजगार मेले इसके उद्देश्य और इसमें भाग लेने की प्रक्रिया के साथ बहुत सारी आवश्यक जानकारी हमारे श्रोताओं को उपलब्ध कराई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, हमारे साथ थी प्रज्ञा जी जो जिला सेवा योजन अधिकारी है, और हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। आप इस मेले में भाग लें और अपने भविष्य को सुनहरा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: तो श्रोताओं, अभी आप ये सुन रहे थे विशेष भेंटवार्ता, वन बिलियन रोजगार मेला। श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी जिला सेवा योजन अधिकारी लखनऊ हमारे साथ थी, और प्रस्तुतकर्ता थे रमनप्रीत सिंह। तो निधि भाई, रोजगार से संबंधित बात हो गई, और हमारे श्रोताओं की जो युवा श्रोता है खासकर, उनकी बहुत बड़ी एक समस्या होती है रोजगार से संबंधित, है ना। तो उम्मीद है कि ये जो बातचीत थी इससे उन्हें जरूर लाभ हुआ होगा।
3: बिल्कुल।
2: तो अब जैसे कि आपने हमारे श्रोताओं से वादा किया था एक खूबसूरत सा नगमा सुनाने के लिए, तो वो नगमा भी हम अपने श्रोताओं को सुना दें, लेकिन कुछ आप शायद बताना चाह रही हैं।
3: रिंकी, जैसे कि अभी आपने कहा था आज एक तारीख है, आज सावन का दिन है, आज ये शुरू हो रहा है, वो कई चीज आपने शुरू कर दी थी आज के दिन। तो हमने इसी में एड ऑन कर दिया था कि भाई आज भगवान दादा का भी जन्मदिन है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बताते चले कि फिल्म इंडस्ट्री के भगवान दादा, जिनका जो नाम असली था वो भगवान आभाजी पालव था, हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे, निर्देशक और फिल्म निर्माता भी थे। सबसे पहली बात और जो मेन बात है, वो अपने अनोखे डांस, कॉमेडी और एक्शन के अंदाज के लिए जाने जाते थे। रिंकी, शायद आपको इमेजिन आपने कर लिया होगा, उनका फेस याद आ गया होगा उनको। हाँ, बिल्कुल, है ना,
2: कोई कैसे भूल सकता है। ये भारतीय सिनेमा के चमकदार सितारे हैं जो हमेशा चमकते ही रहेंगे,
3: और उनका अंदाज एकदम अनोखा अलग सा था।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और यहाँ पर ये भी खास बात है कि उनको हिंदी सिनेमा का पहला कॉमेडी ड्रेसिंग सुपरस्टार भी कहा जाता था। उन्हीं का एक बहुत ही प्यारा सा नगमा है, आज पहली तारीख है
2: जी। फिल्म का नाम भी पहली तारीख है, जो 1954 में आई थी। तो अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं आपका वादा पूरा करते हुए।
3: बिल्कुल रिंकी।
4: दिन है सुहाना

0: देखो क्या कुछ इतिहास में हुआ था, तो इतिहास के पन्नों को भी पलट लिया जाए।
1: बिल्कुल
0: तो क्या कहती है कि आज की पहली तारीख, देखिए कैलेंडर की जो हर तारीख है अपने साथ कोई ना कोई कहानी लेकर आती है। कुछ कहानियां तो उपलब्धि होती हैं, कुछ संघर्ष की, और कुछ ऐसी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। और ऐसी ही कुछ प्रेरणादायक चीजें हम आपके लिए निकाल के लाए हैं, जानकारियों के साथ में जो बताती है कि आज की पहली तारीख क्या कुछ कहती है। तो आपको बता दें, 1957 की बात करें तो अमेरिका और कनाडा ने मिलकर उत्तर अमेरिकी वायु रक्षा कमांड की स्थापना की। आपको साथ में ये भी बताते चले श्रोताओं कि 12 सितंबर 1957 को अमेरिका और कनाडा ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, लेकिन इसकी घोषणा जो है वो आज ही के दिन यानी 1 अगस्त 1957 को हुई थी, और औपचारिक समझौता 12 मई 1958 को हुआ था।
1: और इसके साथ ही एक तारीख की बात रिंकी आप कर रहे हैं, तो एक तारीख में 2006 की बात करें तो जापान ने दुनिया की पहली भूकंप पूर्व चेतावनी शुरू की थी। यानी कि कहा जा सकता है कि जापान मौसम विज्ञान एजेंसी यानी कि JMA ने अगस्त 2006 में विशेष और उन्नत उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी जो भूकंप पूर्व चेतावनी जो सेवा थी वो शुरू की, जिसके बाद में अक्टूबर 2007 में आम जनता के लिए इसे जारी भी किया गया था। चलिए 2008 की भी बात आपको बता ही देते हैं कि 2008 में पहली तारीख को ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बोर्ड ने भारत के विशेष निगरानी समझौते को हरी झंडी दिखाई थी। तो ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी
0: जी आज की तारीख को जो खास बनाती है। और आज एक और बहुत खास दिन है क्योंकि आज हम मनाते हैं असहयोग आंदोलन दिवस के रूप में।
1: अच्छा।
0: और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जन आंदोलन था जिसने पूरे देश को एक नई चेतना दी थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने लोगों से आग्रह किया कि वे बहुत सारी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी को अपनाएं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ें। निधि सही बात है ना कि जब हम स्वतंत्र भारत में आज सांस ले रहे हैं तो इस तरह के जो आंदोलन उस समय चलाए गए थे जब हम आजाद नहीं हुआ करते थे।
1: हाँ।
0: वो परिवर्तन केवल विरोध से नहीं बल्कि जागरूकता, अनुशासन और एकता से आता, और हम सबको आज भी ये अनुशासन, ये एकता आपस में बनाए रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जब अगस्त शुरू होता है तो वो 15 अगस्त वाली जो फीलिंग होती है ना वो अपने खुद से ही जहन में आने लगती है,
0: और यही हर भारतवासी के मन में रहता है कि हाँ ये हमारा आजादी का महीना है, हम इसमें आजाद हुए थे। और वाकई ये जो आजादी है वो आसानी से नहीं मिली थी, बहुत मुश्किल से मिली थी।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: एक खूबसूरत सा नगमा जो शायद इसी को बयां करता है आपके लिए ला रहे हैं, फिर ढेर सारी और भी बातें आप तक पहुंचाएंगे।
2: उलट

0: भाई किशोर कुमार की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपने सुना पहली तारीख फिल्म से। आज पहली तारीख है और वाकई निधि फिर से पहली तारीख
1: पहली तारीख
0: पहली तारीख।

0: पता है कि जैसे जैसे ये अगस्त का महीना आता है, स्वतंत्रता खुद ब खुद हर भारतवासी के जहन में अपने आप से आने लगती है। और अगस्त के महीने में ही सावन भी शुरू हो जाता है लगभग। तो जो सावन का महीना होता है वो कहीं ना कहीं रिमझिम बारिश फुहारों का भी मौसम होता है, जो मन को कहीं ना कहीं मोह भी लेता है। लेकिन बारिश कभी कभी आपदा भी बन जाती है। तो मौसम कैसा रहने वाला है इस अगस्त के महीने में, अगर हम 2-4 दिन की बात करें तो किस तरह का मौसम होगा, क्योंकि कई जो जिले ऐसे भी हैं जहां बाढ़ का भी माहौल बना हुआ है। तो आइए मौसम वैज्ञानिक दानिश जी से जान लेते हैं कि कुछ दिन तक मौसम कैसा रहने वाला है।
1: नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम आज सुबह में।
2: नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग।
1: वेरी गुड मॉर्निंग सर। और सुबह सवेरे के इस माहौल में हमारे श्रोताओं को ये भी बता दीजिए कि आज और आने वाले कुछ दिनों में लखनऊ आसपास के क्षेत्रों में कैसा रहेगा मौसम का हाल।
2: जी, मौसम की बात करें तो जैसा कि एक लो प्रेशर का निम्न दबाव का क्षेत्र जो कि साउथ एमपी विदर्भा में बना हुआ था, जिसके वजह से प्रदेश और लखनऊ में तेज हवाओं का चलन था, तो कहीं ना कहीं इसका असर आज से धीरे धीरे थोड़ी कमी हवा में कमी आएगी। और जैसा कि मानसून ट्रफ जो कि साउथ में काफी चला गया था एमपी विदर्भा की तरफ, वो धीरे धीरे अब यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और कहीं ना कहीं यहाँ से आज लखनऊ में छिटपुट वर्षा का दौर शुरू होगा। बाकी कल भी छिटपुट दौर तो होगा, परसों से जो तराई प्रदेश है वहाँ अच्छी वर्षा होने की संभावना है तथा धीरे धीरे प्रदेश में बारिश की इंटेंसिटी बारिश में बढ़ोतरी होगी और कहीं ना कहीं आने वाले अगले 3-4 दिन अच्छी वर्षा होने की संभावना।
1: जी सर, तो सामान्य शब्दों में अगर कहें तो लखनऊ वालों का इंतजार खत्म होने वाला है और बारिश मानसून वापस लखनऊ में दस्तक देने वाला है।
2: जी बिल्कुल होगा, लेकिन हल्की वर्षा के साथ होगा।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुबह सवेरे आपने समय निकाला और मौसम संबंधी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
1: नमस्कार सर।
2: नमस्ते।
3: तो श्रोताओं, हमारे साथ थे मोहम्मद दानिश जी, सीनियर साइंटिस्ट IMD से, जिन्होंने बताया कि कैसा रहने वाला है मौसम और उम्मीद है कि मौसम अब बदलेगा अपना रुख और थोड़ी सी रिमझिम बारिश होगी और इस बीच में अपने स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखें। श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज से एक और विशेष सप्ताह शुरू हो रहा है। विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में आज से ये शुरू हो रहा है जो 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। और निधि, वाकई ये सप्ताह जो है ये माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत खास है ना।
4: बिल्कुल।
3: और देखिए, विशेषज्ञ भी मानते हैं, सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है बल्कि विज्ञान भी ये कहता है कि जन्म के बाद शुरुआती महीनों में केवल माँ का दूध ही शिशु के लिए सबसे उपयुक्त और संतुलित आहार होता है।
0: और ये हमेशा सही है, सबको पता भी है और आगे वाली जनरेशन को भी इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए।
3: बस इसी उद्देश्य से 1 से 7 अगस्त तक हम मनाते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह। और अब घड़ी भी इशारा करने लगी है निधि कि अब हम अपनी बातों का जो पिटारा है ना उसे थोड़ा सा समेट ले। लेकिन बातें हम बहुत सारी आपके लिए लेकर के आए थे जो आज करनी थी आपसे, खूब सारे नगमे भी तैयार थे जो आपको।
0: लेकिन
3: रिंकी,
0: आपने बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, बहुत ही बेहतरीन थी। मतलब कि कहा जा सकता है कि आपने इतिहास भी बता दिया और रोजगार के बारे में भी हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको जानकारी पहुंचा दी, साथ ही जो स्तनपान के बारे में भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई, ये बहुत ही अच्छा था। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये प्रोग्राम जो आपने किया इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम था ये।
3: जी निधि, देखिए ये सफर अकेले का नहीं था, इसमें आप और हम और हमारे जो अधिकारी है जी वो भी शामिल होते हैं और हमारे श्रोता तो निसंदेह होते हैं। एक और आपको बता दे कि भाई देखिए, बारिश की बूंदें जो जमीन पर पड़ती हैं और फिर मिट्टी से खूबसूरत सी खुशबू आती है, सुंदर सी, बड़ी मन को मोहने वाली, उसे क्या कहते हैं पता है?
0: क्या?
3: उसे कहते हैं पेट्रिक कोर। तो बस इसे खूबसूरत सी बात के साथ अब दीजिए रिंकी और
0: निधि को इजाजत,
3: फिर होगी मुलाकात आपसे, तब तक के लिए
0: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। श्रोताओं, इसी के साथ अब नमस्कार लखनऊ का ये सफर भी यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के

0: सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्य निष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्टैग अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
3: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को

0: कार करें। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
4: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक घर के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथा कथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण

0: निर्माण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
1: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
2: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है जिसमें 5 स्वर्ण 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते 2 गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोक सत्य में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित

0: करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते बरेली। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम नमस्ते बरेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज बहुत विशेष दिन है। आज अगस्त का महीना भी शुरू हो गया है और शुरू हो गया है विश्व स्तनपान सप्ताह भी, जो कि मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? इसका उद्देश्य है माताओं को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना और शिशुओं के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देना है। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम एवं संपूर्ण आहार माना जाता है। इसमें आवश्यक पोषक तत्व, रोगों से बचाने वाले प्रतिरक्षी तत्व और ऊर्जा भरपूर मात्रा में होती है। जन्म के पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही शिशु के लिए पर्याप्त होता है। स्तनपान से माँ और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध भी मजबूत होता है, इसलिए प्रत्येक माँ को स्तनपान के महत्व को समझते हुए इसे अपनाना चाहिए। साथियों, इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमने बात की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वीना मिश्रा जी से। आइए सुनवाते हैं आपको ये बातचीत। वीना मिश्रा जी, कार्यक्रम नमस्ते बरेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से शुरू हो रहा है विश्व स्तनपान सप्ताह
2: जी,
1: कि इसमें स्तनपान के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है। आप आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, तो आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो जिनको स्तनपान कराना है?
2: जी, ये विश्व स्तनपान सप्ताह हर वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक पूरे विश्व में मनाया जाता है
1: जी।
2: इसका मुख्य उद्देश्य माताओं, परिवारों और समाज को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना होता है। इस अभियान के माध्यम से ये संदेश दिया जाता है कि जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू करने से और पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाने से शिशु स्वस्थ रहता है
1: जी।
2: उसकी रोगदक क्षमता मजबूत होती है और कुपोषण की रोकथाम में भी बहुत मदद मिलती है।
1: अच्छा, ये बताइए वीना जी के स्तनपान कब से शुरू करा देना चाहिए? जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसके कितनी देर बाद स्तनपान कराया जा सकता है?
2: शिशु के जन्म के पहले 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। इससे शिशु को कोलोश्रम मिलता है, जो उसके लिए पहला प्राकृतिक टीका है
1: जी।
2: साथ ही माँ और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होता है। माँ के शरीर में दूध बनने की प्रक्रिया तेजी से शुरू होती है और प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव को कम करने में भी सहायता मिलती है। और जो नवजात को पहला गाढ़ा पीला दूध होता है, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं
1: जी,
2: जरूर पिलाना चाहिए।
1: तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं क्या?
2: इसमें शिशु का पहला प्राकृतिक टीका माना जाता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी, प्रोटीन, विटामिन ए और रोग प्रतिरोधक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। ये शिशु को दस्त, निमोनिया और अन्य रोगों से बचाने में मदद करता है। साथ ही ये शिशु के पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और उसकी पहली मल त्याग प्रक्रिया को भी आसान बनाता है। इसलिए इसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि जन्म के तुरंत बाद शिशु को अवश्य पिलाना चाहिए
1: जी। और अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्तनपान कब तक कराया जा सकता है, और क्या स्तनपान के साथ साथ शिशु को कुछ और भी दिया जा सकता है क्या?
2: जी, जन्म से लेकर पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान शिशु को पानी, शहद, गुट्टी, गाय का या भैंस का दूध, कोई अन्य खाद्य पदार्थ देने नहीं देना चाहिए।
1: अच्छा, पानी की भी जरूरत नहीं होती?
2: नहीं, क्योंकि ये दूध ही शिशु के लिए संपूर्ण भोजन और पानी दोनों का काम करता है। 6 महीने पूरे होने के बाद जरूर बच्चों को पूरक आहार देना शुरू करना चाहिए, जिससे और स्तनपान है जो 2 वर्ष तक उससे अधिक समय तक जारी रखना चाहिए।
1: 2 वर्ष तक
2: जी।
1: और अच्छा, कुछ भ्रांतियां भी होती हैं कुछ महिलाओं में, जैसे जिनको आजकल एकल परिवार है, तो बहुत सी महिलाओं में भ्रांतियां होती हैं कि भाई इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, या और तरीके की भी हो सकती हैं, तो
3: तो उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको आप कैसे समझाती हैं? आपके पास तो बहुत तरीके की

0: महिलाएं आती होंगी, आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई हैं, आपके संपर्क में बहुत सारी महिलाएं रहती हैं, तो उनको आप कैसे समझा पाती हैं?
1: उनको बताते हैं कि जैसे स्तनपान करने वाले बच्चों में दस्त, निमोनिया और कोई संक्रमण नहीं होता है, और उनकी मानसिक और शारीरिक विकास तेजी से होता है, भविष्य में मोटापा, मधुमेह तथा अन्य रोग जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा स्तनपान माँ और शिशु के बीच जुड़ाव को मजबूत बनाता है।
0: एक चीज हम और पूछना चाहेंगे आपसे कि जो महिलाएं अपने शिशु को स्तनपान करा रही हैं, तो उनका खान पान कैसा रहना चाहिए, कैसे आप बताएंगे इसको, मतलब क्या होना चाहिए?
1: मतलब ये स्तनपान होता है, ये माँ के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है।
0: किस तरीके का भोजन उनको लेना चाहिए?
1: उनको महिलाओं को पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, क्योंकि वो दूध पिला रही है तो जाहिर सी बात है उनको भी दूध का सेवन करना चाहिए। और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फल हैं, दूध दही, अगर मीट मच्छी खाते हैं तो वो भी ले सकते हैं।
0: वीना मिश्रा जी, आपने बहुत सुंदर जानकारी दी और हमें विश्वास है कि जो महिलाएं
1: जी
0: अपने शिशु को स्तनपान करा रही हैं या जिनमें कुछ भ्रांतियां हैं, आपकी इस बात को सुनेंगी तो और जागरूक होंगी और स्तनपान के प्रति और अपने शिशु को स्तनपान जरूर कराएंगे, क्योंकि शिशु के लिए ये बहुत आवश्यक है। जो कोलेस्ट्रम है, जो माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध जो है, वो बिल्कुल अमृत के समान है, इसको लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। तो जरूर आपकी बात से मतलब महिलाएं प्रभावित होंगी और उनको ये सीख मिलेगी कि स्तनपान कितना जरूरी है। आपने बहुत कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते बरेली। साथियों, सावन का महीना जो है वो शुरू हो गया है और बरेली नगरी को कहा जाता है नाथ नगरी। यहाँ पर शिव जी के 7 मुख्य मंदिर हैं, इसलिए नाथ नगरी कहा जाता है। तो सावन के महीने में यहाँ पर धूम मची रहती है शिव जी की पूजा की, है ना। और साथियों, बहुत सारे कांवरिये जो हैं बरेली शहर से जाते हैं जल भरने, और आज भी कल से ही शुरू हो गए हैं कांवरियों का जाना। बहुत सारे जत्थे, अलग अलग जत्थे जो हैं बदायूं कछला घाट रवाना हुए हैं और हरिद्वार जगह जगह जाते हैं गंगा जल लेकर। अब वो जत्थे सोमवार को लौटेंगे। साथियों, इस कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल मुस्तैद है और अपना जो प्लान तैयार किया है उसके अनुसार सारा कार्य हो रहा है। प्रशासन ने सभी 7 मंदिरों पर सावन के 4 सोमवार पर उमड़ने वाली कांवड़ियों की अनुमानित भीड़ के हिसाब से अलग अलग कार्य योजना तैयार कर ली है। जिले को 3 सुपर जोन, 9 जोन, 28 सेक्टर और 104 सब सेक्टर में बांटकर यात्रा को संपन्न कराया जाएगा। साथियों, जीरो इंसिडेंट, जीरो एक्सीडेंट वाली कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। अपने माइक्रो प्लान के हिसाब से अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इंटर डिस्ट्रिक्ट रूट मैप के साथ ही इंट्रा डिस्ट्रिक्ट रूट मैप के अनुसार ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया है। ट्रैफिक पर लगातार तीसरी आंख से भी नजर रखी जाएगी। 8 ड्रोन कैमरे भी कांवड़ियों के मूवमेंट पर नजर रखेंगे। पल पल की सूचना के लिए कंट्रोल रूम को भी सक्रिय कर दिया गया है। साथियों, इतनी सारी तैयारियां हो गई हैं और मंदिरों में तो एक अलग ही रौनक छाई हुई है। जगह जगह आपको कांवड़िए देखने को मिलेंगे और पूरा शहर जो है शिव जी की भक्ति में बिल्कुल लीन हो गया है।

साथियों अब बारी ट्रैफिक अपडेट की। साथियों आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा और श्रावण मास के पहले सोमवार को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार रात 12 बजे से सोमवार रात 12 बजे तक विशेष रूट डायवर्जन लागू कर दिया है। पुलिस ने यात्री

से घर से निकलने से पहले वैकल्पिक मार्ग की जानकारी लेने की अपील की है। पुराने बस अड्डे से चलने वाली रोडवेज बसें पटेल चौक, चौकी चौराहा, बियाबान, कोठी, मालियों की पुलिया और सैटेलाइट होकर बड़े बाईपास से गुजरेंगी। दिल्ली, लखनऊ, आगरा और बदायूं जाने वाली बसों को भी सैटेलाइट, नरियावल, ट्रांसपोर्ट नगर, बड़े बाईपास, फरीदपुर और अन्य वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया जाएगा। लखनऊ से दिल्ली जाने वाले भारी वाहन शाहजहांपुर के जलालाबाद से गंगा एक्सप्रेसवे होकर मुरादाबाद, हापुड़ मार्ग से दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं बदायूं जाने वाले वाहन कटरा, नवादा और दातागंज होते हुए डहरपुर कलां के रास्ते जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चौकी चौराहे से कोई भी रोडवेज बस चौपला, सिटी स्टेशन, सीबीगंज रोड, लाल फाटक और बुखारा रोड की ओर नहीं जाएगी। सभी बसों का संचालन सैटेलाइट और वैकल्पिक मार्गों से किया जाएगा।

साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते बरेली। साथियों, अब बारी है बरेली की कुछ प्रमुख खबरों की। तो आपको बता दें कि सावन में जो है कांवरियों का जत्थे निकलते हैं, तो उसके लिए अब शिविर लगाएगा BDA उनके स्वागत के लिए। साथियों, नाथ नगरी में जलाभिषेक को पहुंचने वाले शिव भक्तों की सेवा के लिए BDA भी विशेष शिविर लगाने जा रहा है। बदायूं रोड के तपेश्वरनाथ मणिनाथ प्रवेश द्वार, रामपुर रोड स्थित महंत अवैद्यनाथ प्रवेश द्वार पर शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा के साथ भंडारा व अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और साथियों, कांवड़ यात्रा की हॉक आई से निगरानी, भीड़ या शस्त्र दिखेंगे तो बजेगा अलार्म। कांवड़ियों की निगरानी के लिए बरेली पुलिस ने एक नया AI सॉफ्टवेयर हॉक आई बनाया है। यह सॉफ्टवेयर अचानक भीड़, ट्रैफिक बढ़ने, शस्त्र दिखाई देने पर अलार्म बजाएगा, जिससे कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को यह पता चल सके कि किस क्षेत्र में भीड़ बढ़ी है, जिससे वहां पर फोर्स को भेजकर शांति व्यवस्था बनाई जा सके। आयुष पाठ्यक्रमों की पूरक परीक्षा के आवेदन 3 अगस्त तक किए जाएंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने आयुष पाठ्यक्रमों की पूरक परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथियां घोषित कर दी हैं। MBA प्रवेश के लिए तीसरी काउंसलिंग 3 अगस्त से की जाएगी। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के व्यवसाय प्रशासन विभाग में MBA सत्र 2026-27 की तीसरी काउंसलिंग 3 अगस्त को होगी। जिला फुटबॉल लीग 9 अगस्त से शुरू होगी। बरेली जिला फुटबॉल संघ की ओर से जिला फुटबॉल लीग का आयोजन 9 अगस्त से होगा। 2 अगस्त को शाम 4 बजे स्टेडियम में टीमों का ड्रॉ और फिक्स्चर तैयार किया जाएगा।

आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं आइए अब आपको सुनवाते हैं लोकगीत। श्रोताओं लोकगीतों के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अमी चंद शर्मा के गाए इस लोकगीत के साथ।

श्रोताओं, मृदुला निगम की गाय इसी लोकगीत के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मिया, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
0: फिल्म का नाम है वीर जारा। देख

0: चित्रलोक। दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जब नहीं आए थे तुम, अभी आपने ये गाना सुना, देव फिल्म का ये गाना था। आज अली सरदार जाफरी की याद का दिन है और ठीक इसी तरह की एक नज्म है उनकी, जब नहीं आए थे तुम, ये गीत देव फिल्म में निदा फाजली ने लिखा था। और अली सरदार जाफरी लिखते हैं, तुम नहीं आए थे जब, तब भी तो मौजूद थे तुम, आंख में नूर की और दिल में लहू की सूरत, दर्द की लौ की तरह, प्यार की खुशबू की तरह, बेवफा वादों की दिलदारी का अंदाज लिए, तुम नहीं आए थे जब, तभी तो तुम आए थे। अली सरदार जाफरी की याद को हमारा नमन। और चित्रलोक का अगला गाना ए आर रहमान, फिल्म हाईवे।

एआर रहमान की आवाज थी हाईवे फिल्म का ये गाना था। और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम हम खत्म कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बहनों भाइयों, किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है। ज्ञानी व्यक्ति ने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई भी नहीं। बहनों भाइयों, लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। कीजिए स्वीकार रविंद्र मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं बरेली के फोकस पैथलैब, फोकस MRI एंड डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर मोहित अग्रवाल MBBS MD। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहित अग्रवाल।
0: डॉक्टर मोहित अग्रवाल जी, पहले हार्ट अटैक 60 से 70 साल की एज में सुना जाता था, आज 30 से 40 साल के लोग भी सडनली हार्ट अटैक की गिरफ्त में आ जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों है?
1: हार्ट अटैक सुनकर डर लगता है, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। हार्ट अटैक सिर्फ 35 साल की उम्र में, आपने सुना होगा कुछ साल पहले अगर कोई कहता है कि 35 साल के व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया है तो लोग कहते इतनी कम उम्र में कैसे संभव है, ऐसा तो होता ही नहीं है। लेकिन आज ऐसी खबरें हमें चौंकाती नहीं है, बस हमें दुख देती हैं, और शायद यही सबसे बड़ी चिंता की बात है।
0: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये स्वास्थ्य के लिए हार्ट अटैक बहुत ही चिंता की बात है।
1: एक सवाल आपसे अगर मैं पूछूं।
0: श्रोताओं, ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना?
1: दिल की बीमारी किस उम्र में होती है? कई लोग कहेंगे 50 साल, 60 साल, 70 साल, लेकिन सच्चाई ये है हार्ट डिजीज की कोई उम्र नहीं होती, ये हमारी आदतें देख कर आती है।
0: जी,
1: अब कोई एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी सी है। मेरे पास एक मरीज आया, उसकी उम्र सिर्फ 38 साल थी। उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं शराब नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, तंबाकू नहीं खाता, अपने काम से काम रखता हूँ, सुबह घर से ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर आता हूँ, है ना, गलत काम नहीं करता, तो मुझे हार्ट अटैक की समस्या क्यों हो गई? मैंने उससे पूछा, आप दिन में कितने घंटे काम करते हैं? बोला 10 से 12 घंटे, मेरा दुकान है उस पर मैं बैठता हूँ। मैंने कितने घंटे बैठते हैं? उसने 10 से 12 घंटे। मैंने कहा कभी कोई व्यायाम करते हैं, वॉकिंग वगैरह? ये वो बोले बस घर से ऑफिस जाते हैं तो उसमें जो हमारे घर पास में ही है तो पहुंच जाते हैं, 2 मिनट में पास में ही है तो पहुंच जाते हैं। और कितना सोते हैं? सो लेते हैं डॉक्टर साहब 5-6 घंटे। और मैंने कहा आपको कोई तनाव वगैरह रहता है, स्ट्रेस तो नहीं रहता? तो वो मुस्कुरा दिए, डॉक्टर साहब हम बिजनेस करते हैं, थोड़ा बहुत यार स्ट्रेस तो रहता ही है। और जब वो मुस्कुराए तो मुझे आंसर मिल गया उसका।
0: डॉक्टर साहब, हार्ट का इशारा भी करता है हार्ट अटैक आने से पहले?
1: हार्ट अटैक अचानक नहीं आता, लोग कहते हैं हार्ट अटैक अचानक आ गया, सच्चाई ये हार्ट अटैक अचानक आता है, लेकिन हार्ट डिजीज कभी अचानक नहीं बनती, वो हल्के हल्के हल्के हल्के कई सालों से धीरे धीरे बनती रहती हैं। हमारी हर गलत आदत इसमें एक छोटा सा योगदान देती रहती है। आज की लाइफस्टाइल सोचिए, सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, कार से ऑफिस जाते हैं, 8 से 10 घंटे कुर्सी पे बैठते हैं, फिर लिफ्ट यूज करते हैं, फिर ऑनलाइन खाना आता है रात को, फिर मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, और फिर हम कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता यार एक्सरसाइज करने का। भैया अभी आज ही मुझसे कोई और सज्जन आए थे, बोले मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मैंने उनसे पूछा आपके पास भी उतना ही टाइम है जितना नरेंद्र मोदी जी के पास है, जितना बिल गेट्स के पास है, जितना किसी और के पास है ना, वो जब एक्सरसाइज कर सकते हैं इतना बिजी होकर, तो आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं कि आपको टाइम नहीं मिल रहा? टाइम की नहीं मिलता एक कहना एक अजीब सी बात है, बात आंसर ही होना चाहिए था उनका कि मेरी प्रायोरिटी नहीं है एक्सरसाइज करना।
0: जी जी जी।
1: जिस चीज को हम पसंद करते हैं, जब बचपन में याद करिए आपको वीडियो गेम खेलने का अगर शौक होता होगा तो वीडियो गेम का खेलने का टाइम मिल ही जाता था कहीं ना कहीं से, चाहे होमवर्क पूरा होना हो वीडियो गेम खेलने पहुंच जाते थे। तो वैसे ही एक्सरसाइज को सोचिए, कम से कम आधा घंटा तो दीजिए अपने आप को। हमारे दादा दादी कभी जिम नहीं गए, उन्होंने कभी सुना भी नहीं था कि जिम कुछ होता है ना, फिर वो ज्यादा स्वस्थ क्यों थे? क्योंकि उनकी पूरी लाइफ में ही एक्टिव था, वो सब्जी लेने जाते थे, दूध लेने जाते थे, सीढ़ियां चढ़ते थे, घर के छोटे से बड़े काम करते थे, मूवमेंट उनके जीवन का हिस्सा था। लेकिन अब हम इन सब चीजों को छुपा देते हैं या करते नहीं है ये कह के कि हम बिजी हैं तो इन सब चीजों में बहुत टाइम निकल जाएगा तो मैं क्यों जाऊं कहीं और करने। भैया सिर्फ आप अगर घर का कोई काम कर रहे हैं तो वो काम करने से आप छोटे नहीं हो रहे हैं, उससे आपका एक तो काम कर रहे हैं अपना खुद का तो ज्यादा बेटर होगा, दूसरी बात की आपका मूवमेंट हो रहा है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: एक्सरसाइज हो रही है।
0: जी,
1: एक बात हमेशा याद रखिए, स्ट्रेस जो है वो सिर्फ दिमाग में नहीं होता, सिर्फ वो दिल को भी अफेक्ट करता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली। आपका हाई ब्लड प्रेशर है, हाई शुगर है, वजन बढ़ रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपकी टोन निकली हुई है जिसको हम बेली फैट बोलते हैं मेडिकल।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।

0: लैंग्वेज में। आजकल लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरा वेट तो सिर्फ 75 किलो है, लेकिन पता नहीं ये पेट क्यों निकला हुआ है। मैं कहता हूँ वेट से ज्यादा वेस्ट लाइन को देखिए, अपनी कमर को देखिए। वजन देखना तो इम्पोर्टेंट है, हमें BMI निकालते हैं अपना, है
1: जी
0: ना,
1: जी
0: लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वेस्ट लाइन है। अब वेस्ट लाइन क्या होनी चाहिए हमारी, अभी मैंने एक टॉक करी थी उसमें भी बताया था कि मेल्स के लिए जो आदमी है उसकी एडल्ट मेल के लिए 35.5 इंच तक चल सकता है,
1: जी
0: और फीमेल्स के लिए 31.5, ना मोटा मोटा है, मतलब
1: जी जी
0: एग्जैक्टली तो नहीं है इतना है कि इतना, इससे ज्यादा हो रहा है तो घबराने की 100% जरूरत है, लेकिन इससे कम है तो सिर्फ यही आंसर नहीं है कि इतना हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे ज्यादा है तो जरूर इसको कम करिए, चाहे आपकी कितनी भी हाइट है और कितना भी कुछ है।
1: डॉक्टर साहब, कुछ मिथ्या बातें भी होंगी, वो बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: अब मैं आपसे कुछ मिथ्स की बात करता हूँ, जो लोग, डॉक्टर साहब मैं तो पतला दुबला हूँ, और कुछ लोग होते हैं पतले दुबले आपने देखे होंगे,
1: जी
0: और उनको
1: बिल्कुल
0: कभी उनको हार्ट डिजीज हो गई, और वो कुछ भी गलत एक्टिविटीज में नहीं है, ये नहीं है, पतले लोगों को भी हार्ट अटैक हो सकता है, जो आपकी धमनियां हैं दिल की,
1: जी
0: और आर्टरीज हैं उसमें चर्बी जमा हो सकती है, चाहे वो पतला हो चाहे मोटा हो। फिर दूसरे लोग कहते हैं मैं जिम जाता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सरसाइज केवल 1 घंटा करता हूँ, बाकी के 23 घंटे, ठीक है आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं बहुत बढ़िया बात है,
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: बाकी के 23 घंटे आप क्या करते हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है कि उसको हार्ट अटैक नहीं हो सकता।
1: मोबाइल ज्यादा देखते हैं
0: कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं मैं वेजिटेरियन हूँ और फिर भी मुझे हार्ट अटैक हो गया, मतलब ये सब चीजें बेतुकी हैं, है ना, आपको ओवरऑल सब चीजें ठीक रखनी है, अपना स्ट्रेस लेवल से लेकर, वॉकिंग से लेकर, एक्सरसाइज से लेकर,
1: जी
0: सही खाना पीना, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं हार्ट की, जो हार्ट डिजीज के वार्निंग साइंस, बॉडी पहले हमेशा वार्निंग देती है,
1: जी
0: चेतावनी जरूर देती है, कुछ भी आप गलत कर रहे हैं तो क्या करती है,
1: जी डॉक्टर साहब, बेचारा दिल क्या कहता है।
0: हार्ट अटैक हमेशा फिल्मों जैसा नहीं होता कि जब मूवीज में दिखाते हैं कि एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखा और आदमी कर रहा है और नीचे गिर गया, कभी कभी सिर्फ आपके जबड़े में दर्द होगा, कभी
1: जी
0: कभी सिर्फ आपके कंधे में दर्द होगा, उल्टे कंधे में दर्द होगा,
1: जी
0: कभी सिर्फ पीठ में दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, या आपको इस तरीके का फील होगा जैसे आपको एसिडिटी हो रही है, पेट के ऊपर हिस्से में
1: जी
0: हल्का सा दर्द बना हुआ है, अचानक पसीना आ रहा है,
1: ये लक्षण है।
0: घबराहट हो रही
1: जी
0: है
1: जी जी
0: ना, तो ये सब लक्षण है, या सिर्फ असामान्य आपको थकान लग रही है। और मैंने देखा जितना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी होता है, जितना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो उसको उतना ही हल्के में लेता है इन सब सिम्टम्स को, वो सोचता है
1: जी
0: कुछ हुआ ही नहीं है, सब क्या है, तो ऐसे एसिडिटी है, ये तो ऐसी दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा।
1: जी डॉक्टर साहब, कोई भी बीमारी हो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, है ना डॉक्टर साहब।
0: और महिलाओं में तो लक्षण और भी अलग हो सकते हैं, इसलिए शरीर की बात सुनिए, उसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, है ना, क्योंकि हार्ट अटैक जैसी चीजें हैं उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, कहते हैं थोड़ी देर आराम कर लेते हैं सब ठीक हो जाएगा, गैस होगी,
1: जी डॉक्टर साहब, यहाँ वहां दर्द हुआ, बस सोचते कि गैस होगी, निकल जाएगी, सही हो जाएंगे।
0: लेकिन हार्ट अटैक वगैरह में गोल्डन आवर होता है, जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे उतना अच्छा होगा, जितनी जल्दी इलाज करेंगे उतनी जल्दी हार्ट मसल्स बचाया जा सकता है। देखिए
1: डॉक्टर मोहित अग्रवाल जी, बिना दवाइयों के आदमी स्वस्थ रहे, आप ऐसी ही बात करते हैं हमेशा, जो हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आती है।
0: बहुत ज्यादा इलाज के बारे में बात नहीं करता हूँ,
1: जी
0: हमेशा
1: जी
0: ये कहता हूँ
1: बिल्कुल,
0: बीमार आप कोई नहीं,
1: कोई नहीं
0: लेकिन हार्ट
1: बिल्कुल
0: अटैक ऐसी चीज है मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए कि भाई एकदम अगर किसी को दर्द हो रहा है तो उसे क्या करना है
1: जी
0: ना। अब हम बात करते हैं जो हमारा असली मूल मंत्र है कि प्रिवेंशन, कैसे
1: जी
0: बचाव करना
1: बचाव
0: है
1: कैसे
0: हार्ट
1: जी
0: अटैक से, है ना, अभी
1: बिल्कुल
0: तक तो घबरा रहे होंगे आप लोग ना, अब घबराइए नहीं, अब प्रिवेंशन है कि प्रिवेंशन कैसे करना है, हमें हार्ट अटैक को होने ही नहीं देना है, दिल की कई बीमारियों को अगर हम बचाव करेंगे तो दिल की बहुत सारी बीमारियों को रोका जा सकता है, जैसे उसकी कोई महंगी दवा भी नहीं है और ना कोई महंगा कोई मर्ज है कि कुछ करना है, सिर्फ 5 आदतें, 30 मिनट घड़ी में देख के कम से
1: जी
0: कम वॉक कर लीजिए, अपने पेस पे कर लीजिए, आप चलिए छोड़िए ब्रिस्क वॉकिंग करिए, ऐसे करिए वैसे करिए, 30 मिनट आप वॉक कर लीजिए, है ना, कहीं भी कहीं भी, ट्रेडमिल पे करनी है ट्रेडमिल पे कर लीजिए,
1: जी
0: घर के आंगन में करनी है घर के आंगन में कर लीजिए, गार्डन में
1: जहां
0: करनी है करनी है, 30 मिनट
1: जहां
0: कर
1: जगह
0: लीजिए,
1: मिले, जहां जगह
0: जहां
1: मिले,
0: जगह मिले वहां कर लीजिए,
1: जी,
0: अच्छा खाना खाइए घर का बना हुआ,
1: सबसे
0: है ना,
1: अच्छा है
0: सबसे
1: जी
0: बढ़िया, कोई जेब में खर्चा नहीं हो रहा, है ना, और ज्यादा नहीं खाइए, बस इंपॉर्टेंट ये है,
1: जी
0: जितने में आपको लगे कि मैं 80% के आसपास फुल हो रहा हूँ उतना खाइए, और खाना खाने से पहले मतलब 15-20 मिनट पहले अगर पानी पी लेते हैं आप आधा ग्लास तो ज्यादा अच्छा है,
1: खाना खाने तुरंत बाद पानी नहीं पीना
0: तुरंत
1: चाहिए।
0: बाद तो पीना ही नहीं है, पहले भी तुरंत नहीं पीना है, मतलब 15-20 मिनट का दोनों में गैप हो तो बेटर रहता है,
1: जी
0: और पूरा पेट भर के ना खाएं, मतलब 80%, 85%, 75% तक पेट भर के खाइए पूरा, मतलब अगला मील भी आएगा उसके लिए भी कुछ छोड़िए, है ना। दूसरी बात कि कम से कम 7 घंटे सोना ही सोना है, चाहे
1: जी
0: आपकी कुछ भी हो, आपको नींद नहीं आ रही है आप आंखें बंद करके लेटे रहिए,
1: लेटे रहिए
0: है ना,
1: जी
0: 7 घंटे आपको बेड पे रखना ही रखना है, सोना एक ऑप्शनल नहीं है, ये कोई वो नहीं है, लोग कहते हैं हमें 5 घंटे में नींद पूरी हो जाती है मेरी, ये नहीं, उससे आपकी बॉडी स्ट्रेस में आएगी।

0: दिक्कत शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा होगी। देखिए मैं जो भी चीजें बताई हैं उसमें कोई पैसे खर्च नहीं हो रहा है आपका,
1: बिल्कुल कोई नहीं,
0: है ना?
1: बिल्कुल ये तो आप रहते ही
0: ठीक
1: आपका
0: है,
1: उद्देश्य है
0: ठीक है। बॉडी एक मतलब सोना एक बॉडी की रिपेयरिंग है ना,
1: जी।
0: उसको आपको कराना ही कराना है। फिर जैसे हम कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो लोगों को समझ नहीं आता स्ट्रेस क्या है, तनाव क्या है, तनाव तो ना कुछ मतलब क्या, उसमें कर सकते हैं आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगाना, ध्यान भी लगाना कुछ नहीं होता, आपको बैठना है मतलब किसी से

0: बैठना है, मतलब किसी से बिना बात करे आंखें बंद करके बैठना है, और जो दिमाग में आ रहा है वो आते रहने दीजिए। आपको अच्छा लगता है तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं, गाने वगैरह सुन सकते हैं, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली के लोगों के साथ बात करिए, मोबाइल पे नहीं, फेस टू फेस करिए,
1: जी
0: है
1: जी बिल्कुल
0: ना,
1: बिल्कुल
0: उनसे चाय पीजिए, गप मारिए, जो भी बात करनी है करिए, है ना। तो ये सब अगर आप करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। फिर पांचवा सबसे आखिरी कि कम से कम एनुअली एक हेल्थ चेकअप जरूर कराइए, और हमेशा अपनी एनिवर्सरी वीक पे कराइए।
1: बिल्कुल जी जी
0: एनिवर्सरी वीक क्या होती है कि जब भी आपकी शादी की वर्षगांठ होती है उससे एक हफ्ते पहले या एक हफ्ते बाद,
1: मतलब
0: दोनों
1: आप लोगों
0: मिलके
1: को
0: कराइए।
1: अपनों को गिफ्ट देना चाहिए ये
0: हाँ, दोनों मिलके कराइए,
1: यार।
0: ये नहीं एक जने ने करा लिया,
1: जी जी
0: ये
1: जी
0: स्कूटर दोनों पहियों से चलेगा, है ना, दोनों लोग कराइए,
1: जी
0: और चाहे एक हफ्ते पहले चाहे एक हफ्ते बाद, ये बना लीजिए, साल का एक वो बना लीजिए, इससे आपको याद रहेगा कि भाई कि हमें कराना है,
1: जी बिल्कुल
0: ठीक है। अब किसे चेकअप कराना चाहिए? हर उसको कराना चाहिए जो 35-40 साल के उम्र के आसपास आ गया है,
1: जी
0: या किसी की फैमिली हिस्ट्री है कि घर में कुछ जेनेटिक डिजीज वगैरह हुई है या कोई हार्ट अटैक की हिस्ट्रीज वगैरह है, तो उसको वो पहले भी करा सकता है, मतलब
1: जी
0: अनुमान 35-40 की उम्र में शुरू कर सकता है। जो फैमिली हिस्ट्री किस किस चीज की, जैसे डायबिटीज है बहुत ज्यादा किसी घर में, ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं,
1: जी
0: है ना, या कोई जना गलत आदतों में पड़ गया है, स्मोकिंग के या ड्रिंकिंग के, या मोटापा है उसको, है ना, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है वो, तो
1: जी
0: पहले भी करा सकता है, वरना 35-40 उम्र ठीक है।
1: जी
0: हर व्यक्ति को हर टेस्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन सही व्यक्ति को सही समय पे सही टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसके ये याद रखिए कि मतलब इम्पोर्टेंट है कि गाड़ी चलती रहे हर
1: बिल्कुल
0: तरीके से,
1: जी
0: वो
1: जी
0: बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
1: जी
0: दोस्तों,
1: बिल्कुल
0: मैं आपको डराना बिल्कुल नहीं चाहता, मैं आपको सिर्फ जगाना चाहता हूँ,
1: जी
0: मैं
1: बिल्कुल
0: आपको सिर्फ जगाना चाहता हूँ कि समय रहते आप सजग हो जाइए, क्योंकि हार्ट अटैक अचानक तो आता है, लेकिन हार्ट डिजीजेज अचानक नहीं बनती, वो हमारी आदतों से हल्के हल्के हल्के करके बनती हैं, जो हार्ट अटैक के रूप में हमको दिखता है।
1: जी
0: आज आते जाते बस एक बात, दिल की उम्र कैलेंडर तय नहीं करता,
1: जी
0: दिल की उम्र और कैलेंडर तय नहीं
1: क्या
0: करता,
1: बात है
0: है
1: जी
0: ना, आपकी आदतें तय करती हैं।
1: जी बिल्कुल
0: और एक और, भविष्य अचानक नहीं बनता, वह रोज की आदतों से बनता है। तो अगर आप अपनी रोज की आदतें सुधारेंगे ना, और पता है आपको, जैसे कोई भी आदत है आपको, मतलब चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है ना, वो उसको आप छोड़ना चाहते हैं, तो आप 20-25 दिन बिल्कुल ढंग से सोच लीजिए, वो
1: जी
0: काम हम नहीं करेंगे या करेंगे, तो आपकी वैसी आदतें बन जाएंगी।
1: डॉक्टर
0: शुरुआत में दिक्कत होगी, देखिए, अगर आपको चीनी खाने की बहुत आदत है, मीठा खाने की बहुत आदत है, अब मैं आपसे कहूँ
1: जी
0: छोड़ दो, तो आपको शुरुआत में बहुत दिक्कत होगी, मैं कहना मेरे लिए बहुत आसान है कि छोड़ दो,
1: जी जी जी
0: है ना,
1: जी
0: लेकिन आपको मुश्किल होगा छोड़ना, लेकिन आप 20-25 दिन मतलब बिल्कुल सोच लेंगे कि मैं नहीं खाऊंगा चीनी, है ना,
1: जी
0: मीठी चीजें नहीं खाऊंगा, तो आप ठीक, मतलब 20-25 तो आपकी आदत छूट जाएगी।
1: डॉक्टर साहब किसी सही कहा कि अगर आदत डालनी तो अच्छी आदत डाल दो। डॉक्टर
0: अच्छी आदत डाल दी, तो कहने का
1: साहब
0: मतलब, कहने,
1: जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है।
0: हाँ, थोड़ा चलेंगे, थोड़ा मुस्कुराएंगे, थोड़ा सा अच्छा खाएंगे, और अपनी सेहत को कल पर नहीं छोड़ेंगे। भविष्य अचानक नहीं बनता, वह रोज की आदतों से बनता है। तो
1: जी
0: आज ही अपने दिल से एक वादा करिए,
1: जी
0: दिल से वादा नहीं, दिल से वादा
1: दिल से
0: करिए,
1: वादा
0: वादा
1: कीजिए
0: करिए,
1: जी
0: थोड़ा चलेंगे, थोड़ा मुस्कुराएंगे, थोड़ा अच्छा खाएंगे, और अपनी सेहत को कल पर नहीं छोड़ेंगे।
1: जी बिल्कुल
0: मैं हूं डॉक्टर मोहित अग्रवाल, फिर मिलेंगे एक नए विषय
1: नए
0: के
1: विषय
0: साथ,
1: साथ तभी
0: और तब तक
1: तो
0: याद रखिए, बाबू
1: नहीं
0: मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी
1: बड़ी
0: होनी
1: होनी
0: चाहिए।
1: चाहिए। और अब आज का ये कार्यक्रम जान है तो जहान है समाप्त करने के लिए रविंद्र कुमार मिश्रा को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं आपको बता दें आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे बरेली के फोकस पैथलैब फोकस एमआरआई एंड डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर मोहित अग्रवाल एमबीबीएस एमडी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।
3: आधे घंटे के इस कार्यक्रम में अदाकारा मीना कुमारी के पूरे करियर को समेटना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये तो मुमकिन है कि हम उनकी सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं की बातें करें। सन 1962 में आई फिल्म साहेब बीवी और गुलाम, गुरुदत्त की यह फिल्म मीना कुमारी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कही जा सकती है।
4: मुझे यहाँ क्यों बुलाया?

0: कुछ भी नहीं देख पाए।
1: क्या बकवास करती हो, मैं यहाँ बैठा तुम्हारा मुंह देखा करूं, इतनी फुर्सत नहीं मुझे।
0: सुनो तो, मेरा मुंह देखना तुम्हें पसंद नहीं तो ना देखो, पर आज तुम वहां ना जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ।
1: ना जाओ? वो क्यों? इस हवेली के मर्दों को तुमने निकम्मा समझ रखा है क्या?
0: पत्नी के पास रहने से मर्द निकम्मा तो नहीं हो जाता जी, धर्म को साक्षी मानकर तुमने मुझसे ब्याह किया, क्या मेरी तरफ तुम्हारा कोई भी कर्तव्य नहीं?
1: जिस मर्द को अपना कर्तव्य जोरू से सीखना पड़े, लाना तो
0: रोज ही तो जाते हो वहाँ, एक दिन मेरे पास भी रह गए तो।
1: मैं मर्द हूँ छोटी बहू, चाबियों के ये गुच्छा नहीं जो सदा तुम्हारे पल्लू से बंधा रहो।
0: सदा की कौन कहता है जी, सिर्फ आज, कभी तो सेवा का मौका दो मुझे। हंसे क्यों?
1: सेवा करना जानती हो तुम लोग?
0: स्वामी को खुश करने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ।
1: मुझे खुश करने के लिए गाना गा सकोगी? जैसे चुन्नी दासी गाती है, गा सकोगी? नाच सकोगी मेरे साथ?

कई लोगों ने ये भी कहा कि फिल्म साहिब बीवी और गुलाम की ये भूमिका जिसमें मीना कुमारी छोटी बहू बनी थी असल में उनकी असली जिंदगी से बहुत मेल खाती है। दरअसल मीना कुमारी कमाल अमरोही से अपनी शादी से खुश नहीं थी। शादी के 6 साल के अंदर ही वो और कमाल अमरोही अलग हो गए थे। मीना कुमारी ने तलाक के समय लिखा था, तलाक तो दे रहे हो नजर कहर के साथ, जवानी भी मेहर के साथ लौटा दो। मीना कुमारी के अंदर एक ठोकरें खाई हुई स्त्री थी जिसका दिल छलनी छलनी था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मीना कुमारी शायरा भी थी। उनकी मौत के बाद जाने माने शायर, गीतकार और फिल्मकार गुलजार ने उनकी गजलों की किताब छपवाई और उसका संपादन किया। अपनी एक गजल में मीना कुमारी लिखती हैं, चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, हम सफर कोई गर मिले कभी, दोनों चलते रहे कहां तन्हा। ये सच है कि मीना कुमारी में कमाल का सौंदर्य था, भला की खूबसूरती थी, लेकिन उनकी खासियत थी उनके चेहरे पर झिलमिलाते भाव। उनकी खासियत थी दर्द को अपने चेहरे पर लहर की तरह छा देना। जरा फिल्म दिल एक मंदिर का ये गाना सुनिए और जहन में याद कीजिए स्क्रीन पर झिलमिलाती मीना कुमारी को, जिसके दिल में है दर्द का तूफान।

सन 1962 मीना कुमारी के करियर का सबसे महत्वपूर्ण साल था। इस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए तीनों नॉमिनेशन मीना कुमारी को मिले। फिल्म आर

है कि कोई प्रतियोगिता थी ही नहीं। मीना कुमारी का मुकाबला खुद से था और साहिब बीबी और गुलाम के लिए उन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म।

संगीतकार गुलजार शायरी की वजह से मीना कुमारी के करीब आ गए थे। उनकी शायरी की दुनिया को गुलजार ने जाना पहचाना था। सन 1971 में जब बतौर निर्देशक गुलजार ने फिल्म मेरे अपने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाया तो फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका मीना कुमारी को सौंपी।

कन्या कुमारी के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी पाकीज़ा। इसे बनने में कुल 14 साल लग गए, लेकिन फिल्म पाकीज़ा के जरिए पर्दे पर कमाल अमरोही और मीना कुमारी ने रचा।

मीना कुमारी ने लिखा था, तुम क्या करोगे सुनकर मुझसे मेरी कहानी, बेलुत्फ जिंदगी के किस्से हैं फीके फीके। एक अदाकारा जिसके भीतर था दर्द का समंदर, जो गहरी तन्हाई की शिकार थी, 31 मार्च 1972 को महज 39 बरस की उम्र में इस फानी दुनिया से चली गई। उनके अपने अल्फाज हैं, आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। दिन डूबे हैं या डूबे बारात लिए किश्ती, साहिल पे मगर कोई कोहराम नहीं होता।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री मीना कुमारी पर।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आपके बहुत सारे कमेंट हम तक पहुंच चुके हैं जिसमें आपने अपनी पसंद लिख भेजी है हमारे पास, और शुरू करते हैं आपके नामों का सिलसिला। आप हैं सहारनपुर से।

राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक अभिषेक नामदेव, और बठिंडा रोड डब्बाली से राजन नारंग, अंजू नारंग, मोहित औतानिया नारंग, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार गोडाना, भोला कॉलोनी घरौंडा जिला करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन साहिल और वाणी जयजान, आप हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वाणी आरव, चंद्रकला गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही, प्रियांशी सोनी, आप हैं दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य जायसवाल, ये हमारे श्रोता जावेद इनायत और यूसुफ इनायत, लीजेस्टर इंग्लैंड से, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह, आप हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर, अबरार हुसैन, अल्ताफ हुसैन, मुन्ना भाई, आशिक हुसैन, सालुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सी डी दीवाना, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से हमारे श्रोता पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का, गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन और सारिका सुतार, शाहूनगर परिते से बाजीराव ढेरे और संगीता, बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष, मनीष, अंशिका, यूनिस खान और सोफिया खान, मधुबनी राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, सुशांत सिंह राजपूत, चुलबुल रानी, पटना बिहार से कुमार सागर और श्वेता सागर, आप हैं नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ, तैमूर और कलीम अंसारी, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लाडो कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल और डुग्गू भाविक सिक्का, आप हैं ग्रामबा पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान, रावर करनाल से विनोद लखनपाल, और ये हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुयश, आशीष, तन्मय और अपूर्वा, मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगहना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, राजेश, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रताप सिंह, आप हैं उमरी नांदेड़ महाराष्ट्र से बालू आप्पा घड़बले और ज्योति घड़बले, मालवा रेडियो श्रोता संघ गुलबालोद तहसील आलोड रतलाम मध्य प्रदेश से विक्रम मालवीय, रचना मालवीय, कमलाबाई, वंदेवी, आकाश माहेश्वरी, विनायक और आपका समस्त परिवार, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अंबई, सिलोड, छत्रपति, संभाजी नगर, औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोड़के, आप हैं माँ बम्बलेश्वरी रेडियो श्रोता संघ सांकरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार, रुद्रांश प्रताप, राजकमल रेडियो श्रोता संघ अष्टी जिला जालना मराठवाड़ से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाव तांदले, धोतर जोड़ा अष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते, पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सैयद भाई, सूफियान, अनस, आयजा, सरोज चौक से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान और हदिया खान, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, आप हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नावकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायडे और आशीष मुर्रेकर, कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली मौर्य मंदिर से रतनमाला मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस प्रियांशी, पुष्पा गौरव, चंद्रप्रकाश और मन्नू भाई, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेड़ी से नानाजी लाम से, मीना लाम से, तेजस जय लाम से, हर्षिता लाम से, आप सभी को सुनवाते हैं फिल्म जिंदगी और तूफान का ये गीत जिसको गाया है मुकेश ने।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी कसे क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के लिए। वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमला और भावेश चन्नी भावसार। आप हैं ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम और सुंदरम गुप्ता। राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम और शिवम। ये हमारे श्रोता दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमन नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत। सेक्टर नंबर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आप हैं गांव कलमंडी खुर्द, जिला झालावाड़, राजस्थान से अनूप सिंह, नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पमार, भानु प्रताप सिंह पमार और समस्त राजपूताना परिवार। मोहल्ला हलवाइयां शिरकोट, जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजदा रानी और हिना कौसर। चक 5 MD पतरोडा अनूपगढ़ राजस्थान से मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और सुनील जनागल। आप हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट, जिला रतलाम, MP से जगदीश धाकड़, नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार उत्तराखंड से। गांव भोजपुर तका सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजिता खुराना और केशवरीधन खुराना। राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्णा और राकेश जैन। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन, अब्बासी, सहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम और रसीद वारसी। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान। आप हैं गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मगुनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत खान, मास्टर अजहर खान और अजीम खान। बेरडी मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हुकुम करमरकर और सुनीता करमरकर। आप हैं ग्राम गोपी खिरिया, तहसील भांडेर, जिला दतिया मध्य प्रदेश से राहुल पाल, हरिमोहन, अंजना, ज्योति बघेल और लक्ष्य बघेल। ये हमारे श्रोता रघुनाथपुरा, जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। चनेसर गोठ कराची से अमर, रमेश कुमार खत्री, कृष्णलाल खत्री, मोहम्मद आमीन, जफर, सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। मौर ये हमारे श्रोता कर्मचारी नगर रोड बरेली से गौतम ऋषि मौर्य, मनोहर लाल, मिहिलाल, प्रीति, रीना और सुनीता मौर्य। आप हैं आवास गृह दबो लाहार, जिला भिंड से सोनू बघेल सरपंच, मोनू बघेल, गोलूपाल, विक्की पाल। फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा।

विशु खेड़ा विशाल, लाड़ी खेड़ा शालिनी, टिवांशी वाणी, आरबी खेड़ा जीवन सिंह बुक और आपका समस्त पूरा परिवार। छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराज और अंशुमन। छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनुष्का और तन्मय गजबिये। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र सिंपा, कपिल सिंपा, ईशान, पूजा परिहार। आप हैं सफीदों सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाडो लवली, रजत लव, कुश और समस्त खन्ना परिवार। मौलागढ़ नई बस्ती बरेली से तरन्नुम अंसारी, तरहान अंसारी, अजरुद्दीन मोहम्मद हसन अंसारी। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दाता सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। शनि बाजार कस्बा उगहती बदायूं से प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन, देव गुप्ता, प्रियल और कैरव गुप्ता। परी महल कासगंज से अबाक खान, नबील खान, आरफा, इल्मा, एम असलम सैफी और सैमुल कुमार। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु। आप हैं MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव और SK पप्पी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। आप हैं गणेशपुर, गंज, डुंडवारा, एटा से एम फारूक शेख, शेख शमा, परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज और बेबी मुस्कान। कस्बा उगैती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज, पंकज, प्रिंस, प्रशांत, कार्तिक और निर्भया गुप्ता। और नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल। ग्राम तंगौरी जिला मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगौरी, जसबीर कौर, महिकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह। आप सभी को सुनवाते हैं फिल्म पाकिजा का ये गीत जिसको गाया है लता मंगेशकर ने, गीत के बोल कमाल अमरोही के और संगीत निर्देशन गुलाम मोहम्मद का।

कार्यक्रम का ये गीत आप सभी श्रोताओं के लिए। आप हैं ग्राम पोस्ट गोठा खंडवा से रामबाबू मिश्रा, कृष्ण देवी, दिलीप मिश्रा, माधुरी, प्रदीप, सविता, सत्यम, शीतल, राधा, सलोनी और शिवम मिश्रा। बैंक सेंटर चनेटी के पास बरेली कैंट से विनेश कुमार श्रीवास्तव, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान। आप हैं गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमारी, कुमारी पूजा खटक। ततरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोकेलाल वर्मा। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून, गुरमीत सिंह, मीता साउथ दिल्ली से। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, संजय ट्यूल और पीबी कुलथे। जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, राखी, तृप्ति और दुर्गेश्वरी जायसवाल। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन। आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी दिव्यहर, नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। कुमार हैडा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। आप हैं राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार। ये हमारे श्रोता अजीत कसाना माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से, बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मारकंडे, ममता मारकंडे और बेबी किट्टू। आप हैं ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जावेद अंसारी, सूरज अख्तर, जैस्मीन, शकीला, सना, समा, हिना, रजिया सुल्ताना अंसारी और आपका पूरा परिवार। गनगोला तातागंज बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम, रहूफ खान, साबरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ और ईशान खान। आप हैं उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भैरूलाल वाक्तरिया धाकड़, भोला वाक्तरिया, प्रवीण रियांश और प्रतीक वाक्तरिया। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, राहुल और मुनीश शर्मा। ये हमारे श्रोता हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावाली से राशिद हुसैन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी। नागपुर महाराष्ट्र से कमल सानी, हाजी अफजाल मलिक, संदीप, रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी सानी। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक।

आपने मुताला महाराष्ट्र से, विजय सुरलकर रतनमाला और आराध्या सुरलकर। बुलंदशहर से उमेश कुमार गौड़ और रानी गौड़। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श और बेगम राबिया शेख। आप हैं ये हमारे श्रोता बुलंदशहर से उमेश कुमार गौड़ और रानी गौड़। और मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कपनू निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णवानंद, सत्यमानंद। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। रामसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, पवन राजेश, अजय, राहुल और मनु। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना अंसारी, अली अंसारी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। आप हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन और अपार ढिंगिया। मछली गोदाम कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा और ऋषभ सिंह। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलगा मिड्डा। आप हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थिक और अलौकिक चंसौलिया। ये हमारे श्रोता नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार, नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद, वसीम अंसारी और पप्पू भाई अंसारी। आप सभी को सुनवाते हैं फिल्म मंजिल का ये गीत। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीत के बोल योगेश के, संगीत निर्देशन आर डी बर्मन का।

साथियों आपसे विनम्र अनुरोध है कि एक पोस्ट पर एक ही बार कमेंट किया करें। हमारे कई सारे साथी कई बार कमेंट कर देते हैं जिससे कि कार्यक्रम में असुविधा होती है और कई सारे श्रोताओं के नाम भी छूट जाते हैं। अगला गीत आप सभी श्रोताओं के लिए। आप हैं ग्राम ऐशोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से, मोहम्मद फैज, मोहम्मद अर्श, अरशान, अलशवाबी, शुएब और अमीर, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, ग्राम शंकरपुर पोस्ट ओसामा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद सनोज, अमन सोनी, अंकिता, विनीता, अनिता, सुनीता और सूरश्री यादव। आप हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। गांव बांडी वाला फजिल का पंजाब से, ओम बगड़िया, क्रियांश और योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर। आप हैं सरलाही सोकनाहा नेपाल से, अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी, राहुल कुमार, वंदना कुमारी, प्रियंका कुमारी शर्मा और आपके सभी साथी। जिला किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी। आप हैं कोका बिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल। धमदा ग्राम सुकरी कला से अमित, शकुन, अरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल। गंज डनवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, उस्मान यासीन और शमसुल कमर राही। ऊंचे गांव नांदेड़ महाराष्ट्र से देवानंद शिंदे पाटिल। ऊपरकोट मोहल्ला चौगंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अवान अब्बासी, साथ में आपका पूरा परिवार। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, सबरीन परवीन, माहिरा नूर। आप हैं विराटनगर नेपाल से अरुण चंद्र शर्मा, रेणु शर्मा और आपके सभी साथी। चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से वनबारी लाल कुशवाहा, मंजूलता, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद और आपके सभी साथी। ये हमारे नियमित श्रोता प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा, प्रथम सलूजा, C2 जनकपुरी नई दिल्ली से। खरसावा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर और गौरव नायक। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, विमल ठाकुर, सरिता ठाकुर, शुभ, लव, गुनगुन, अमर सिंह, नीतू, अमन, रिया, सेजल, सूर्य, सोना, रीना और नीरज। आप हैं बक्सेना दातागंज बदायूं से। उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नाचानी, विनीत, मिथिल नाचानी और तिलक तंबोली। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और सुशील येले। सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हियांश कुमार चंदन। आप हैं रेंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा और सार्थक शर्मा। आप हैं मुनव्वर खान जी। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक और विनोदपुरी। कटरा चांद खां पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण दृष्टि और मानवी मौर्य। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पमार, डैनी पमार, मनीष पमार, दिनेश चौहान, रामदेवरा से बाबूराम जयपाल, डांगरी से खुदाबख्श, खलीफों की बावड़ी से। आप हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री। ये हमारे श्रोता गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा, कस्बा बराड़ा।

आज लामबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत गुरशब्द सिंह राहुल, कस्बा मीरगंज बिजली घर से आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, ओमेंद्रपुरी गोस्वामी और भाई कल्लू मिस्त्री। आप हैं नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंग मुड़त, चेतन नाहटा। आप हैं जिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमदाड़े। ये हमारे श्रोता पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पूनाराम और कृष्णा देवांगन, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर उमंग, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, सालार पहलगांव कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन। आप सभी श्रोताओं के लिए सुनवाते हैं फिल्म साजन का ये गीत, जिसको गाया है लता मंगेशकर ने, गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम का ये गीत आप सभी के लिए। आप हैं मुकेश राजपूत ग्राम कुमारपुर से, ये हमारे श्रोता आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, मैंडी, सौरव और शाइना शर्मा, मंसूरी क्लब ग्राम एचौरा तहसील मिलक रामपुर से सकावत हुसैन मंसूरी, तालिब हुसैन मंसूरी, मोहम्मद फैज, मोहम्मद अर्श, तौफीक मंसूरी, सलीम, मोहम्मद नबी, राहुल रस्तोगी और आपके सभी मित्र। ये हमारे श्रोता हैं मुकेश राणा जी। आप हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल और चंपा साहू, बहेड़ी से अंजुम भाई, खालदा बेगम,

गंज डंडवारा से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज़ शेख, दानिश शेख और अमन अफरीदी। आप हैं बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश कुमार, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परवणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश और प्रतेश संघई, आपका समस्त परिवार आपके साथ। धाड़ी नांद्रा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे। आप हैं चमनपुरा उदयपुर से नजीब खान, सबीहा खानम, फरीदा बानो, जब्बार मोहम्मद, अशरफ खान और मंजू निम्मी। कोपरगांव से सुरेश मालोदे, वाशा मालोदे। अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा। आप हैं डी आर नरवानी, रवि चांदनी, खुशी नरवानी, चक्रभाटा कैंप से। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊ खड़ से, ललिता आशा रानी खड़ से, गणेश कार्तिक खड़ से, संजना परी खड़ से, देविका चौधरी, कुमारी लड्डू चौधरी, स्वाति प्रज्ञा। और आप हैं मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, पी एस नावकर, चिंगाव, विदर्भ से वसंतराव भोजने, सोनू भोजने। अक्षय कॉलोनी गोंदर रोड धुलियाराम महाराष्ट्र से मनोहर मगर, यामिनी मगर, उदयन और अर्पिता। आप हैं नेवासा खुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार, माया, शिवांश, चंद्रकला पोपलगढ़। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज, बरेली से जीशान वासी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान। आप हैं दीता रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैवन शबेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद और आवाद खान। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या, निवेश और नियति कुमारी। कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ और सारिक अली खान। 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा, बबीता, आगमनसी, पूजा, शोभा रघुवंशी, नंदिनी आराध्या, खुशी रघुवंशी, कुमारी वंदना खड़ से, ललिता लक्ष्मी नारायण बाबू खड़ से। ग्राम पंचायत लखमपुर पोस्ट वोहित भोजीपुरा बरेली से नरेश चंद्र, श्यामा देवी, दयाराम, नीतू देवी, ममता गुंजन, भावना राजाराम, राजपाल, आदित्य, अनिकेत और ध्रुव। पंचकुला सेक्टर नंबर 9 से आशीष चुग, अश्विनी चुग, गोविंद, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ढींगरा, अतुल शर्मा। चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार, जयकिशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, इंद्राणी, माया साहू। और आप हैं गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला और नसीम बेगम। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत कौशिकी, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, कृषव और प्यारी गुड़िया वेदा सिंह। गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल विकास, रोशनी और शगुन बारासा। धनौली तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। आप हैं गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन, फातिमा। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद और कुमार गौरव मंदुरकर। ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर पानी की टंकी पास से सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभयमीत, भगवान देवी, स्वाति सिंह, तानिया गौतम और आपके सभी मित्रगण। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत और महक भाटिया। मुंडा टोला डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम और गंगेश्वरी नेताम। गांव गड़ी कोटहा जिला पंचकुला पंचकुला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अकरम अंसारी, शानिया मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा अंसारी, आयशा, उमर अंसारी और समीना अंसारी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर विरक, जयतेग और मीका विरक। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड, निखिल कांगड़ा और तनवी बोर्ड। शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम, अजीम, अदीम, अब्दुल गनी, अलमीर, जन्नत और मोहम्मद जैन। आप हैं मुबारकपुर ऊंची तकी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा। आप सभी श्रोताओं के लिए सुनवाते हैं फिल्म दो कलियां का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, गीत के बोल साहिर के, संगीत निर्देशन रवि का।

कार्यक्रम का ये गीत आप सभी श्रोताओं के लिए छबीलपुर गुन्नौर यूपी से हरवेश कश्यप अर्जित और दिव्यांश कश्यप। आप हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा रचना अनुज आयुषी रमेश चंद्र शेख मूसा भाईजान राजकुमार बोड़ाना सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित ऋतु और मुकेश जगताप नंद कुमार ठाकुर प्रमिला ठाकुर खुशबू ज्योति ठाकुर चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज शाहीन सुल्ताना सोनू तस्नीम निप्पी सानी अफजाल मलिक बोड़ोसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू वीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु बबली और प्रियांशु साहू। आप हैं अनिल गौरव कविता मानसी अरोड़ा वीआईपी रोड न्यू दिल्ली मोतीनगर एरिया जोन से जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद प्रकाश कुमार बल्लू निषाद तरुण श्रीनिका और श्रीनिजा गंज डंडवाल से शमसुल कमर राही शाहीन फातिमा अनु खान अदनान और फैजान खान।

नवा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरबंत कौर मनु मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ आप हैं धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा सुनीता हर्ष कुमार विनीत कुमार और कुमारी कृष्टि पटवा बहेड़ी से इश्तियाक अहमद इदरीसी ग्राम कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागो ने योगिता मिस प्रियाली पार्थ हागो ने और आपका पूरा परिवार पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति भूमिका अरोड़ा आप हैं रामपुर लिसनर क्लब नालापार बाग छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन निजामुद्दीन मोहम्मद जमालुद्दीन सादिया अक्सा और हम्माद ईदगाह जनूबी जिला भक्कर पंजाब से रिहाना खान हफीजुर रहमान खान ये हमारे श्रोता पूजा रेड्डी श्रोता संघ पलेरा हॉल टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजेश कुमार अकेला यशोदा यादव राजीव और संजीव यादव आकोट से विनायक बेंडे मंगला बेंडे विजय शुभम पवनजरिये के संजीव डावेराव वीरपुर पोस्ट बिलसड़ तहसील अलीगंज एटा से विपिन कुमार शाक्य सपना रविंद्र राजेश रमेश चंद्र राजीव प्रदीप रंजीत सिद्धार्थ शाक्य सुजाता संगमित्रा प्रज्ञा प्रतिज्ञा और समस्त शाक्य परिवार आप हैं फुले नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद जी करवा गीतांजलि करवा आकाश और आकांक्षा करवा गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद मोहम्मद अदीब अब्दुल हनान जीनत जावेद नाहिद रानी आयत सिकंदर अली मोहम्मद आदिश कुरी सेक्टर नंबर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिनी कल्पित चौहान बेबी गर्बी और हिमाक्ष दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सांवले रेखा सांवले हिमांशु अनुराग सुलोचना चारवी और प्रणव सांवले चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम सुनील गौतम अमन गौतम बुद्धनगर खंडवा से नदीम भाई बैजोई से राजू रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा सोमनाथ कालिया आप हैं कुलस्वामिनी रेडियो क्लब श्री रामपुर भोकर महाराष्ट्र से हरिभाव बिड़वे अनिकेत सोनवने शुभांगी श्रावण और अनीता बिड़वे मालिया सरदना मेरठ से अनिल जैन जैन साहब संयम जैन मुस्कान और जीवीएम जैन सागर लखनऊ मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे लाडली जी रिमझिम और सक्षम चौबे आप हैं शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे सागर ये हमारे श्रोता हैं हितेंद्र दास आसाम से बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र मखीजा और काफिर भाई अलकनाथ मंदिर के सामने से हमारे श्रोता बेचेलाल गंगवार गुड्डी देवी प्रशांत देव ज्ञानेंद्र देव योगेश कुमार इला देवी गंगवार बर्फा देवी सुनील यादव संजय अग्रवाल अश्विनी कुमार मौर्य विनोद दीक्षित राज महावीर कश्यप श्री राम राठौर रमेश चंद्र सैनी गौतम राम और बाबू भाई आप हैं चक चौदह पीएसबी जिला श्री गंगानगर से कुलदीप सिंह राजविंदर कौर संदीप सिंह जसकारण जसकरण सिंह हरदीप सिंह मनराज सिंह ये हमारे श्रोता आसलगांव बाजार तहसील जलगांव जामोद से बुलढाणा महाराष्ट्र से राजू माठे गजानन ज्ञानेश्वर और संजय माठे गांव हीरा वाली फजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा विमला गोदारा इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा आप हैं पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी असमानाज अंसारी शबनम मानो जेल रोड बक्सर से राज एस टी अंसारी फातमा नाज चमन पार्क दिल्ली से सोनम और अदीबा बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेंद्र नेताम कुसुम नेताम मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी कामरान निषाद अरमान नवेद रिशाद अजरा तबस्सुम रायपुर अनई जिला बनारस से अब्दुल मजीद अंसारी नौरीन अंसारी और आफिया परवीन आप सभी को सुनवाते हैं फिल्म आया सावन झूमके का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में गीत के बोल आनंद बख्शी के संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरंग। श्रोताओं, कार्यक्रम सबरंग में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनीता का गाए इस लोकगीत के साथ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, आप रेडियो क्या है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। आइए अब आपको सुनवाते हैं अजीज नजान की गाई ये कव्वाली।

श्रोताओं, मिताली सिंह की गाई इसी गजल के साथ कार्यक्रम सबरंग यहीं संपन्न होता है। आइए अब आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे FM रेनबो के कार्यक्रम।

और दोस्तों आपको अब कार्यक्रम संबंधित सूचना दे देते हैं। कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस आप सुनेंगे प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच, जिसके प्रायोजक होंगे चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ। इसके अलावा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी आप सुनेंगे प्रत्येक रविवार सायं 7:30 से 8 बजे तक। और अब हम आपसे कहते हैं कि आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में। आपकी होस्ट दोस्त रत्ना शुक्ला है आपके साथ। कितने लोग हैं हमारे साथ भाई, फोन भी आने को है, फोन भी आ रहा है। उसके साथ कौशिक वधवाना जी का भी मेल आ गया है और लिखते हैं कि कैसे हैं आप, हम बहुत अच्छे हैं। इन्होंने गुजरात राजकोट से मेल कर दिया है। और कौशिक अस्मिता वडवाना परिवार, नमस्कार शुक्ला, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, मजे में अच्छे। और लिखते हैं इनका संदेश है, बड़ा प्यारा सा पोस्टर के साथ इन्होंने संदेश लिखा है, रिश्ता बारिश जैसा नहीं होना चाहिए जो बरस कर खत्म हो जाए। वाह, रिश्ता तो हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश होकर भी हमेशा आसपास हो। बहुत अच्छी बात आपने लिखी, वडवाला परिवार को पूरा पूरा बहुत बहुत खूबसूरत सी बात लिखी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारे से संदेश की तरह, संदेश के लिए। वीरपाल सिंह जी क्या लिखते हैं, मेरा संदेश उन लोगों को है जो गाड़ी चलाते समय बाहों पर फोन पर बात करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बात करनी हो तो गाड़ी साइड में रोक कर उसके बाद बात करिए। वीरपाल सिंह यानी कि गोदवाना अतरौली संडीला हरदोई से इन्होंने ये मेल किया। अब किन की मेल की बारी है भाई, ये है नागेश कुमार जी का मेल हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बात साझा करना चाहते हो, नागेश कुमार जी लिखते हैं, जब भी मैं FM 100.7 पर फ़ोन करता हूँ और कॉल रिसीव हो जाता है तो मुझे घबराहट होने लगती है, मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगती है, उस समय मुझे जो बात कहनी होती है वो मैं ठीक से कह नहीं पाता हूँ। अरे नागेश जी, इतना परेशान मत हुआ करिए, आपका फ़ोन भी लगा था अभी लेकिन आप बोल नहीं पा रहे थे और शायद आपने इसलिए फ़ोन भी काट दिया, तो आपने अपना संदेश हमें दे दिया था, वो संदेश हमने ऑन एयर कर दिया। आपने बिल्कुल घबराहट की बात नहीं है, FM रेनबो तो आपका अपना दोस्त है ना, तभी तो आप संदेश यहाँ पर शेयर करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। और कई बार सवालों का जवाब मुझे पता होते हैं लेकिन घबराहट की वजह से मैं ना तो सवाल पूछ पाता हूँ ना ही उसकी सही उत्तर दे पाता हूँ। ऐसा क्यों होता है, क्या सामान्य बात है, क्या सभी को ऐसा घबराहट होती है, ताकि मैं आपसे बात करके आत्मविश्वास को बढ़ा सकूँ? नहीं, आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि FM रेनबो आपका दोस्त है और आप अगर फ़ोन मिलाते हैं तो बिल्कुल आप कायदे से पूरे पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करिए और अपनी बात कहिए, या फिर जो आपको बात करनी है, संदेश देना, वो आप ज़रूर कहिए। कॉन्फिडेंस से पहली बार आप बात करिए, अगर आप ऑन एयर आपकी बात सब लोग सुनेंगे ना तो आपको लगेगा अरे मैंने इतनी अच्छी बात कही, सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो आप जरूर अगली बार फोन लगाइएगा, आपका फोन कनेक्ट होता है तो जरूर आप बात करिएगा नागेश जी, और बड़े आत्मविश्वास के साथ बात करिएगा।

0: और 11:54 मिनट हो गए हैं, यानी कि हमारे चलने का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। और आप चलते चलते आपको एक कार्यक्रम संबंधित सूचना दे देते हैं। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कल के कार्यक्रम से संबंधित बात आप तक पहुंचाने जा रही है, यानी कि 2 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। दोपहर 12 से 1 बजे के बीच प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस में आप जुड़ सकते हैं और हमारे साथ होगी नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर साक्षी, इनके से बात आप कर सकते हैं और डायबिटीज और किडनी से जुड़ी समस्याओं के बारे में विशेष चर्चा होगी, जिसमें अगर आप फोन करना चाहें तो फोन कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। तो ये तो हुई बात कल के प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: बहुत ही प्यारे से सॉन्ग को हमने प्ले कर दिया है और वो आप सुनेंगे, उसके साथ आनंद उठाइए। उसके बाद 11:55 हो गए, ये हमने आपको बताया था। तो आपकी होस्ट हैं दोस्त रत्ना शुक्ला, आपसे कहती है कि अपना ख्याल रखिए, प्यारे प्यारे संदेश आपके सबके शामिल करें, फोन कॉल भी रिसीव करें। और अब हमारे यहां से चलने का वक्त आ गया, इजाजत दीजिए, क्योंकि शालिनी अगले कुछ घंटे आपके साथ रहेंगी 100.7 FM रेनबो पर। सुनते रहिए और मौसम के साथ इसी चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, इंजॉय करते रहिए, स्टे ट्यून्ड।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई। इस अवधि के दौरान इस योजना के लिए कुल 3,15,000 करोड़ रूपये का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रूपये के संयुक्त बजट के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की बढ़ी हुई सहायता को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने 5,070 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्हें नमन करते हुए कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का अमर मंत्र देकर राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा देने वाले भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायक और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जीवन राष्ट्रीय भक्ति का आदर्श है और उन

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टोल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: सुनिए
4: कहिए कहिए,
3: सुनिए सुनिए
4: कहिए कहिए ना,
3: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
5: मैं हूँ गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

हम सभी लोग एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते थे। भाई ये आदत बड़ी अच्छी लगती थी, ऐसा तो हमारी दादी भी करती थी। अगर किसी भी चीज के लिए हम भाई बहनों ने लड़ाई झगड़ा किया, वो चीज हमारे घर से ही गायब हो जाती थी, यानी कि हटा दी जाती थी। तो आप सोचिए क्या होता था, हम भाई बहनों ने धीरे धीरे करके किसी भी चीज, चाहे वो खिलौना हो चाहे वो खाने पीने की हो, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिया। वो इसलिए भैया अगर लड़ाई झगड़ा करे तो हम में से किसी को नहीं मिलेगी और ये चीज पूरी हो जाएगी। तो ये बातों बातों में ही दादी नानी की सीख थी कि भाई देखो, अगर आप ऐसे आपस में लड़ोगे तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है ना, कितनी बड़ी सीख। तो इस तरह की सीख और लोगों को भी मिली हो तो वह हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए 2238852 2238845 मिलाना है और ईमेल हमें आपको करना है FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पे।

12:16 और 40 सेकंड का वक्त हो चला है और देखिए हमारे पास में एक ईमेल आ चुका है। ईमेल है पूनम वर्मा का, इन्होंने हमें इंदिरा नगर से मेल लिखकर भेजा है और इन्होंने लिखा है, थैंक यू शालिनी मैडम, जो आज आपने चुना वो बहुत अच्छा, और मुझे अपनी दादी की एक बात याद आती है, हम भाई बहनों में जब किसी बात को लेकर यानी कि खाने की चीज को लेकर लड़ाई झगड़ा होता था तो पता है उसको मिल बांट के खाने के लिए नहीं कहती थी, उसको हमसे लेके पड़ोस वाले बच्चों को बांट देती थी। और

0: भाई इतनी देर केवल एक म्यूजिक ही सुनाई दे, ऐसी हमारी कोई भी मंशा नहीं थी, क्योंकि कोई फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ चुका है, तो सुन लेते हैं इनका क्या है कहना। हेलो
1: जी सर।
0: हाँ जी, नाम बताएं अपना।
1: मेरा नाम है मिथिलेश कुमार।
0: हाँ मिथिलेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं जो है डिस्ट्रिक्ट इटावा यूपी से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: अरे वाह, तो चलिए फटाफट बता डालिए अपनी दादी नानी की पोटली से वो बातें जो बातों बातों में आपको सीख दे गई।
1: जी जो है मतलब दादी नानी तो बहुत अच्छी शिक्षा दिया करती थी।
0: हाँ जी।
1: ये कहा करती थी कि जो है पहले तो सर मैं आपसे ये जो है मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले मेरी तरफ से आपको और हमारे शाली दीदी को और अंजलि दीदी वगैरह सभी को एफएम रेंगो की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन और बधाई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। और अब दादी की बात बता डालिए।
1: दादी की बात यह है, ये शिक्षा दिया करती थी कि बेटा आपस में लड़ने की कोशिश न करना और बड़े मिलजुल के कार्य करो और सोच समझ के हर कदम सोच समझ के उठाए।
0: तो हम ऐसा करने लगे थे फिर।
1: जी जी जी
0: चलिए बहुत अच्छा। और आप इस तरह की बातें आप अपने बच्चों को सिखा रहे होंगे।
1: जी जी सर, मैं शाली दीदी, मैं ब्लाइंड हूँ, मैंने ब्रह्मचारी का पालन किया है।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: और जो है ब्लाइंड होते हुए मैंने संस्कृत से एमए किया है, एमए बीएड संस्कृत से किया है।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो बच्चे तो बच्चे होते हैं, आपके नहीं आपके आसपास बहुत सारे बच्चे होंगे, उनको अच्छी बातें सिखाइए, अच्छी सीख दीजिए, ताकि वो भी एक दिन इसी तरह से अपनी बातें बता पाए कि एक हमारे बाबा थे, एक हमारे नाना थे, एक हमारे दादा थे, उन्होंने हमें ये सिखाया था और आज उनकी सीख से हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और देखिए रीना कुमारी जी का मेल आ चुका है, इन्होंने लिखा है कि मैम आपको पता है जब बात आपने अभी बताई, जब जब लड़ाई करते थे हम दोनों, तो लोग फिर सामान ले लेते थे और हमारी दादी और मामा लोग किसी और हमारे घर में नहीं रहते थे, और फिर वहां के लोगों से ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। अच्छा आपने कहीं पर ना फुल स्टॉप लगाया, ना कॉमा का इस्तेमाल किया है और पता ही नहीं चल रहा है कौन सा सेंटेंस कहाँ गया है। कोई बात नहीं रीना कुमारी जी, हम ये जो बातें हैं ना दादी नानी की, वो सब जगह की कुछ कॉमन ही बातें हैं, क्योंकि पता नहीं कैसे इनको पता होता था कि ऐसे बच्चे नहीं सुधरेंगे, हमको इनको उंगली टेढ़ी करके सुधारना पड़ेगा, और उनकी बातों में हमें मजा भी बहुत आता है ना। तो चलिए और लोगों की भी जो बातें हूँ वो भी बता डालें और सुनते रहे 100.7 FM रेनबो शालिनी के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: मैं समय हूँ और मैं हरीश बिमानी हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

दोस्तों, रात गई और बात गई, ये जो वर्ड है ना, ये हर एक दादी नानी के मुंह पर रहता था, है ना। क्योंकि हम लोग ऐसी लड़ाई झगड़ा ही करते थे कि एक दूसरे से मुंह फुला के बैठ जाते थे, तो अक्सर बस इन दो चार शब्दों में ही हमें न जाने कितनी बातें समझा दी जाती थी ना, कि अब छोड़ो भी, रात गई बात गई, पुरानी गलतियां हैं या झगड़े हैं उनको पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, अब सुबह हो गई है, एक नई सुबह की शुरुआत करनी चाहिए। और ये जो छोटी छोटी हमारी बचपन की लड़ाई झगड़े थे ना, जब आज इस बात को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत गहराई तक चले जाते हैं कि रात गई और बात गई। चाहे वो हमारी लाइफ के संघर्षों की बात की जाए, या हमारे लाइफ में अभी के बड़े लोगों के बीच के मन मुटाव की बात की जाए, या आज के समय में पति पत्नी के लड़ाई झगड़ों की बात की जाए, जब ये चार शब्द उनके लाइफ में आ जाएंगे ना, तो उनकी जिंदगी की हर सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। कौन सी? रात गई बात गई, है ना।

12:40 और 20 सेकंड का वक्त हो चला है दोस्तों, और आज इस प्रोग्राम में हम फन की बात कर रहे हैं, और वो भी फैमिली के साथ। अपनी पुरानी बातें, जो बातों बातों में हमें उम्र भर की सीख दे गई, उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन कल इसी प्रोग्राम में हेल्थ एंड फिटनेस की बात की जाएगी। जी हाँ, कल है 2 अगस्त, यानी कि दिन रविवार, और रविवार को 12 से 1 के बीच में प्रोग्राम होता है हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें इस बार डायबिटीज और किडनी इन्वॉल्वमेंट, यानी कि डायबिटीज और किडनी पर, जो हमारा गुर्दा होता है जिसे कहते हैं, उस पर विशेष चर्चा के लिए डॉक्टर साक्षी आ रही हैं, लखनऊ की नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट जो कि किडनी रोग विशेषज्ञ भी कह सकते हैं, गुर्दे का विशेष डॉक्टर भी कह सकते हैं। तो इससे संबंधित अगर आपके पास तमाम सारे प्रश्न हैं, वो आज से नोट डाउन करना शुरू कर दें, और कल इसी टाइम 12 से 1 के बीच आप हमें 0522-2238-845 पर या 2238-852 पर कॉल करके पूछ लीजिएगा। और नहीं तो आपको क्या करना है, आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी यही, जहां आपको हम दिन भर में ना जाने कितने बार बताते हैं, fmakashwani@gmail.com, और अपनी समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: अगर आपको है FM से बेपनाह मोहब्बत
4: तो लिख भेजिए हमें 26 बरस के FM के लिए 26 शब्दों की मोहब्बत भरी कविता या कहानी।
3: मोहब्बत का नियम निभाएंगे,
5: एक लिसनर से केवल एक ही एंट्री मंगाएंगे।
3: और हाँ, आखिरी तारीख है 5 अगस्त 2026। 3 टॉप विनर्स बनेंगे हमारे सबसे खास मेहमान 20 अगस्त की शाम।
4: पता है ना, fmsesh26@gmail.com।
3: और सुनते तो रहेंगे आप हमें 100.7 FM रेनबो पर।
6: फॉर मोर डिटेल्स फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया।
7: सात रंग का इंद्रधनुष है,
8: सात सुरों की सरगम है,
9: सात जन्म है सात समंदर,
7: सात हमारा हरदम है,
9: जिंदगी के सतरंगी रंग
8: FM रेनबो के संग।

बजकर अड़तालीस नहीं नहीं 12:48 भाई अभी तो समय गलत हो जाता, फिर सब लोग कहते भैया शालिनी ने ही समय को आगे बढ़ा दिया, किसी की मजाल जो समय को आगे बढ़ा सके। लेकिन हाँ, समय जरूर सबको आगे बढ़ाता है अगर आप उसके साथ चले। तो चलिए फोन लाइन पर हमारे साथ कोई है। हेलो हेलो, कहाँ चले गए? हेलो भाई, अभी तो कोई था हमारे साथ लाइन पर, लेकिन शायद उनका भी फोन कट हो चुका है। लेकिन आपको हम बता दें कि हमारे साथ मोहनलाल जी थे। जी हाँ, और ये कहाँ से थे, हमने फटाक से इनका नाम हम सब कुछ नोट कर लिया था। ये मोहनलाल वर्मा लखीमपुर से हमसे बात कर रहे थे और हमसे पूछ रहे थे कि मैडम कौन सी एक बात बतानी है या सारी बता दें। तो हमने कहा भैया एक नहीं सारी बताइए। तो बोले अगर सारी बताने लग गए ना मैडम तो समय कम पड़ जाएगा। तो शायद इन्होंने समय की बचत की और हमारा ख्याल रखा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि भाई दादी नानी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है जो पहले के लोग हैं। क्योंकि पहले के जो परिवार होता था ना वो साथ में सभी रहते थे, संयुक्त परिवार हुआ करता था। और अब इतना बिजी शेड्यूल हो गया है, लोग अपने घर से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं और उनके बच्चे भी अकेले में बड़े होकर पल रहे हैं। चीजें हैं अच्छी हो रही हैं अभी भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुराने समय की चीजें थी वो आज नहीं मिल पा रही हैं। हमारी इस बात पर गौर करिएगा। तब तक साथ ही साथ ये गाना भी सुनिए और एंजॉय कीजिए।

12:54 और 32 सेकंड का वक्त हो चला है दोस्तों, और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी अब इस प्रोग्राम को करना होगा यहीं पर वाइंड अप, और क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम ओटो पे तेरी बात में होगी आपसे ही बात, लेकिन उस पे आप क्या हमसे करेंगे बात। बस आपको ये बताना है कि जब आप ज्यादा परेशान होते हैं, तनाव में होते हैं, उस बीच आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखते हैं, कैसे सकारात्मक बनाते हैं, क्या खास है आप में बात, तो बस ये बता डालिए हमें यहीं पर। कहाँ पर? जहां अभी हम बात कर रहे थे, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पे। और अब चलते चलते अपनी दादी नानी की एक और बात कहनी है। अक्सर कहा करती थी, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा आप करोगे, जैसा बीज बोगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसा व्यवहार आप किसी और से करोगे वैसा ही व्यवहार आपको मिलेगा, जैसा आप एग्जाम में लिख के आओगे वैसे ही नंबर आपको मिलेंगे। जो ये चार शब्द है ना, वो न जाने कहां कहां पर फिर बैठते हैं और आज तक बैठते चले आ रहे हैं, और हम भी यही वर्ड्स का यूज करते हैं लोगों को बताने के लिए कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो एंजॉय कीजिए FM रेनबो, सुनते रहिए शालिनी के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम ओठों पे तेरी बात में, हम ही रहेंगे आपके साथ।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है आपके पत्रों पर आधारित आपका अपना कार्यक्रम अनुरोध गीत। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम अनुरोध गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, आपके बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर पत्र हम तक पहुंच चुके हैं और आपकी पसंद का गीत अब हम सुनवाएंगे। सबसे पहला गीत हमने लिया है फिल्म जैसे को तैसा से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत निर्देशन RD बर्मन का। और इस गीत को सुनने का अनुरोध किया है हमारे आप सभी श्रोताओं ने। आप हैं राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना, मनोरमा देवी, अजय खेमकरन और लक्ष्मी देवी, छावनी अशरफ खां, पानी की टंकी के पास, होली चौक, बरेली से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बरेली जंक्शन से गरीब भाई, नासिर भाई और विक्की भारद्वाज। परी महल कासगंज से आवाद खान, अल्ताफ खान, नबील, असलम सैफी, AE खान। गंज डंडवारा से शमसुल कमर और शाहीन कमर। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। आप हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन, परवीन, मोहम्मद रेहान और माहिरा नूर। और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा। आप सभी को सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर फिल्म जैसे को तैसा से ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी के अनुरोध पर, आप हैं मोहल्ला तलैया और लजागीर से फजुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई और गैगटा काशी धर्मपुर बरेली से फहीम खान सिद्दीक अली साबिया, दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया। और ये पत्र हम तक पहुंचा नया रोड टावर वाली गली से। ये हमारे श्रोता हैं जाबिर सहरबानो, जाहिद जमीर और अफसर खां। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य। आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग और मीका बिरक। और ये पत्र हम तक आया है, बहुत सुंदर सा इस पे चित्रकारी की गई है। गंज डंडवारा से मुनव्वर अल्ला भाई, मिर्जा नसरीन बेगम, अरवाज खान, सहबाज खान, सूफिया महबूबा, पप्पू भाई, अफसाना बेगम, महजवी शेख। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म संघर्ष का ये गीत, जिसको अपनी आवाजें दी हैं सोनू निगम और श्रद्धा पंडित ने। गीत के बोल समीर के, संगीत निर्देशन जतिन ललित का।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं अपने पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। आप हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरोला नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शुएब खान, साइमा खान, मुस्तफा, आफिया, राउफ भाई और शहीद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। और पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शकीर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर, जयतेग और मीका बिरक। आप हैं छत्तीसगढ़ रिंगनी से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सभी ने सुनने का अनुरोध किया है फिल्म आया सावन झूमके का ये गीत, जिसको अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गोगलानी, सुनीता जैन और सुनीता शर्मा। आप हैं जमशेदपुर झारखंड गांव सुपाही साही से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेंद्र जी। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार। आप हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राय मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश तानी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म लोफर का ये गीत, जिसको अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के लिए। ये हमारे श्रोता हैं सहर खान, जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी, दौलतबाग मुरादाबाद से, सेक्टर नंबर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीय, राधिका गजबीय, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबीय। आप हैं छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश राशि और शीतल राजेश। पंचकुला सेक्टर नंबर 9 से आशु चोग, अश्विनी चोग, गोविंद, टोनी दीवान और लव दीवान। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सौतन का ये गीत जिसको गाया है किशोर कुमार ने, गीत के बोल सावन कुमार के और संगीत निर्देशन उषा खन्ना का।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, अरमानाज अंसारी और सोनम, सारिमपुर बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और मोहम्मद समी अंसारी, इंदिरा बिहार दिल्ली से डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी, छड़िया पोखरा डुमराव से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती, छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका बेबी अनुष्का और तन्मय गजबिये, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया, आप हैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया, सेक्टर नंबर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक अनिल जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमरदीप कालका से शुभचंद्र बिट्टा और साहिल, आप सभी को सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर फिल्म जुर्माना का ये गीत जिसको गाया है लता मंगेशकर ने, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत निर्देशन राहुल देव बर्मन का।

कार्यक्रम अनुरोध गीत में अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू साजदारानी और चांदनी रानी। आप हैं धमतरी से रामचंद्र माखीजा काफिर, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा और छुटकी शरद। ये पत्र हम तक पहुंचा छत्तीसगढ़ भुरसुदा से भगवानी संतोषी सेन, चंद्रप्रकाश, नेहा सेन, गजेंद्र और चिराग सेन का। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, थानाक्ष और आरू साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म प्यासा सावन का ये गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में। गीत के बोल संतोष आनंद के, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और इस गीत को सुनने का अनुरोध किया है आप सभी श्रोताओं ने। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। आप हैं परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा, आरफरीन, जमीर खान, यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता, मुस्कान मालाकार और जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार, गंज डुंडवारा से मोहम्मद फारूक शेख, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, शमा परवीन, अलकमर, अफसाना, पप्पू, मिर्जा नसरीन और अरहान शेख, ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा और आयुषी कृत वर्मा। आप सभी को सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का ये गीत।

श्रोता, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 एफएम और सुन रहे हैं अनुरोध गीत कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, गीत के बोल वर्मा मलिक के और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। आप सभी के बहुत सारे सुंदर सुंदर पत्र हम तक पहुंचे हुए हैं, रंग बिरंगे चमकीले सितारे लगे हुए। तो अगला पत्र हमारे पास पहुंचा है रामपुरा के सनान मजरा से मरिया तहसील मीरगंज बरेली यूपी से राम कुमार वर्मा, भगवान दास वर्मा, रविंद्र वर्मा, तेज प्रकाश, सोमपाल, शशि कुमार, नत्थूलाल और ननकी सिंह वर्मा। साथ में हैं एचएल वर्मा, विवेक और हिमांशी वर्मा। निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज बरेली से हमारे नियमित श्रोता कल्लू भाई मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, दानिश और यशपाल दिवाकर। आप हैं मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके मम्मी पापा। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी, रंजू, अशोकपुरी, सुशील, नीलम, बीकेपुरी, कैलाश, रामा और आरएसपुरी। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। आप हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं दत्तागंज से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सूरजश्री यादव। साथ में हैं प्रीति यादव। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय। दुविहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश, प्रीति और नवनीत राय। ये पत्र पहुंचा ककराला बदायूं से मसरूर खान, सरफराज खान, बबलू, विकास सक्सेना, करमवीर गोस्वामी, प्रवीण रावत, अनिल नागर, सागर बख्शी, अमजद शमसी और दीपक वाल्मीक का। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म चुपके चुपके का ये गीत, जिसको गाया है लता मंगेशकर ने। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत निर्देशन SD बर्मन का।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम अनुरोध गीत यहीं संपन्न होता है। हमें दीजिए कार्यक्रम से अनुमति और कार्यक्रम अगले कार्यक्रम आप सुनेंगे परवेज भाई के साथ।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत शीशपाल के साथ 100.4 FM पर ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। और श्रोताओं, अब समय हुआ है कार्यक्रम जनमंच का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जनमंच।
1: जनमंच कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को, सभी श्रोताओं को नमस्कार। साथियों, आज का हमारा विषय है सरकार द्वारा किसानों को मिलने वाली सुविधाएं, और आज हमारे साथ हैं ग्रामीण और किसान। आइए जानते हैं उनका परिचय उन्हीं से। आपका क्या नाम है और आप कौन से गांव से आए हो?
2: मेरा नाम गंगा शरण।
1: कौन से गांव से आए हो?
2: ग्राम नौमवीरांच।
1: तहसील कहाँ लगती है आपकी?
2: तहसील नवाबगंज।
1: और जिला?
2: बरेली।
1: आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो?
3: मेरा नाम राधेश्याम है, ग्राम नौमवीरांच से आया हूँ।
1: तहसील?
3: तहसील नवाबगंज।
1: और जिला?
3: जिला बरेली।
1: आपका क्या नाम है?
4: मेरा नाम कमलेश है, मैं ग्राम नौगमा बीरान से आया हूँ, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और तीनों भाई हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हुए हैं जनमंच में। विषय हमने पहले ही बताया था कि हमारा विषय जो है सरकार द्वारा किसानों को मिलने वाली सुविधाएं। तो सबसे पहले हम पूछते हैं गंगा शरण जी। गंगा शरण जी, आपकी उम्र क्या होगी?
2: 35 साल।
1: खेतीबाड़ी कब से कर रहे हो?
2: पिताजी के साथ बचपन से ही कर रहे हैं।
1: बचपन से कर रहे हैं। कौन कौन सी खेती करते हो?
2: धान, गेहूं, गन्ना।
1: और कमलेश भाई, आप कब से खेती कर रहे हो?
4: सर, मुझे भी हो गए 4-5 साल हो गए मुझे
1: खेती करते हुए। कौन कौन सी फसलें होती हैं?
4: गन्ना, धान, गेहूं।
1: अच्छा, और राधे श्याम जी, आप कब से खेती कर रहे हो?
3: खेती तो 15-20 साल हो गई करते।
1: 15-20 साल हो गई, तो 15-20 साल से खेती कर रहे हो। गेहूं, धान, गन्ना की खेती करते हो?
3: जी, धान, गेहूं, धान, गन्ना की खेती है।
1: तो अब इस समय कौन सी फसल है आपके खेतन में?
3: धान भी है, गन्ना है।
1: धान है, तो धान कौन लगाए?
3: धान ये अषाढ़ में लगे हैं।
1: अषाढ़ में लगाए हैं, कितने दिन हो गए होंगे?
3: हो गए होंगे लगभग 10-12 दिन हो गए। लगभग
1: 10-12 दिन हो गए। तो इस समय जैसे धानन के में का काम करेंगे किसान भैया?
3: धानन ये खाद लग रही, खाद पानी लग रही है, बारिश नहीं हो रही।
1: बारिश ना भई है तुम्हारे तक?
3: बारिश कहाँ लग रही है, बहुत कम बारिश है, पानी लग रहे हैं खेतों में।
1: अच्छा, तो मतलब जाहे की सिंचाई करने है और दवाई लगाने है। तो जब बताओ कि कौन सी योजना को लाभ उठा रहे हो, सरकार की कौन सी योजना मिल रही है?
3: जी, किसान निधि योजना भी मिलती है हमें,
1: और
3: गल्ला मिल लिया है।
1: गल्ला मिल लो, तो जो गल्ला मिल लो वो कितो मिल लो है?
3: गल्ला तो 21 किलो मिल लिया है हमें।
1: अच्छा, का हिसाब से मिलते है? यूनिट के हिसाब से?
3: हाँ, यूनिट के हिसाब से।
1: तो कितने जने हैं घर में?
3: 5 लोग हैं।
1: 5 लोग हैं तो 21 किलो मिल लो है। चलो, तो जैसे का फायदा हो, गल्ला मिलने से का फायदा महसूस कर रहे हो?
3: गल्ला मिलने से महसूस क्या, ये है फायदा है कि मान लियो गल्ला अगर घर पे ना है फिर वो मान लियो कुछ ना कुछ काम आई है यहाँ तक।
1: तो मतलब सरकार फायदा तो पहुँचा ही रही है,
3: फायदा दे रही है।
1: और गांव में विकास उकास कैसे हुए? सरकार सड़क वड़क ठीक है गाँव की?
3: हाँ, सड़कें सब सही है, कुल मिला
1: सब अच्छी।

0: तो एक तो गल्ला मिल रहा हुआ और किसान सम्मान निधि को फायदा मिल रहा हुआ।
1: हाँ जी
0: हाँ, अब गंगा सरन जी आपसे हम पूछेंगे कि आप कौन सी योजना को फायदा मिल रहा हुआ?
2: सरकारी योजना बहुत सी है, फायदा मिल रहा हुआ।
0: कौन कौन सी?
2: अरे मनरेगा आए जिससे हम लोगों को काम रोजगार मिल रहा हुआ,
0: हाँ, और
2: घर में किसान निधि मिल रही है।
0: अच्छा, तो मनरेगा में का काम करने पड़ते हैं, और कैसे रोजगार, कितने दिन को रोजगार मिल रहा हो, कितने दिन की रोजगार मिल जाता?
2: 1 साल में 100 दिन को है,
0: 100 दिन को है, तो 100 दिन को मिल जाता है।
2: मिल हो जाता, 22 साल में नहीं मिल पाता है।
0: अच्छा, तो कितने रुपया मिलता है एक दिन के?
2: 262
0: 262 रुपया मिलते हैं, तो जैसे का फायदा महसूस करते हो आप?
2: फायदा का, रोजगार बेरोजगार है तो रोजगार मिल जाता है।
0: अच्छा, पढ़ाई लिखाई करी?
2: करी
0: कहाँ तक पढ़े?
2: हाई स्कूल।
0: हाई स्कूल करो, तो जा है कि जो मनरेगा है वाके माध्यम से आपको रोजगार मिल जाता
2: रोजगार
0: है।
2: मिल जाता है
0: तो गांव में कौन कौन से काम कराते हैं मनरेगा के माध्यम से?
2: गांव में। मनरेगा के माध्यम से सड़क डलवा रहे हैं, खेत में रोड पड़ रहे हैं उनमें लगाते हैं, मनरेगा नाले बन रहे हैं लेबर लगाते हैं।
0: अच्छा, तो कितने घंटा काम करने पड़ते हैं?
2: ड्यूटी तो वैसे 8 घंटा की है,
0: हाँ
2: सुबह में 4 घंटा दोपहर 4 घंटा।
0: हाँ तो जामे तो गांव वाले काफी लोग काम करते होंगे एक साथ?
2: काफी लोग जाते हैं गांव में जितने हुए
0: अच्छा, तो मतलब जो अच्छी बात है कि आपको जाके माध्यम से शहर में ना काम ढूंढने जाने पड़ रहे हो,
2: ना
0: गांव में ही
2: गांव
0: काम
2: में
0: है।
2: मिल जाते।
0: तो आपके गांव में लगभग कितने लोग मनरेगा में काम करते होंगे?
2: हमारे गांव में ग्राम पंचायत बड़ी बरखन में लगी हुई, गांव हमारा छोटो सो है, लगभग 100 लोग होंगे हमारे गांव में।
0: मतलब 100 लोगों को गांव में ही
2: हाँ
0: रोजगार मिला हुआ
2: रोजगार
0: है,
2: मिल रहा।
0: बहुत अच्छी बात है। और देखो ये बात अच्छी है कि आप मान लो बरेली में आप होगे, नवाबगंज जाओगे काम करने, बात अच्छी है कि गांव में ही आपको काम मिल जाएगा और गांव के आसपास काम कर रहे हैं तो और अच्छी फायदा है। और आपने बताई घर में आपके किसान सम्मान निधि जो योजना है बाकू फायदा मिल रहा
2: हाँ
0: हुआ
2: बाको
0: है,
2: फायदा मिल रहा
0: तो
2: हुआ,
0: बात का फायदा बहु एक किसान के रूप में बताओ।
2: बस है फायदा का है। 3 महीना में पैसा जो मिल रहा है बस है, कुछ खर्चा पानी चल जाता है और का फायदा है जी। फायदा है
0: मतलब किस तरह के, जैसे खेती में कोई
1: खेती
0: वो कर
2: पर
0: ले?
2: कोई बात,
0: हाँ
2: 6 माह ही पाए अगर मिल रहा हो तो खेती में लगा सकते हैं, वैसे जरूरत पूरी कर सकते हैं जब मिल जाता है।
0: हाँ क्योंकि अब जा है कि जब बहुत बड़ी एक सुविधा हुई गई है, मान लो दवाई की जरूरत है खेत में,
2: हाँ
0: सिंचाई की जरूरत है या खाद लगानी है, तो अपने बामे ये
2: बामा से
0: प्रयोग
2: प्रयोग हो जाता है।
0: तो कैसो महसूस कर, तो का कहना चाह रहे हो आज रेडियो के माध्यम से, कैसी योजना है जा?
2: ये बढ़िया योजना है, कोई लाभ मिल रहा है, बढ़िया योजना है, कुछ फायदा हमारा हो रहा
0: फायदा हीरो, बहुत अच्छी बात है। गंगा सरन जी आपकी बात हमें अच्छी लगी कि जब हमारा फायदा हीरो तो हमारे लिए
2: है,
0: बहुत
2: बहुत
0: बढ़िया ही
2: बढ़िया
0: है।
2: है।
0: अब हम बात करते हैं कमलेश भाई से। कमलेश भाई, इस समय आपके खेतन में कौन सी फसल है?
3: सर अभी धान भी है, गन्ना भी है
0: अच्छा,
3: जी।
0: तो गन्ना में इस समय किसान भैया क्या काम कर सकते
3: सर
0: हैं?
3: गन्ने में भी फोड़ी की स्प्रे है और ये कनिया भी लग रही है, इसके भी स्प्रे अभी हो रही है, खाद भी पड़ रही है
0: अच्छा,
3: जी।
0: गन्ना लगभग कितो कितो बड़ो हुई वो?
3: सर गन्ना तो भी काफी बड़ा हो गया है अभी
0: अच्छा।
3: जी।
0: अब बात करें सरकार द्वारा कौन सी योजना को फायदा उठा रहे हो?
3: सरकार द्वारा सर अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उसका वजीफा भी मुझे मिल गया है
0: अच्छा,
3: जी, राशन भी मिल गया है
0: हाँ,
3: जी।
0: तो जो वजीफा मिल गया है उससे क्या फायदा हुआ है, क्या महसूस करते हैं आप?
3: सर जो वजीफा मुझे मिल गया है मैं उसी पढ़ाई में ही लगा देता हूँ
0: हाँ
3: जी, और वैसे भी बहुत लाभ है, वो मिल गया कुछ काम में आ जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है।
3: सर
0: तो वजीफा मिलता है तो कितना वजीफा मिल जाता है?
3: वजीफा 2,025 से 3,000 तक मिल जाता है
0: अच्छा,
3: जी।
0: और फीस कितनी जाती है?
3: सर फीस प्राइवेट में तो सर ज्यादा जाती है,
0: हाँ
3: 7-8 हज़ार रुपये चले जाते हैं
0: अच्छा,
3: जी
0: लेकिन ये है कि फिर भी सरकार कुछ
3: जी
0: पैसा तो वजीफा के रूप में दे दे रही है वापस।
3: जी
0: तो जो और भी बच्चे आपके संग पढ़ते हैं या आपके गांव में भी बहुत लोग पढ़ते हैं, तो वो लोग क्या महसूस करते हैं वजीफा मिलने से?
3: सर वजीफा मिलने से वो यही महसूस करते हैं कि जरूरत उनकी पूरी हो जाती है
0: हाँ, कापी खरीदनी है,
3: जी।
0: किताब खरीदनी है, गैस पेपर खरीदना है, तो जो भी पढ़ाई में जो भी वस्तु उन्हें चाहिए
3: जी
0: वो खरीद लेते हैं और स्वतंत्र रहते हैं। कुछ पैसे अब छात्र जीवन में ज्यादा पैसे तो होते नहीं है, और कुछ पैसे अपने व्यक्तिगत रूप से भी प्रयोग कर लेते हैं, बचा कर रख लेते हैं, बचत
3: जी
0: भी कर लेते हैं। अब राधे श्याम जी आपसे बात करेंगे हम कि आपको राशन मिल रहा है, तो राशन में क्या क्या चीज मिलती है दुकान से?
1: राशन में गेहूं मिलते हैं, चावल मिलते हैं और नमक भी है।
0: नमक भी मिल जाता है
1: हाँ
0: और जो बाजरा भी मिलता होगा?
1: बाजरा कभी कभी मिलता है, वैसे हमेशा नहीं मिलता।
0: हमेशा नहीं मिलता है। तो चावल और जो गेहूं मिलते हैं कैसे होते हैं जी?
1: ये सही है, चावल वैसे बढ़िया आ रहे हैं, चावल तो कोटा
0: अब
1: पर।
0: राशन पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा बढ़ रहा है।
1: हाँ सही है।
0: पहले मतलब लोग कहते

0: थे कि सरकारी राशन है सरकारी राशन है, लेकिन आज कैसा है आप बताइए, आप तो स्वयं ले रहे हैं राशन।
1: ना सही है, राशन बढ़िया आता है।
0: बढ़िया आता है। तो अब जो बताओ कि कैसे अपने काम करते हो दिन भर के, खेती बाड़ी के, और कैसे काम चलता है, सुबह से उठ के क्या क्या काम करते हो?
1: सुबह से उठ के कहा खेती बाड़ी, मान लो उसे निराई है, अब धान लगे हुए हैं उसकी निराई भी करना है, दिन भर निराई में लग जाते हैं। गन्ना उसकी अब लो तो खुदाई होती थी, अब तो कनिया है, स्प्रे करना है, पानी
0: अच्छा
1: है, सिंचाई करनी पड़ती।
0: अच्छा जी, कनिया है आपके, ये कनिया मतलब कौन सी बीमारी है, क्या इससे गन्ने को क्या नुकसान होता है?
1: गन्ना बर्बाद रुक जाती है, इससे कनिया लग जाती है, तो
0: तो इसमें कौन सी स्प्रे करनी पड़ती है फिर?
1: कीटनाशक डालनी होती है।
0: अच्छा, कहाँ से लाते हो कीटनाशक,
1: दुकान से लेते हैं,
0: कैसे डालते हो फिर?
1: स्प्रे होती है इसकी,
0: तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं, कैसे करते हो स्प्रे, पूरी प्रक्रिया बताओ।
1: स्प्रे करनी पड़ती है उसकी। तो वही मान लो टंकी है, उसे अपने मान लो करते हैं,
0: मतलब कैसे सावधानी क्या रखते हो जब स्प्रे करते हो?
1: सावधानी क्या, उससे दवाई से बचाव कर लेते हैं। मान लो स्प्रे मुंह से कपड़ा बांध लेते हैं, और कपड़ा
0: और
1: सब मान लो शरीर अपना ढका रहता
0: ढका रहता है, दस्ताने
1: है।
0: पहन लेते होगे, जब पानी दवाई मिलाते होगे तो सावधानी रखते हो कि बच्चे ना छू लें उसे, कोई जानवर के हाथ सीसी ना लग जाए, कोई जानवर उसे ना चाट ले, दवाई की जो सीसी है जहर होता है ना उसमें,
1: हाँ,
0: तो जी
1: जहर तो है
0: सावधानी
1: ही
0: नहीं रखते हो?
1: ना, सावधानी तो रखनी पड़ती है, जहर है,
0: तो
1: जहर
0: वही
1: की।
0: वही बात है कि भाई स्प्रे करते समय अगर ये सावधानियां रखेंगे किसान भाई तो उनको फायदा होगा। अब गंगा सरन जी आप बताइए, तो जो आप कब से काम कर रहे हो मनरेगा में?
2: मनरेगा में जो योजना चली, जब से कार्ड बनो जब से कर रहे हैं।
0: जब से कर रहे हो, मतलब कई साल हो गए हो,
2: हाँ, लगभग हो गए 7-8 साल है।
0: 7-8 साल से काम कर रहे हो, तो कैसा महसूस करते हो?
2: मनरेगा काम सर यह है, हर समय को नहीं है।
0: हाँ,
2: गांव में कोई सड़क विकास करने आए तो वो पास हो गई, उस पर एक महीना में 4 दिन काम मिल गो, 8 दिन मिल गो। जे ये टाइम घर पर खाली घूम रहे हैं तो उसमें टाइम निकाल कर आए।
0: बिल्कुल, मतलब ये है कि अब अनावश्यक इधर उधर बैठोगे, उससे अच्छा है
2: हाँ,
0: काम करके
2: काम
0: आए
2: कर आए
0: और गांव के गांव में काम मिल गो।
2: बस।
0: बहुत ज्यादा मेहनत को काम होती ना है, मान लो अपने 10-20 लोग साथ में काम करते हैं तो
2: हाँ
0: अपने जो है काम भी हल्को भाई हिसाब से, मजदूरी भी मिल जाती है। तो आपको राशन मिल रहा है,
2: हाँ राशन मिल लो सर,
0: कितनों राशन मिलते हैं?
2: राशन 1 मिनट पर 5 किलो मिलते, फिलहाल में 4.5 किलो देते कोटेदार हैं।
0: अच्छा, कोई बात ना है। तो अब कितने यूनिट है आपके घर में?
2: 4 यूनिट हैं सब,
0: 4 यूनिट है, तो कितने किलो मिल जाते हैं? 15 किलो।
2: 18 किलो,
0: अच्छा, 4×5 20 हुई हो, तो 18 किलो राशन मिल
2: अठारह
0: जाते,
2: किलो मिलता है।
0: तो हर महीना मिल जाते हो
2: हाँ,
0: राशन? तो
2: हर महीना मिलता है।
0: अच्छा, तो जहाँ से का फायदा महसूस करते हो, जहाँ से कुछ तुम्हारी जो जिंदगी जीवन चल रहा हो वहां में कुछ राहत मिलती
2: राहत
0: है?
2: क्यों ना मिलती है, अरे राशन पे तो सब निर्भर है, बाजार से ना मोल लेने पड़ रहा है, मान लो जो घर की बचत हो रही है गल्ले से। हाँ,
0: ना तो अपने खेत को राशन खाने पड़ते हो या मोल लेके खाने
2: वो
0: पड़ते हो,
2: खेत को खाओ या मोल लेके खाओ, बचत हो रही है, इससे मिलने से
0: बचत हो रही
2: बचत
0: है,
2: हो रही है।
0: तो अच्छो लग रहा हो मतलब कि
2: अच्छो
0: राशन मिलो।
2: हाँ
0: तो आपके गांव में ज्यादातर लोग राशन ले रहे होंगे?
2: हाँ ज्यादातर ले रहे हैं।
0: ले रहे हैं, तो बहुत राशन बढ़ जाते हो आपके गांव में?
2: क्यों ना, सारे गांव ले रहा हो ऐसे समझो।
0: अच्छा, तो कई कई दिन राशन बटने पड़ते हुए खेत गांव में?
2: हाँ, ग्राम पंचायत बड़ी बरखन में 8 दिन बढ़ता है लगभग।
0: अच्छा, तो जैसे राशन लेन जान में मिलन में कोई समस्या तो ना
2: ना
0: आती
2: कोई
0: है?
2: समस्या ना है,
0: अच्छा, अपनो कार्ड लेके जाओ
2: बस अंगूठा लगाओ
0: और
2: ले आओ।
0: राशन ले आओ। पहले से ज्यादा अच्छी सुविधा हो गई
2: हाँ
0: है,
2: अच्छी है, पहले से
0: पहले
2: बहुत अच्छी है
0: पहले से बहुत अच्छी, क्योंकि अब बिना अंगूठा के आपको राशन कोई ले ना पावे, तो जो
2: ना,
0: सरकार ने बड़ी अच्छी योजना चला दी है कि आपको अंगूठा लगाए तई राशन
2: तय
0: मिलेगा।
2: मिला है वो।
0: बिल्कुल कमलेश भैया, तो और बात बताओ कि अब आगे पढ़ाई कर रहे हो, इंटर की पढ़ाई कर रहे हो?
3: नहीं सर, इंटर हो गया मेरा,
0: तो अब आगे क्या कर रहे हो?
3: अब सर आगे पढ़ाई कर रहे हैं,
0: क्या कर रहे हो आगे? बीए?
3: ITI कर रहे हैं फेडरल से,
0: कहाँ कर रहे हो, कहाँ से?
3: जे रेठौरा में एक
0: अच्छा,
3: जी
0: तो क्या सोचा है आगे आगे भविष्य के लिए आपने?
3: सर, आगे यही पहुंचा है, डिप्लोमा मिल जाएगा, अपना खुद काम कर लेंगे।
0: बिल्कुल
3: जी
0: बिल्कुल, तो ITI में सिखाते और पढ़ाते दोनों
3: जी
0: होंगे,
3: जी सिखाते
0: क्या
3: भी
0: क्या
3: पढ़ाते
0: ट्रेड लिया है आपने?
3: जी, फिटर है मुझ पर
0: फिटर है,
3: जी।
0: तो इसमें क्या क्या सिखाते हैं?
3: फेटल में सर ये मैकेनिकल का काम आता है जी, किसी को काट के बनाना है, उसको जोड़ना है, या वैसे कोई काम है
0: बिल्कुल, तो ये भी है कि ये रोजगार सृजन के क्षेत्रों में बड़ी अच्छी योजना है
3: जी
0: कि मतलब आप ITI कर रहे हो, उसके बाद आप कहीं भी अप्लाई भी कर सकते
3: जी
0: हो, टेक्निकल जगह पे, चाहे रेलवे हो
3: जी
0: चाहे दूसरी अन्य चीजें हो, उनमें आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो क्या कहना चाहती हो और छात्रों से, क्योंकि आपने बिल्कुल सही लाइन पकड़ी है, इंटर के बाद

0: टेक्निकल लाइन पकड़ी है, आजकल जो है साधारण पढ़ाई में बहुत कुछ है नहीं, तो जो आपने लाइन पकड़ी है बड़ी अच्छी पकड़ी है। तो क्या कहना चाहती हो आज रेडियो के माध्यम से छात्रों से, अपनी तरह के जैसे छात्र हैं जो गांव में, उनसे क्या कहना चाहती हो?
1: सर मैं भी यही कहना चाहता हूँ, ये बीए बीए से अच्छा है ये आईटीआई ही करें, फेटर से या इलेक्ट्रीशियन से करें, ये अपने काम में आ जाती है
0: बिल्कुल।
1: जी।
0: तो गंगा सरन जी, अब ये बताओ कि जैसे सरकार तो जो योजनाएं दे रही है किसानों को, किसान
1: जी
0: सम्मान निधि है, उज्ज्वला योजना भी तो राधे श्याम जी आपको मिली है,
2: जी
0: उज्ज्वला योजना में क्या मिला आपको?
2: सिलेंडर मिला है जी,
0: और
2: सिलेंडर मिलता है और गैस चूल्हा मिला।
0: इससे क्या फायदा हुआ आपके परिवार में, जीवन यापन में क्या बदलाव आया सिलेंडर मिलने से?
2: इससे साहब ये है कि उस गर्मी से बचाव हो गई और चूल्हा जलाने से बढ़िया रहा जी, और
0: अच्छा,
2: लकड़ी वगैरह ईंधन बचाव हो गई है।
0: हाँ लकड़ी ईंधन से जलाते थे, और जैसे अब बरसात का महीना है, इन
2: हाँ,
0: दिनों में
2: इसमें
0: बड़ी समस्या हो जाती थी
2: समस्या
0: ईंधन
2: होती
0: की,
2: है।
0: और महिलाएं बीमार भी तो हो जाती थी धुएं से, तो इसमें फायदा मिला है नहीं मिला है?
2: हाँ फायदा मिला है
0: तो अब तो गैस पे खाना बनता होगा,
2: जी, गैसे से बनता है
0: तो कितने रुपए का सिलेंडर भरा जाता है?
2: जी, 900 रुपए कुछ लोग हैं, नौ
0: और
2: सौ कुछ
0: सब्सिडी
2: रुपए
0: कितनी आती है?
2: सब्सिडी साहब हमें नहीं पता है, सब्सिडी हम पे हमारे बात ही नहीं है,
0: क्यों, बैंक में आती होगी आपकी किताब में?
2: हमारा नंबर नहीं चढ़ा हुआ है उसमें लगा।
0: तो ये तो नंबर चढ़वाना पड़ेगा आपको अपने,
2: हाँ
0: ये तो दूसरे की गलती नहीं है,
2: सब्सिडी नहीं आती है।
0: आपको अपना नंबर चढ़वाना पड़ेगा तब आपके खाते में सब्सिडी आएगी। तो मतलब फायदा तो हुआ है परिवार में?
2: हाँ फायदा यही है कि मान लियो लकड़ी वगैरह ईंधन नहीं जलाने पड़ता है।
0: बिल्कुल, महिलाएं बहुत सी बीमार हो जाती थी धुएं की वजह से, आपने देखा था पहले ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को टीबी रोग ज्यादा हुआ करता था, उसका एक खास कारण था कि जो ईंधन से रोटी बनाती थी उसके माध्यम से ज्यादा उनको ये समस्या होती थी। तो सिलेंडर घर घर हो जाने से ये फायदा हुआ है महिलाओं को कि अब साफ स्वच्छ खाना बनाती हैं।
2: हाँ इससे बहुत सुविधा हुई।
0: भाई बरसात में लकड़ी कंडा सब गीले हो जाते थे तो
2: हाँ
0: समस्या
2: बहुत,
0: हो जाती थी
2: हाँ
0: ईंधन
2: बहुत
0: की,
2: समस्या हो जाती है।
0: अब सिलेंडर आने से कोई समस्या नहीं है।
2: नहीं
0: तो अब ये बताओ कि अब गंगा सरन जी धान में क्या क्या काम आगे किसान भाई कर सकते हैं,
3: धान में आगे अभी सारे काम करने ही को हैं।
0: क्या क्या काम करें शुरू से बता दो।
3: धान में अब गड़ाई भाई, अब उसकी नराई चालू होगी, सूढ़ी वगैरह लग रही है, इसके लिए स्प्रे करनी पड़ेगी, पानी समय समय पानी देखभाल करने हैं
0: हाँ
3: जी, काम है।
0: तो जो सरकारी योजनाएं, इनसे आपको तो जो लाभ हुआ है सो हुआ है, अब हम बात करेंगे गांव में क्या क्या लाभ हुआ है। कमलेश बाबू आपके गांव में शौचालय बनाए गए हैं,
1: जी सर।
0: तो इससे क्या फायदा हुआ है ग्रामीणों
1: सर
0: को?
1: शौचालय से ये फायदा हुआ है, जंगल में नहीं जाना पड़ रहा है, और दूसरी बात ये भी है इससे साफ सफाई भी रह रही है
0: बिल्कुल,
1: जी
0: क्योंकि ये मुहिम चलाई गई थी स्वच्छता के लिए,
1: जी
0: तो लोग जंगल में नहीं जाते हैं, और विशेषकर रात में बड़ी दिक्कत होती थी
1: जी
0: भाई, घर से बाहर शौच के लिए जाना पड़ता था। तो राधे श्याम जी आपको शौचालय मिला है,
2: जी
0: शौचालय में क्या क्या मतलब सरकार ने कितने पैसे दिए बनवाने के लिए?
2: शौचालय जी सर, सरकार से तो नहीं मिला, वो हमने अपने आप से बनवाया है।
0: आपने आप से बनवाया, बहुत अच्छी बात है कि आपको सरकार ने नहीं दिया तो भी अपने आप से बनवाया। तो शौचालय से क्या फायदा है घर में शौचालय होने से?
2: शौचालय जी साफ सफाई मान लो बढ़ गई, उससे बाहर जाते गंदगी मान लो नहीं अच्छी थी,
0: हाँ
2: तो सफाई ज्यादा मालूम पड़ी।
0: बरसात के मौसम में बाहर कैसे जाते?
2: अरे बारिश के मौसम में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए मान लो छाता लगाने पड़ती या भीगते फिर
0: भीग के जाना पड़ता था,
2: फायदा
0: गांव में गंदगी रहती थी, इन सबसे फायदा हुआ। गंगा सरन जी आपको शौचालय मिला सरकार की तरफ से?
3: मिला है।
0: मिला, तो कितने रुपए मिले थे शौचालय बनाने के लिए?
3: शौचालय बनाने उस टाइम 6,000 रुपये मिले थे।
0: अच्छा, तो आपने बनवा लिया
3: हाँ
0: शौचालय,
3: शौचालय बनवा
0: अब
3: लिया,
0: बताइए इस योजना से क्या फायदा हुआ आपको?
3: बहुत फायदा हुआ इससे, घर की औरतें बाहर नहीं जा रही हैं, बाहर गंदगी नहीं फैल रही है,
0: किसी भी मौसम में कोई समस्या नहीं है,
3: कोई समस्या
0: चाहे
3: नहीं,
0: दिन हो
3: चाहे
0: चाहे
3: रात
0: रात
3: हो।
0: हो चाहे बरसात हो, घर में शौचालय होने का ये फायदा है कि जब भी हमें उसकी आवश्यकता है हम तुरंत जा
3: तुरंत
0: सकते
3: जा
0: हैं,
3: सकते
0: साफ
3: हैं,
0: सफाई रख सकते हैं, गंदगी भी गांव में नहीं फैलेगी,
3: फैलेगी।
0: और हम स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बीमार भी नहीं पड़ेंगे। अब हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि गांव में कैसा विकास हुआ है गंगा सरन जी अब?
3: गांव में बहुत बढ़िया विकास हुआ है पहले से।
0: अच्छा, क्या स्थिति है, क्या विकास की स्थिति क्या है आपके गांव की? अगर हम गांव में घूमने आए तो गांव में गलियां कैसी हैं, नाली कैसी हैं?
3: गांव में पहले तो खरंजा होते थे, अब तो सब सीसी रोड है हमारे गांव में, नाली
0: हाँ
3: बनी हुई है,
0: हाँ

0: छोटा गांव, विद्यालय बना हुआ है।
1: अच्छा, गांव में चिकित्सालय है
0: चिकित्सालय नहीं है।
1: तो पास पड़ोस में कहीं होगा।
0: हाँ, पास में है, 3-4 किलोमीटर आगे गांव के।
1: हाँ, तो वहां से सुविधाएं मिलती हैं आपको?
0: चिकित्सालय सुविधा हाँ मिलती हैं,
1: क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं?
0: चिकित्सालय से फ्री में दवाई मिलती है, जांच वगैरह फ्री में, पैसा नहीं जाता है, सुविधाएँ और गाड़ी की सुविधा है चिकित्सालय में फ्री।
1: चिकित्सालय में अगर कोई इमरजेंसी है फोन कर दो
0: फोन
1: तो
0: कर दो
1: तुरंत
0: तुरंत गाड़ी,
1: एम्बुलेंस आ जाती है। तो ये सब
0: सुविधाएँ
1: सुविधाएं
0: हैं।
1: सुविधाएं हैं। अब आज आप कचहरी में भी जाते होंगे, तहसील में नवाबगंज जाते होंगे, तो वहां भी आपने देखी होगी पहले से बहुत बदलाव है।
0: हाँ, बदलाव है।
1: कोई कागज चाहिए तो जल्दी निकल जाता है तो इससे क्या फायदा
0: सब
1: होगा
0: नेट का सिस्टम
1: किसानों
0: होगा,
1: को?
0: सब फायदा ही है।
1: क्या क्या फायदा हुआ किसानों को?
0: हमें बहुत सारे फायदा हुए हैं, जाने आने की दिक्कत खत्म हुई है।
1: गांव में बैंक है कमलेश बाबू आपके? कितनी
2: सर गांव में नहीं है,
1: दूर है गांव से?
2: 1 किलोमीटर है बरखन में
1: बरखन में है।
2: जी।
1: तो फिर जो गांव के नजदीक बैंक होने से क्या फायदा है ग्रामीणों
2: सर
1: को?
2: गांव में नजदीक बैंक होने से ये है, पैसे उसे हम निकाल के लाते हैं, दिक्कत नहीं होती है, और वैसे भी कोई काम पड़ता है तो हम जल्द पहुंच जाते हैं।
1: जल्दी पहुंच जाते हो।
2: जी
1: और जैसे गांव में लोगों को जो सुविधाएं चाहिए होती हैं, पशु चिकित्सालय, क्योंकि पशु बीमार होते हैं, तो पशु चिकित्सालय आपके गांव से कितनी दूर है?
2: सर, पशु चिकित्सालय वो तो काफी दूर है।
1: बरखन में होगा?
2: नहीं, बरखन में नहीं है सर।
1: अच्छा,
2: जी
1: लेकिन गांव में डॉक्टर आते होंगे,
2: जी सर, गाँव में आते हैं,
1: तो जैसे पशु बीमार हो जाता है तो क्या करते हो?
2: पशु बीमार हो जाते हैं सर उसे दवाई खिलाते हैं।
1: दवाई खिलाते हो?
2: जी
1: किसे बुलाते हो?
2: सर, डॉक्टर को बुलाते हैं,
1: हाँ, तो कैसे?
2: फिर वो देखता है जानवर को, फिर वो दवाई देता है, फिर हम उसे खिलाते हैं।
1: बिल्कुल। तो ये सब सुविधाएं अब गांव में हो गई हैं।
2: जी
1: पहले पहले के गांव कैसे थे, अब कैसे थे? गंगा सरन जी आप बताओ, सबसे अच्छा बता रहे हो आप।
0: पहले की अपेक्षा सर गांव बहुत बदलाव आ गया है।
1: हाँ
0: पहले गांव में रास्ता नहीं थी, अब रास्ता का विकास हो गया है।
1: जी,
0: और इससे पहले ना तो सवारी की सुविधा ही, कोई ऐसा गांव नहीं जहां सवारी की सुविधा नहीं हो,
1: नहीं हो, मतलब घर से निकलो और आप सवारी
0: सवारी
1: तुरंत।
0: तुरंत।
1: भाई आपके गांव से तहसील कितनी दूर है नवाबगंज?
0: हमारे गांव से तहसील नवाबगंज 6 किलोमीटर है।
1: 6 किलोमीटर है। अब आपको ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगते होंगे
0: नहीं
1: तहसील।
0: सर, ज्यादा से ज्यादा 6-7 मिनट,
1: 6-7 मिनट लगते हैं। तो ये
0: इससे
1: सुविधाएं तो हैं
0: सुविधा है।
1: ग्रामीणों के लिए, सरकार ने ये सुविधाएं तो पहुंचाई। एक समय ऐसा होता होगा तहसील जाने के लिए सोचना पड़ता होगा
0: सोचना
1: लोगों को।
0: पड़ता था सर, 2-2 घंटे रोड पे खड़े होना पड़ता था,
1: जी
0: अब तो
1: जी
0: हाईवे रोड हो गया, जाओ खड़े हो तुरंत सवारी है।
1: बिल्कुल। मतलब जो सुविधाएं हुई हैं, जो सड़कें बनी, जो सवारी की व्यवस्था हुई, आज आप घर से निकले आपको टुक टुक मिल गया, तांगा मिल गया, टेम्पू मिल गया, आप तुरंत तहसील मुख्यालय पहुंच गए। चाहे कोई
0: सब
1: भी मौसम हो, चाहे
0: कोई भी
1: बरसात हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कुछ हो। पहले के समय में बड़ी समस्याएं थी, इतना विकास नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सभी गांव जुड़े, सड़कों
0: जुड़े
1: से जुड़े, तो ये सब फायदा है, ये हमारे विकास की बात
0: सब
1: है।
0: विकास ही फायदा।
1: आज भाई खेती में भी तो काफी विकास हुआ है, सरकार की योजनाएं हैं,
0: जी
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, इसका लाभ आपको मिल रहा है। आप दवाई खरीद रहे हो, आप खाद खरीद रहे हो, आपको लगाने के लिए ये सब चीजें मिल रही हैं, तो ये सब सरकार
0: सब
1: की सुविधा।
0: सरकारी सुविधाएं।
1: तो राधेश्याम जी आप बताओ, सरकार से क्या कहना चाहते हो और किसान होने के नाते?
3: क्या कहना, क्या मान लो जितनी सुविधाएं मिली हैं ये अच्छी बात है, और मिलती रहे वो भी बढ़िया है। सभी को सरकार को भाई धन्यवाद, मान लो इतनी सुविधाएं दे रही।
1: गंगा सरन जी आप सरकार को किस तरह से धन्यवाद देंगे इन सुविधाओं के?
0: सरकार द्वारा सर जो लाभ मिल रहे हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: एक बात और है गंगा सरन जी, आपके यहाँ आयुष्मान कार्ड भी बने होंगे,
0: जी बने
1: आपका बना है?
0: नहीं,
1: गांव में लोगों के तो
0: हाँ गांव
1: बने,
0: में लोगों के,
1: इससे क्या फायदा हुआ है लोगों को?
0: इससे सर यही फायदा हुआ है, जो सरकारी पैसा से इलाज लोग नहीं करा पाते हैं उन्हें का इलाज हो जाता है।
1: हाँ,
0: इससे बहुत बड़ी सुविधा मिली है, जो हमारे पास लोगों के पास पैसे नहीं है तो फ्री में इलाज हो रहा है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चाहे तो चिकित्सा का क्षेत्र सही या पशु
0: पशु
1: चिकित्सा
0: चिकित्सा कोई
1: की
0: सही।
1: क्षेत्र ही सही, टीकाकरण गांव में फ्री होता है आज, पशुओं
0: जी
1: का टीकाकरण गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो सरकार के माध्यम से गांव तक पहुंची हैं, किसानों तक पहुंची हैं, ग्रामीणों तक पहुंची हैं, तो ये अच्छी बात है कि हमारे हमारा विकास हुआ है। सरकार ने किसानों के बारे में सोचा, किसान सम्मान निधि की योजना दी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं हैं। लेकिन बात यह है कि अगर हम जागरूक रहेंगे तभी इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं,
0: जी
1: और अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो कोई भी योजना का

0: किसी भी योजना का लाभ हम नहीं उठा सकते। गंगा सरन जी, कमलेश जी, राधे श्याम जी, आप जनमंच कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, आपने जो आपको मिलने वाली सुविधाएं हैं उनका लाभ बताया, सरकार की तरफ से गांव में क्या विकास कार्य हुए हैं ये सब बताया, आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम जनमंच। आज का विषय था सरकार द्वारा किसानों को मिलने वाली सुविधाएं। प्रतिभागी थे गंगा सरन, कमलेश और राधेश्याम, और संचालन कर रहे थे रविंद्र कुमार। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
2: विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंवझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गाँव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
2: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज

0: से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: कि बोलते शंकर जय किशन की तरस थी।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मंगेशकरको मजरू सुलतानपुरीके भुईंको सुरमे घाला वसंत देसाईने और अब आपकी नजर कर रहे हैं दिलीप मंदिर फिल्म कवि मोहम्मद रफी की आवाज हसरत जयपुरी।

सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज़, हसन जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: अलबेला फिल्म का गीत था लता मंगेशकर, चितलकर और साथियों की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण के लिखे और सी राम चंद्र के सुरबद्ध के इस गीत के साथ ही श्रोताओं आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। वक्त दोपहर का, बारिशों की रिमझिम इन हल्की ठंडी फुहारों के साथ साथ लीजिए। आपके रेडियो सेट पर शुरू हो रहा है प्रोग्राम। श्रोताओं, आप ही के पसंदीदा गीतों का प्रोग्राम मन चाहे गीत, तो सुनिए प्रोग्राम। देखिए कहीं आपके पसंद का कोई गीत तो नहीं। आज सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

सावन की ठंडी ठंडी फुहारों की तरह ये गीत हैं श्रोताओं, जो बंद हैं आपकी चिट्ठियों में, और उन्हीं में से ये गीत हमने आपको सुनवाया। दो रास्ते फिल्म का ये गीत था, जो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे। इस गीत को पसंद किया मालीवेस बीर शहर से किशोर उबाले, मंगला उबाले, और इस गीत में आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से। श्रोताओं, आइलर नगर केटगांव से इसी गीत को पसंद किया भाऊ साहब नवथर, अक्षय चंदन, जय कुमार चंदन, सुचिता चंदन, और बसमत रोड परवणी से रणजीत कारेगांवकर, कंचन सृष्टि, समरजीत कारेगांवकर की ये फरमाइश थी। शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, पैरी पार्वती और राधा चंद्राकर की फरमाइश आपने सुनी।

कालीगांव जाफराबाद से इस गीत को सुनना चाहते थे श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत संचित मोताला से कुमार प्रथमेश प्रणाली, कड़ा रोड से कुमारी सानवी देशमुख की ये फरमाइश थी और कुमार सरवत देशमुख भी यहीं से। विमल निकेतन अकोले की ये फरमाइश है। महेंद्र नागेश, पारस जयेश, ऋषभ संयम, सिद्धांत जैन और साक्षी जैन और इनके परिवार के सभी सदस्य मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, प्रियंका, पूजा और ऋतु की फरमाइश आपने सुनी।

मोहाली पंजाब से ये पत्र आया है, बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल की ये फरमा

दो कलियां फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, सहल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। विनायक नगर निजामाबाद से इस गीत को सुनना चाहा ज्योति श्रीहरि, राजकमल, विनोद कुमार, रामानंद और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा ने।

लेकिन हम तो जानते हैं श्रोताओं के हमारे श्रोताओं की नजरें कभी खफा नहीं हो सकती। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपके ढेरों पत्र आए और इसी तरह से आप पत्र लिखते रहिए, हमें रहता है आपके पत्रों का इंतजार। तो मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को कार्यक्रम मन चाहे गीत से। आप सभी का कार्यक्रम के लिए सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: यह है विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एंटन चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर, विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। आइए सुने नाटक विवाह का प्रस्ताव।

0: माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ दस्तक देकर ही अंदर चला आया।
1: और हम भी तुम्हें यूं ही बाहर नहीं जाने देंगे। आओ बैठो आइवन लोमोव।
0: धन्यवाद।
1: आइवन, तुमने तो हमें भुला ही दिया।
0: जी, एक उलझन के कारण मैं इधर आ नहीं पाया, इसके लिए बहुत लज्जित हूँ। लेकिन विश्वास कीजिए, आपकी याद सदा मेरे साथ रही।
1: और ये तुम्हारा स्नेह है जो तुम हमें अपना समझते हो। मगर आइवन, आज खैर तो है। ये फरका नया कोट, ये रंग बिरंगी कराकली टोपी और ये सफेद दस्ताने, आज तुम जा कहाँ रहे हो?
0: जी कहीं भी तो नहीं। बात यह है कि मैं आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लाया हूँ।
1: अच्छा,
0: अब आपसे कैसे कहूँ?
1: तो और कौन कहेगा?
0: ये भी ठीक है, और कौन कहेगा? जहाँ मैं ही कहूँगा। लेकिन थोड़ा पानी पिलवा दीजिए। हाँ, मुझे
1: अभी लो।
0: मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। डरता हूँ अगर आपने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया तो मेरा क्या होगा?
1: पानी।
0: धन्यवाद।
1: अब ये मुझसे कुछ रुपया उधार मांगेगा और मैं इसे अंगूठा दिखा दूंगा।
0: देखिए, मैंने कई बार देखा है, महसूस किया है कि इस दुनिया में जितना आपको मेरा ख्याल रहता है किसी को नहीं रहता। मैं आपके इस अपार स्नेह के योग्य तो नहीं हूं।
1: आइवन, आज तो तुम्हारी बातें भी तुम्हारी पोशाक की तरह बिल्कुल नहीं है।
0: जी जी जी, ये बात नहीं है।
1: तो वो बात क्या है?
0: वो बात ये है।
1: हाँ?
0: अभी कहता हूँ।
1: कहो।
0: बस मैं कहने ही जा रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: जहाँ हालत तक तो आ गई है
1: तो जबान पर ले आओ।
0: अच्छा,
1: शाबाश।
0: अपनी बेटी नथालिया का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए।
1: आइवन, मेरे प्यारे आइवन, एक बार फिर कहो
0: जी,
1: कहीं मेरे कानों ने वो तो नहीं सुन लिया जो पिछले कई वर्षों से मेरे दिल में था। कहो ना आइवन।
0: फिर किस मुंह से कहूँ? कहाँ आप इतने बड़े जमींदार और कहाँ मैं आपका एक पड़ोसी छोटा सा जागीरदार।
1: ऐसा न कहो आइवन, ऐसा न कहो। जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, लेकिन तुम पहले मेरे गले से लग जाओ। मैंने सदा तुम्हें अपनी बेटी नितालिया की तरह चाहा। अरे, मैं अभी तक यहीं क्यों खड़ा हूँ? आइवन, तुमने देखा, मारे खुशी के मैं ये भी भूल गया कि मुझे नितालिया को तुम्हारे आने की खबर करनी चाहिए।
0: तो क्या नितालिया मुझे पसंद कर लेगी?
1: क्या कहते हो आइवन, तुम जैसे स्वस्थ सुंदर और नए नए कोट पहनने वाले गुलगुले जवान को भला कौन पसंद नहीं करेगा। मैं अभी नितालिया को भेजता हूँ।
0: जी।

0: जो वो कॉप चले गए, अब मिताली आएगी है? ये क्या, मैं सिर से पांव तक कांप रहा हूं। अरे बाप, मेरा सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हुआ जा रहा है। ये क्या, मेरे होंट कांप रहे हैं, मेरी मेरी भारी आंख फड़क रही है।
1: अरे यहाँ तो आइवन लोमो विराजमान है।
0: आपको आपको आश्चर्य हुआ कुमारी मितालिया?
1: जी हाँ।
0: क्या
1: आप पर नहीं, बाबा की बात पर।
0: बाबा की बात पर?
1: जी हाँ, बाबा बोले कोई मटर खरीदने आया है।
0: ओह
1: और मैं जल्दी में इन मैले कपड़ों में ही यहाँ चली आई। अंदर आंगन में मटर की फलियों में से दाने निकाल रही थी।
0: जी
1: आपके लिए कुछ खाने को लाओ।
0: जी जी जी, जी, जी आप कष्ट न करें, मैंने अभी खाना खाया है, आप कृपया बैठ जाएं तो।
1: लीजिए बैठ गई।
0: जी
1: आज तो आप अपने घर से खूब बन ठन कर निकले हैं।
0: जी
1: सच, इन नए कपड़ों में तो आप देखने में बहुत भले लगते हैं।
0: कुमारी नितालिया।
1: जी
0: मेरी मेरी मेरी आपसे प्रार्थना है। जी मैं आज बहुत ठंड पड़ रही है,
1: आपके लिए कंबल हूँ।
0: जी नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था।
1: बात क्या है, आप इससे घबरा क्यों रही हैं?
0: देखिए कुमारी मिथालिया, मैं आपके बाबा को तब से जानता हूँ जब आप अभी पैदा भी नहीं हुई थी, और ये तो आप भी जानती हैं कि आज आज मैं जिस जागीर का मालिक हूँ वो मुझे मेरे नाना नानी से मिली थी। मेरा मतलब है, मैं कहना ये चाहता था कि मेरे नाना नानी भी आपके बाबा को बहुत चाहते थे, और आज भी हमारे घरों के आपसी संबंध बड़े अच्छे हैं। देखिए ना, आपके घर की दीवार मेरे घर की दीवार के साथ लगती है, आपके खेतों के साथ मेरे खेत हैं, आपकी सफेदा जमीन के किनारे मेरा चेरी का बगीचा खड़ा है।
1: क्षमा कीजिए
0: जी,
1: क्या क्या वो चेरी का बगीचा आपका है?
0: जी हाँ, क्यों
1: यूं नहीं सोच कर बताइए।
0: आप भी कमाल करती हैं, भला इसे सोचने की कौन सी बात है, और फिर क्या मेरे सोचने पर मेरा वो बगीचा किसी दूसरे का बन जाएगा?
1: लेकिन जो बगीचा हो ही दूसरे का, वो आपका कैसे बन सकता है?
0: मैं समझा नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
1: इसलिए कि वो बागीचा हमारा है।
0: अजी मैं चेरी को उस बागीचे का जिक्र कर रहा हूँ जो आज तक कभी हरा नहीं हुआ, जिसके एक सिरे पर आपकी सफेदा जमीन है और दूसरे सिरे पर खाई है।
1: जी हाँ, मैं भी उसी बागीचे के लिए कह रही हूँ कि वो हमारा है।
0: कमाल है, ये तो मैं आज ही सुन रहा हूँ कि वो बागीचा आपका है।
1: और मैंने भी आज पहली बार सुना कि वो आपका है।
0: लेकिन मेरे बगीचे पर आप अपना कब्जा कैसे जता सकती हैं?
1: अरे मगर वो बगीचा आपका कब से हुआ?
0: जब से मैंने होश संभाला।
1: फिर जब से आपने होश संभाला है, आप झूठ को सच समझ रहे हैं।
0: जी नहीं, आप अब सच को झूठ समझ रही हैं। देखिए कुमारी मिताली, मेरे पास ऐसे कागजात हैं जिनमें ये साफ साफ लिखा है कि मेरी नानी की दादी ने वो बागीचा आपके दादा के काश्तकारों को बिना पट्टा लिखवाए खेती करने के लिए दिया था, और आपके दादा 40 साल तक हमारी उस जमीन की कमाई खाते रहे, और फिर आप ही की तरह जब आपके दादा ने भी हमारी उस जमीन का मालिक बनने की कोशिश की तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी।
1: देखिए मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ जो मैं आपकी इस मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास कर लूं।
0: मैं जानता हूँ कुमारी निकालिया, आप इतनी बुद्धिमान भी नहीं है जो किसी दूसरे की संपत्ति पर अपना हक जताना छोड़ देंगी।
1: आइवन, इस प्रशंसा के योग्य केवल आप हैं।
0: जी
1: आपका मुंह बंद करने के लिए मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि वो सूखा सड़ा बागीचा जिसकी कीमत 300 रूबल से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं है, मैं आपको भेंट कर सकती
0: हूँ। कुमारी मिताली, मैं आपकी उदारता का कायल हूँ, लेकिन आपको मेरी ही संपत्ति मुझे भेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगीचा तो मैं आपको भेंट कर सकता हूँ, मगर अब प्रश्न सिद्धांत का है, न्याय का है।
1: अन्याय भी ये है कि न्याय आप कर रहे हैं। 300 साल से जो बागीचा हमारे अधिकार में चला आ रहा है, आज उसे आप अपना बता रहे हैं।
0: फिर वही बात, आप किसी दूसरे की सुनती भी तो नहीं है। कुमारी निकालिया, हुआ यूं था कि आपके परदादा के काश्तकारों ने मेरी नानी की दादी को मकान बनाने के लिए ईंटें पकाकर दी थी, इसलिए कुछ बख्शीश के तौर पर मेरी नानी की दादी ने उन्हें।
1: फिर वही दादी की नानी, नाना की दादा। अब मैं आपसे और कितनी बार कहूँ कि वो बागीचा हमारा है, हमारा
0: जी
1: है।
0: जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, वो मेरा है। आप सुनिए तो, वो हुआ यूं था।
1: आइवन, अगर आप लगातार 2 दिन तक इसी तरह बहस करते रहेंगे और अपने घर से एक बढ़िया कोट पहनकर आते रहेंगे तो भी ये बागीचा हमारा ही रहेगा।
0: देखा है ना सीना दूरी। कुमारी निकालिया, मैंने आज तक कभी किसी की संपत्ति पर अपना हक नहीं जताया, मैंने आज तक कभी किसी की जमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश नहीं की।
1: इसीलिए आप अपनी ईमानदारी का सिला हमसे वसूल करना

0: चाहते हैं?
1: ओ, ओ, मेरे गले में कांटे उग गए हैं। ठहरिए जरा, पानी पी लूं तो बताता हूँ आपको। मैं फिर कहता हूँ कि वो बागीचा मेरा है, मेरा है।
0: ये चीख आपकी है, मगर बागीचा हमारा है।
1: जी नहीं, वो मेरा है।
0: वो बागीचा हमारा है और मैं आज ही अपने कारिंदों को वहाँ की सारी घास काटने के लिए भेजती हूँ।
1: क्या?
0: हाँ, मेरे आदमी अभी वहाँ पहुँच जाएंगे।
1: तो कान खोल कर सुन लीजिए, अगर मेरी धरती पर किसी ने कदम रखा तो मैं उसकी खाल में भूस भरवा दूंगा।
0: इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने अंजाम से वाकिफ हैं।
1: मैं कहता हूँ इन बातों में कुछ नहीं रखा। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो बागीचा मेरा है, मेरा है, मेरा है।
0: आइवन, अगर ये घर मेरा ना होता तो आप इससे भी कहीं ज्यादा ऊंची आवाज में चीख सकते थे, चिल्ला सकते थे, दहाड़ सकते थे।
1: कुमारी नितालिया, कुमारी नितालिया, अगर मुझे दिल का रोग ना होता, अगर मेरे पुट्ठों में दर्द ना होता तो आज मैं आपको बता देता कि किसी की संपत्ति पर आंख रखने का क्या परिणाम होता है। देखिए, अब भी भलाई इसी में है कि सीधी तरह से मान लीजिए कि वो बागीचा मेरा है।
0: नहीं, हमारा है।
1: जी नहीं, मेरा है।
0: हमारा है।
1: मैं कहता हूँ मेरा है।
2: जी क्या हो रहा है?
0: बाबा, आप जरा इनकी समझ में ये बिठाइए कि हमारा वो चेरी का बगीचा किसका है।
2: हमारा है और किसका?
1: आप अपनी बेटी की बोली में बोल तो रहे हैं, मगर कुछ पता भी है कि मेरी नानी की दादी ने यह बगीचा आपके दादा के काश्तकारों को थोड़ी सी मुद्दत के लिए ऐसे ही खेती करने के लिए दिया था और फिर 40 वर्ष तक वे अपना पेट और आपके दादा का घर भरते रहे।
2: आइवन, तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि उन काश्तकारों ने तुम्हारी दादी को उस बगीचे के पट्टे की सारी रकम चुका दी थी। विश्वास न हो तो गांव के पटवारी से या तहसीलदार की कचहरी से जाकर मालूम कर लो कि उस जमीन का लगान आज तक कौन भरता रहा।
1: फिर तो आप सरकार को भी धोखा देते रहे।
2: धोखा? हाँ, अपनी जमीन का लगान तुमसे सरकारी खजाने में भरवा के हम तुम्हें अवश्य धोखा दे सकते थे,
0: लेकिन हमने ऐसा भी नहीं किया।
1: मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता कि वो बागीचा मेरा है और मेरे पास इसका सबूत है।
2: नहीं आइवन, तुम ये साबित नहीं कर सकते।
1: क्यों नहीं कर सकता?
2: आइवन, तुम इस भ्रम को अपने दिल से निकाल दो कि हम तुम्हारा वो बगीचा हड़प कर जाना चाहते हैं। और अगर तुमने यूं ही चिल्लपो मचाकर यह साबित करने की कोशिश की कि वो बगीचा तुम्हारा है, तो मैं उसे तुम्हारे हवाले करने के बजाय अपने किसी काश्तकार को यूं ही दे।
1: जी हाँ, क्यों नहीं। बेटी भेंट करने की बात कहती है और बाप किसी और को दे डालने की धमकी देता है। मैं पूछता हूँ, किसी दूसरे की संपत्ति को आप इस तरह कैसे लुटा सकते हैं? क्या अधिकार है आपको?
2: ये तो मैं ही जानता हूँ मुझे अधिकार है या नहीं, लेकिन तुम अपनी जबान को काबू में रखो। मैं ऊंची आवाज सुनने का आदी नहीं।
1: तो हो जाएंगे, अब आपका वास्ता मुझसे पड़ा है।
2: आइवन, यूं ही आवेश में मत आओ।
1: वाह वाह, आप तो पड़ोसी होने के नाते मेरा बागीचा हड़प कर जाएं और मैं आवेश में भी नहीं।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तुम चुप हो जाओ।
1: मैं तो जैसे आपके इस आदेश की प्रतीक्षा में ही था। मैं कह देता हूँ, आप मेरे पड़ोसी नहीं है, मेरे पड़ोस में रहने वाले डाकू है।
2: क्या कहा?
0: बाबा, बाबा, इन्होंने आपको डाकू कहा?
2: अब मैं इसे क्या कहूँ?
1: जो मैंने आपको कहा है आप वही अपनी बेटी से भी कहिए।
0: बाबा, आप कुछ कहने के बजाय कुछ कीजिए।
2: मैं कुछ करूँ?
0: हाँ।
2: लेकिन मैं क्या करूँ?
0: आप अपने कारिंदों से कहिए कि वो बागीचे की सारी घास खोद लाए।
1: खोद लाए? कुमारी नितालिया, घास खोद लाना इतना आसान नहीं है।
2: इस बारे में आप अधिकार से बात कर सकते हैं।
1: आप मेरी यूं खिलना उड़ाइए, मैं अब इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा।
0: और जब इंसाफ होगा आप अदालत का दरवाजा तोड़ डालेंगे।
2: क्योंकि तुम इंसाफ उसे मानते हो जो इंसाफ के साथ खुद बड़ी बेइंसाफी।
1: हाँ, इसका फैसला अदालत में ही होगा।
2: आइवन, मैं तुम्हारी मुकदमेबाजी की लत से वाकिफ हूँ और मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पुरखों की सारी जिंदगी अदालतों में ही।
1: देखे, मेरे पुरखों का अपमान मत कीजिए, उनकी ईमानदारी के चर्चे आज भी लोगों की जबान पर हैं। हाँ, आप अपने चचा की ईमानदारी का डंका जरूर बजाइए जो गबन के अपराध में आज भी जेल में आटा पीस रहे
2: हैं। तुम्हारा तो दिमाग चल गया।
0: इनके घराने में ठीक किसका था?
2: हाँ, इसका दादा संकी।
1: दादा संकी था? आपकी माँ का भी तो ऊंट की तरह कोहान निकला हुआ था। मेरा दिल पानी।
2: अरे, तुम्हारा तो बाप पत्तेबाज था, क्रॉसवर्ड पजल भरा करता था।
0: आपकी नानी के मुंह में जब्बा नहीं ततैया मिस थी और वो हर किसी को काटने को दौड़ती थी।
1: मेरी बही ढंग के ताजा निराने लगे हैं और आप मीठी जबान से हर किसी का गला काट रहे हैं। और दिल को, और ये कौन नहीं जानता कि चुनाव से पहले मुझे कुछ नहीं सुझाई दे रहा, मेरी टोपी कहाँ है?
2: अरे तुम मक्कार हो, अरे भी,
1: लेकिन आपसे कोई मुकाबला नहीं है। ओ, मेरा दिल, यही मेरी टोपी, अब दरवाजा की तरह मेरी टांग सुन हो गई।
2: घसीट कर ले जाओ अपने आप को यहाँ से।
1: हाँ हाँ, जा रहा हूँ।
2: इतना और सुनते जाओ, हमारे घर फिर कभी पांव रखा तो हाथ से टांग, नहीं नहीं टांग से हाथ धो।

0: बैठोगे। हाँ,
1: और अब यहाँ से सीधे अदालत में ही जाना। हाँ,
0: चला गया कमीना कहीं का।
1: आप हमें इस रीच पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे सदा चौकन्ना रहना चाहिए।
2: और आस्तीन के सांप का हमें सर कुचल देना चाहिए।
1: हाँ, नहीं तो ये हमारी संपत्ति पर कुंडली मार कर बैठ जाएगा।
2: निर्लज्ज का दुस्साहस तो देखो।
3: बोला, आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ।
1: कैसा प्रस्ताव?
2: अरे ब्याह का प्रस्ताव। कमीना, जलील, गुंडा कहीं का मेरी बेटी से ब्याह करना चाहता था।
1: आपने आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
2: अरे मैं क्या बताता, तुमने खुद नहीं देखा कि वो रीच का बच्चा कैसा छैला बनकर आया?

0: चल देना चाहिए।
1: हाँ, नहीं तो ये हमारी संपत्ति पर कुंडली मार कर बैठ जाएगा।
0: निर्लज्ज का दुस्साहस तो देखो।
2: बोला, आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ।
1: कैसा प्रस्ताव?
0: अरे ब्याह का प्रस्ताव। कमीना, जलील, गुंडा कहीं का मेरी बेटी से ब्याह करना चाहता था।
1: आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
0: अरे मैं क्या बताता, तुमने खुद नहीं देखा कि वो रीच का बच्चा कैसा छैला बनकर आया?
1: वो मुझसे ब्याह करना चाहते थे।
0: अरे अरे क्या हुआ बेटी नितालिया, क्या हुआ?
1: बाबा बाबा उन्हें बुला लाइए, अभी बुला लाइए।
0: क्या अब उसे मैं बुलाने जाऊं?
1: हाँ बाबा, अभी जाइए, अभी जाइए बाबा। ओह, मेरा सर चकरा रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है।
0: अरे मगर बेटी, अभी हमने उसे यहाँ से इतने शानदार स्वागत से निकाला और अब वो दोबारा यहाँ आने के लिए कभी नहीं मानेगा।
1: बाबा आप अभी जाकर उन्हें किसी भी तरह मना लाइए, मैं उनके
0: अरे बेटी नितालिया, होश में आओ, ये क्या पागलपन है? हे भगवान, अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ?
1: इससे पहले उन्हें बुला लाइए।
0: जाता हूँ बाबा, जाता हूँ, जा रहा हूँ।
1: आज उन्होंने फर का कैसा बढ़िया कोट पहन रखा था, फिर भी हमने उनका ऐसा सम्मान किया, कौन जाने अब वो आएंगे भी या नहीं।
0: नितालिया बेटी, हेलो, अब तुम अच्छी हो जाओ, वो आ रहा है। कम वक्त भी सीढ़ियों पर ही था, मगर अब मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, अब मैं तुम्हारे मामले में कभी नहीं बोलूंगा, तुम जानो और वो जाने।
1: वो कब आएंगे?
0: अरे भाई, उसके पर नहीं, पैदल आ रहा है।
1: आप उन्हें उठा कर क्यों नहीं ले आए?
0: ओ भगवान, तुम एक अच्छे भले आदमी को बेटी का बाप क्यों बना देते हो? मेरी तो मिट्टी खराब हो गई।
1: कैसे?
0: तुम्हारे कारण पहले मैंने उसे जली खटी सुनाई, उसे अपमानित किया और फिर उसे खड़े खड़े अपने घर से बाहर निकाल दिया, और अब
1: क्या मेरे कारण?
0: और नहीं तो क्या?
1: बाबा अब आप मेरे साथ वैसा व्यवहार ना कीजिए।
0: अच्छा बाबा अच्छा, सारा दोष मेरा ही था। एक बेटी का बाप निर्दोष हो ही कैसे सकता है, और फिर वो भी अपनी बेटी की नजर में। लो वो आ गया और मैं अपने कमरे में जा रहा हूं।
3: मेरा दिल बड़े शोरों से धड़क रहा है,
1: और मेरे दिल को बड़ा चैन मिला है आपको यहाँ अपने पास देखकर।
3: वो बगीचा मेरा है।
1: जी हाँ, वो बगीचा सचमुच आप ही का है। आपके जाने के बाद मुझे याद आया।
3: मेरी टांगें सुन्न हो गई हैं, लेकिन वो बगीचा मेरी नानी की दादी से पहले भी हमारा था।
1: जी हाँ, हमसे भूल हो गई, आप कृपया क्षमा कर दी।
3: बात असूल की थी, सिद्धांत की थी, नहीं तो आप जाने सूखा हुआ बगीचा जो कभी हरा नहीं हुआ चीज ही क्या है।
1: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब आप कोई और बात कीजिए।
3: वो तो ठीक है, लेकिन देखिए ना, इसके अतिरिक्त मेरे पास ऐसे कई प्रमाण पत्र हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि मेरी नानी की दादी ने आपके दादा के काश्तकारों को।
1: जाने दीजिए, मैं अपनी भूल पर पहले ही बहुत लज्जित हूँ। ये बात कैसे चलाऊं? आप शिकार खेलने के लिए कब जा रहे हैं?
3: मैं फसल की कटाई के बाद मैं मुर्गाबी का शिकार खेलने जाऊंगा, लेकिन अब मैं क्या शिकार खेलूंगा?
1: क्यों?
3: अपने डब्बू को तो आपने देख ही रखा है ना, उस बेजबान की अब टांग भी टूट गई है।
1: ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। मगर उसकी टांग टूट कैसे गई?
3: ठीक से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे डब्बू की टांग किसी कुत्ते ने ही तोड़ी है, क्योंकि कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है, और मेरे डब्बू की टांग क्या टूटी, मुझे यूं लगता है जैसे मेरी ही कमर टूट गई हो। मैंने उसे बड़े लाल प्यार से पाला था, और अब जब मुझे उसकी जरूरत थी वह बेचारा अपाहिज हो गया। भाग्य पर किसी का जोर नहीं चलता।
1: डब्बू आपने लिया किससे था?
3: अजी ये पहले मेरो नोब के पास रहता था, तब ये अभी ढंग से भौंकना

0: भी नहीं सीख पाया था कि इत्तफाक से इस पर मेरी नजर पड़ गई और मैं इस पर अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो गया। उधर मेरोनोव इससे बिछुड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने मेरोनोव के सामने 125 रूबल का ढेर लगा दिया तो वो कुछ न कह सका।
1: 125 रूबल?
0: हाँ, आपको अचंभा हुआ?
1: जी हाँ, इतने में तो हाथी आ जाता।
0: कुमारी निथालिया, मैं इसे हाथी का बच्चा ही समझ कर लाया था।
1: तब आपने कुत्ते के नहीं अपनी समझ के दाम चुकाए थे, नहीं तो मेरे बाबा मेरे लिए कालू 50 रूबल में लाए थे। और हमारा कालू आपके डब्बू से 1000 गुना अच्छा है।
0: मुझे तो इस पर भी संदेह है कि आपको 1000 तक गिनती आती है, नहीं तो आप अपने कालू का मेरे डब्बू से कभी मुकाबला नहीं करती।
1: मुकाबला हो ही कैसे सकता है, शेर का भेड़ से क्या मुकाबला।
0: जी
1: आइवन, हमारा कालू अभी बच्चा है। एक बुरा कुत्ता बनने में उसे कुछ समय लगेगा, लेकिन अब भी हमारे सारे प्रांत में ऐसा कोई कुत्ता नहीं जो जीदारी और फुर्ती में हमारे कालू का सामना कर सके।
0: तो सुन लीजिए कुमारी निथालिया, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कालू का जबड़ा बहुत छोटा है और ऐसे कुत्ते बच्चों की गेंद भी उठाकर नहीं ला सकते।
1: जबड़ा छोटा है?
0: जी,
1: ये बात भी मैंने आज पहली बार सुनी है।
0: विश्वास कीजिए, आपके कालू का निचला जबड़ा उसके ऊपर के जबड़े की अपेक्षा बहुत छोटा है।
1: क्या आपने उसे कभी नाप कर देखा है?
0: मैं अब नाप कर दिखा सकता हूँ, आप उससे अपनी टांग पर कटवाइए। वैसे मैं ये मानता हूँ कि ऐसे कुत्ते जिनके जबड़े छोटे होते हैं वे दौड़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन शिकार पर उनकी पकड़ अच्छी नहीं होती।
1: जरा ये भी फरमाइए, आपका वो लंगड़ा खास का मारा डब्बू
0: जी
1: किस राजघराने में से है, किस कुल का दीपक है?
0: आपको जब जरूरत होगी तो मैं आपको उसका गोत्र तक बता दूंगा, उसकी जन्म कुंडली भी दिखा दूंगा। अभी तो इतना ही सहन कर लीजिए कि डब्बू उस किस्म का कुत्ता है जो अपने मालिक के लिए आर्थिक संकट की स्थिति में समुद्र से मोती निकाल कर ले आते हैं, और आपका वो कालू घर वालों को काटे और चोर के आने पर दुम दबा कर भागे।
1: स्वामी भक्ति की ऐसी परिभाषा केवल आप ही कर सकते हैं, मगर हमारा कालू ऐसा नहीं है।
0: मैं ऐसा नहीं है तो ऐसा वैसा होगा?
1: आप होंगे क्या? आप हैं
0: जी।
1: भला ये भी कोई बात है, पहले हमारे बगीचों को अपना बताया और अब अपने खाद मारे लंगड़े डब्बू को हमारे कालू से बढ़िया बता रहे हैं।
0: अच्छे को तो अच्छा कहा ही जाएगा।
1: लेकिन आप ऐसा कह नहीं रहे, आपका दिल मानता है कि हमारा कालू कुत्तों का बेताज बादशाह है, लेकिन आप फिर भी अपने लंगड़े की शान बघारे चले जा रहे हैं।
0: यही बात तो मैं अपने डब्बू और आपके बारे में भी तो कह सकता हूँ।
1: लेकिन सच क्या है?
0: आप ही कहिए कि आपके कुत्ते का जबड़ा छोटा नहीं?
1: कहाँ छोटा है?
0: छोटा है।
1: नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मेरा बस चले तो मैं आपके डब्बू को कमेटी वालों से गोली लगवा।
0: और मेरा बस चले तो मैं वही गोली।
1: आपको कुत्तों के बारे में इतना ही पता नहीं है कि
0: वो मेरा दिमाग फट रहा है। अब आप चुप हो जाइए।
1: जब तक आप ये ना मानेंगे कि हमारा कालू आपके डब्बू से 1000 गुना बढ़िया है, मैं कभी चुप नहीं
0: हूँ। यही बात है तो बेशक चिल्लाइए, चीखिए, लेकिन मैं आपके उस मरियल कुत्ते की शक्ल के मेमने को कुत्ता नहीं कहूंगा। अगर वो आपकी संगत में कुछ दिन और रह गया तो वो दिन दूर नहीं जब वो बावला हो जाएगा। ओ मेरा कंधा, मेरी आंखें, गणपति।
1: और आपका कुत्ता तो जैसे टांग तोड़वाकर अमर हो गया है और अब उसे कुछ होगा ही नहीं।
0: मैं कहता हूँ खामोश हो जाइए, दुख से मेरा दिल फटा जा रहा है।
1: अब मैं चुप नहीं होंगी।
0: अरे अरे अरे, ये फिर क्या हो रहा है?
1: बाबा बाबा, आप सच सच कहिए, हमारा कालू अच्छा है या इनका लंगड़ा?
0: पहले आप ये बताइए, आपके कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं? पक्षपात किए बिना कहिएगा कि कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं।
2: लेकिन फिर क्या हुआ पता है? हमारे कालू जैसा बढ़िया कुत्ता सारे प्रांत में नहीं।
0: मेरे डब्बू को छोड़कर आप ऐसा दावा जरूर कर सकते हैं?
2: तुम्हारा डब्बू भी बड़ा गुणवान है। उसके कान खड़े और शरीर गठीला है, पिछली टांगे पतली लंबी सुडोल है, लेकिन उसमें दो ऐसी त्रुटियां हैं जिसके कारण उसे कुत्ता कहना एक अच्छी नस्ल के कुत्ते का अपमान करना।
0: देखिए देखिए देखिए, मुझे दिल की बीमारी है, वास्तविकता को झुठलाने की कोशिश न कीजिए। कुत्तों की वार्षिक दौड़ में मेरा डब्बू राजा साहब के कुत्ते के बराबर रहा था और आपका वो कालू दौड़ दौड़ कर पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया।
2: तो बेचारा और क्या करता, दौड़ शुरू होने से पहले राजा साहब के कारिंदे ने उसे हंटर जो मारा था।
0: अरे काश वो उसे गोली मार देता।
2: आइवन, ये भूलो कि तुम्हें दिल की बीमारी है।
0: हाँ।
2: और मुझे गुस्सा बहुत आता है। और गुस्से की हालत में मैं बुरा भला, बल्कि
0: आप अपने कुत्ते की हिमायत में मुझे धमका रहे हैं। अरे मेरा दिल।

0: फिर बड़ा जोर से कांपने लगा। हाय हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल,
1: हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। इस दिल से ये जंगल में शिकार खेलने जाएंगे बाबा। अजी आप, मैं कह रही हूँ रसोई घर में बैठकर मक्खियाँ मारा कीजिए।
2: मक्खियाँ उड़ाने के लिए कहो बेटी, इनका दिल बड़ा कमजोर है। आइवन, मैं तुम्हें जंगल में जाकर शिकार खेलने से रोकता नहीं। जा पता कोई जानवर तुम्हारा शिकार बनने से पहले तुम्हें ही अपना शिकार बना डाले।
3: अरे शिकारी को जानवर अपना शिकार बना ले और जानवर को अपना शिकार मैं बना लूं, ऐसा भी हो सकता है अगर किसी रात आप मेरे साथ जंगल में शिकार खेलने चले।
2: आइवन, मुझसे ऐसी बातें कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
3: जब आप मुझसे ऐसी बातें बड़े गर्व से कहते हैं तो मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए?
2: तुम्हारा तो सर
3: देर ही कितनी ढकती है, लेकिन कारण भी तो बताइए।
2: मूर्ख क्या,
3: और जो स्वयं न समझ सके और दूसरों को समझा न सके उससे तो आप कुछ कहेंगे नहीं।
2: मैं कहता हूँ जहर उगलने से बाद आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा।
3: आप क्या सिर फाड़ेंगे, गलियों में बच्चे तो जानते हैं। अरे मेरी जान, कि आपकी पत्नी भरे बाजार में आपको पीट दिया करती थी।
2: और तुम भी तो अपनी उस नौकरानी से छिपते फिरते हो।
3: डॉक्टर,
2: कमीना, बेशर्म, गधा,
1: घोड़े पर सीढ़ी लगाए और स्वयं को शिकारी कहलवाए। पापा, जरा देखिए तो इन्हें हुआ क्या है। आइवन, आइवन, बाबा, आइवन चले गए।
0: क्या? नितालिया, नितालिया, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया?
2: खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो।
0: मेरा दिल पीट गया।
2: बेटी, तो मेरा एक काम करो।
1: क्या बाबा?
2: मुझे मेरा पिस्तौल ला दो।
1: जाने दीजिए बाबा, अब आप मरे को क्या मारेंगे?
2: अरे बेटी, मैं पिस्तौल अपने लिए मंगवा रहा हूँ।
1: अपने लिए?
2: हाँ, मैं आत्महत्या कर लूंगा।
1: नहीं नहीं नहीं बाबा, नहीं।
2: अरे पिस्तौल नहीं तो मुझे चाकू भी ला दो, मैं अपना गला काट लूंगा।
3: ला दो ना।
0: अरे आइवन तो अभी जिंदा है। आइवन
1: जिंदा है।
0: लो लो, पानी पी लो, पानी पी लो।
3: मैं कहाँ हूँ?
2: तुम जहन्नुम में हो जो तुम्हारे आने से पहले जन्नत थी। हाँ? अब तुम घर से उठ के बैठो और नितालिया से ब्याह कर लो।
3: हाँ? क्या?
2: हाँ पापा, हाँ, नितालिया ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है और वो तुम्हें बहुत चाहती है।
3: क्या सच?
2: चुप चुप। नितालिया बेटी, लाओ अपना हाथ इधर लाओ।
1: पापा।
2: आइवन जी, ये लो, नितालिया का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ और अब तुम लोग मेरा पीछा छोड़ो।
3: ओ बाबा, मैं आपका किस्मत से शुक्रिया अदा करूं। बाबा, मैं बिल्कुल अच्छा हो गया।
2: अच्छा?
3: जी हाँ। तो वो बात क्या थी? मुझे कुछ कुछ तो याद आ रही है।
1: जी, मैं बताऊं? मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
2: और मेरा भी जी का जंजाल कटा।
3: हाँ याद आ गई। ये आपको मानना पड़ेगा कि मेरा डब्बू आपके कालू से कई गुना बढ़िया है।
1: ये कई गुना घटिया है।
3: जी नहीं,
1: ये आपको मानना पड़ेगा।
3: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
1: मैं कहती हूँ घटिया है।
3: जी नहीं, मैं कहता हूँ बढ़िया है। मैं कहता हूँ बढ़िया है।
1: बढ़िया नहीं है, घटिया है।
3: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
2: तुम लोग
3: जी है,
2: मैं ही।

अभी आप सुन रहे थे एंटन चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में सन 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बज चुके हैं और आइए अब शुरू करते हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और हमारा आज का विषय है, मोबाइल खोने पर सबसे पहले आप क्या करेंगे। श्रोताओं नमस्कार, प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा आज का जो टॉपिक है, मोबाइल खोने पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, आज इसी विषय पर हमने अपने प्यारे प्यारे लिसनर्स से बातचीत की है। तो आइए सुनवाते हैं ये पहली कॉल हमारे किस लिसनर की है।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं आप?
1: मैं दर्पण कुमार सैनी, ग्राम एचोरा, तहसील मिलक, जिला रामपुर से बात कर रहा हूं सर।
0: क्या बात है, बहुत स्वागत है दर्पण कुमार जी। बहुत ही सुंदर नाम है आपका, दर्पण कुमार। दर्पण मतलब आईना।
1: जी सर।
0: क्या करते हैं दर्पण कुमार जी?
1: सर मैं लॉ का स्टूडेंट हूं सर।
0: अच्छा, वेरी गुड। तो कौन सा ईयर है?
1: सर 5th सेमेस्टर चालू हो गया सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारा आज का विषय है आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, मोबाइल खोने पर पहले आप क्या करेंगे।
1: सर सबसे पहले मोबाइल खोने पर, सर मैं ये कहना चाहूंगा, मोबाइल खोने पर सबसे पहले सिम कार्ड ब्लॉक करवाना चाहिए, पुलिस शिकायत दर्ज करानी चाहिए और बैंक UPI खाते सुरक्षित करने चाहिए। इससे डाटा का गलत इस्तेमाल रुकता है और वित्तीय धोखाधड़ी का खतरा रुकता है।
0: जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि मोबाइल कभी भी हमारा खोए तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सबसे पहले अपने सिम को ब्लॉक करें ताकि वो हमारे सिम का दुरुपयोग ना कर पाए, है ना। और फिर उसके बाद पुलिस कंप्लेंट करना तो लाजमी है क्योंकि उनके संज्ञान में रहता है कि फला व्यक्ति का मोबाइल खो गया है, ताकि आने वाले कल में कोई ऐसी दुर्घटना हो तो उससे आप सुरक्षित रह पाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप इस प्रोग्राम में?
1: पूरापुर पश्चिम सुनवा, गाने का नाम है पूर्वा सुहानी आई।
0: सुनवाते हैं दर्पण कुमार सैनी जी, फिल्म पूरापुर पश्चिम का ये गीत आपके रेडियो से।

0: सावन का महीना
1: पवन करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर शोर शोर। हाँ, जी आर आर।

श्रोताओं, 100.4 एफएम पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और हमारा आज का विषय है मोबाइल खोने पर सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो ये प्यारा सा कमेंट हमारे पास आया है। आप कहते हैं कि आज का विषय बहुत ही अच्छा है, जब हमारा मोबाइल खो जाए तो सबसे पहले अपना सिम हम निकलवाएं और वही नंबर रखें और साथ में अपनी FIR थाने में दर्ज कराएं, और अगर कोई ईमानदार व्यक्ति अगर आप उसको संपर्क करते हैं फ़ोन लगाने पर, वो अगर आपका मोबाइल दे देता है तो आप उसका शुक्रिया अदा करें, अन्यथा आपको नया मोबाइल तो ख़रीदना ही पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, अगर मिल जाता है तो सुपर गुड, और अगर नहीं मिलता है तो ये सिम को ब्लॉक करें और साथ साथ

0: श्रोताओं, ये कमेंट हमारे पास आया है अनूप सिंह नथावत का, लेकिन इन्होंने अपना पता नहीं लिखा। तो कृपया करके हमारा सभी सुनने वालों से ये अनुरोध है कि आप जब भी कमेंट लिखें तो अपने नाम और पता ज़रूर लिखें। आप कहते हैं कि हर साल चोरी हो रहे हैं, अब तक 10-12 मोबाइल चोरी हुए हैं। 2026 में अप्रैल में चोरी हुए मोबाइल की रिपोर्ट करवाने गया, नहीं सुनते हैं। थाने से कहा ऑनलाइन ई मित्र से करवा सकते हैं, वहाँ साइट बंद हो जाती है। सबसे पहले सिम निकलवाकर दूसरे मोबाइल पर अपनी मेल आईडी से ट्रैक कर सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं। अगर अपनी मेल आईडी से चला रहे हैं नया मोबाइल में, सभी आईडी वही शुरू करें जिससे अपनी आईडी कोई और ना चलाए। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही अनूप सिंह नथावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हेलो,
2: आपकी बात आकाशवाणी के साथ
1: हो रही है, आप कौन साहब बोल रहे हैं?
2: मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से बोल रहा हूँ।
1: क्या बात है लाल मोहम्मद अंसारी जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी शुक्रिया सर, कैसे हैं आप लोग बताइए?
1: सब बढ़िया हैं और आप भी अच्छे होंगे ऐसा हम आशा करते हैं।
2: जी बिल्कुल, हम भी बढ़िया हैं, क्योंकि आज जो है मौसम बहुत खुशगवार है सर, क्योंकि सुबह से ही बादल आ रहे हैं, बादल जा रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई है, लेकिन हवा चल रही है तो मतलब मौसम ने अपना मिजाज बहुत अच्छा किया है
1: जी।
2: और इस खूबसूरत मौसम में जो इस जो कार्यक्रम चल रहा है आपका इसको रेडियो पर, ये बहुत मतलब मजा दे रहा है।
1: क्या बात है, क्या बात है। वैसे तो बारिश सुबह हुई थी और अभी बूंदाबांदी हो रही है, मौसम तो खुशगवार बना हुआ है।
2: करेली की बात करें तो करेली में हल्की बूंदाबांदी के अलावा कुछ भी नहीं है, इसमें बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं।
1: चलिए कोई बात नहीं, ऊपर वाले से दुआ कीजिए, सावन का महीना चल रहा है ना, देर सवेर बारिश हो ही जाएगी, है ना?
2: बिल्कुल, भरोसा तो है, भरोसा करना भी चाहिए। सावन का महीना चल रहा है तो सावन का महीने के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, क्योंकि ये महीना भी अपने आप में बहुत जबरदस्त और बहुत ही मतलब अच्छा माना गया है। और बारिश के मौसम में तो बहुत सारे शायरों ने लिखे सावन के और बारिश के, तो ये बहुत मतलब अच्छा महीना है।
1: जी बिल्कुल, आज का जो हमारा टॉपिक है मोबाइल खोने पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो लाल मोहम्मद अंसारी जी क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
2: सर यही कि मोबाइल एक ऐसी जरूरत की चीज बन गई है, अगर हमारे पास से ये 2 मिनट या 5 मिनट के लिए कहीं लुप्त हो जाए, कहीं गुम हो जाए, तो हमें अपने से ज्यादा मोबाइल की फिक्र होती है। और सबसे पहले अगर हमें कहीं मोबाइल नहीं मिलता है तो सबसे पहले दूसरे नंबर से उस नंबर को लगा के देखते हैं कि घंटी आया है कहाँ पे, है ना? तो वो मिल ही आता है। वैसे तो खैर अभी तक मेरे जीवन में मतलब मोबाइल को लेकर ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि बिल्कुल भी हमेशा के लिए चुड़ गया हो या मतलब खो गया हो। तो बस अगर ना मिलता है तो बस यही चेक अपना लेते हैं कि एक दूसरे से फोन लगा लेते हैं और घंटी बज जाती है, फोन हमारा मिल जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है।
1: अगर ना मिले तो आप उसके लिए क्या करेंगे?
2: वैसे ना मिले तो मतलब जैसे खासतौर से घर नहीं है और ना मिल रहा है तो इसको ढूंढा खोड़ी की जाएगी। और वैसे अगर ना मिले मतलब वास्तव में कोई चुर गया हो या किसी ने गुम कर दिया हो तो सबसे पहले उसकी थाने में जाके FIR करानी चाहिए और उसकी रिपोर्ट देनी चाहिए, ताकि कोई इसके आपकी घटना होती है तो उससे हमारा बचाव हो सके।
1: और साथ साथ सिम को भी ब्लॉक करवाना बहुत जरूरी होता है।
2: जी, सब उसके ऑफिस में जाए, अपना सिम ब्लॉक कराए और अपने आप को सेव कर रहे उसमें, ताकि कोई भी दिक्कत आपको कोई परेशानी ना हो सके।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लाल मोहम्मद अंसारी जी आपने कही कि जैसे कि हमारे बहुत सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स मोबाइल के अंदर होते हैं, क्योंकि मोबाइल आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है और उसके गुम हो जाने पर या खो जाने पर या चोरी हो जाने पर हमें बड़ा अजीब सा महसूस होता है। तो कोशिश करें कि जितने भी क्योंकि आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको सबसे पहले आप सिम को ब्लॉक करवाएं, पुलिस में कंप्लेंट करें, है ना लाल मोहम्मद?
2: बिल्कुल यही बेहतर है, क्योंकि सुरक्षा बहुत बड़ी चीज है, सुरक्षा हम ऐसे ही कर सकते हैं, ब्लॉक कराएं और अपने आप को सेफ करें।
1: जी बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत आज आप सुनेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से?
2: जी आज गाना सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम है ईमान बेईमान, का गीत है, मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखते, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकलना जाए, ये गीत सुनवा
1: सुनवा देते हैं आपको जी।

0: श्रोताओं 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और ये कमेंट हमारे पास आया है गंगा सिंह रावत का रामपुर रोड हल्द्वानी से। मोबाइल खोने पर उसका दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए मोबाइल खोने पर सबसे पहले हम पास के पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करेंगे और उसके बाद मोबाइल कंपनी को सिम को लॉक करने के लिए बोल देंगे ताकि मोबाइल के डाटा का दुरुपयोग रोका जा सके। जी बहुत अच्छी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी मोहन सिंह रावत जी, गंगा सिंह रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते हैं कि अब ये हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो,
1: हेलो
0: जी, कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: दिल के जख्मों को छुपाना सीख लिया, रोते हुए मुस्कुराना सीख लिया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के छोड़ जाने से, हमने तो तन्हाइयों में भी बस बिताना सीख लिया।
0: क्या बात है, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है।
1: सर सबसे पहले आपको प्यार भरा नमस्कार। मैं ग्राम पोस्ट वक्तेना डिस्ट्रिक्ट बदायूं तहसील दासागंज से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ। सर आपको एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। और आपकी आवाज़ में जो मिठास है,
1: आकाशवाणी बरेली को सुन सुनकर हमारी आवाज में ये थोड़ी सी मिठास आ गई कि जो आप लोगों की इतनी अच्छी आवाज है, जो हम सुनते हैं तो हमारी भी वैसी होने लगी है।
0: क्या बात, क्या क्या करते हैं विमल ठाकुर साहब आप?
1: इस समय तो सर मैं हरिद्वार में ही आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, अपनी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो आज मेरा रेस्ट रहता है, तो मैं इसी रेस्ट के मतलब समय में आज मैंने फोन लगाया और साथ ही आज का प्रोग्राम भी सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, आपका फोन भी लग गया, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपसे बातचीत हो रही है और आप हमारे परमानेंट लिसनर हैं, सारे ही प्रोग्राम आप हमारे सुनते हैं। विमल ठाकुर जी, आज का हमारा जो विषय है मोबाइल खोने पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: सबसे पहले तो अगर हमारा मोबाइल खो जा रहा है तो सबसे पहले हमें सिम को ब्लॉक करा देना चाहिए और साथ ही पुलिस में शिकायत कर देना चाहिए और उसके बाद एक सरकार द्वारा PEIR पोर्टल पर फोन को भी ब्लॉक करा सकते हैं।
0: जो मोबाइल का IMEI नंबर जो होता है,
1: उस नंबर पे आप कॉल करके और मोबाइल को भी ब्लॉक करा सकते हैं।
0: जी जी, क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके विमल ठाकुर जी। कौन सा गीत सुन लेंगे आज आप?
1: आज जब आपके खूबसूरत आवाज हरिद्वार में भी इस फोन के माध्यम से और आकाशवाणी बरेली के माध्यम से गूंजेगी तो मूवी का नाम रहेगा यादों का मौसम और इसमें बेहतरीन संगीत उससे बिछड़ कर जिंदा है जान बहुत शर्मिंदा, ये सॉन्ग सुनवा दीजिएगा।
0: सुनवाते हैं विमल ठाकुर साहब आपको ये गीत हरिद्वार में।

और ये कमेंट हमारे पास आया है हररपुर मटकली से शाहरुन नूर अंसारी। मोबाइल खो जाने पर केवल एक वस्तु का खोना नहीं होता, बल्कि उससे जुड़ी हमारी यादें, संपर्क और निजी जानकारी भी जोखिम में पड़ सकती है। इसलिए घबराने के बजाय समझदारी से काम लेना सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले अपने मोबाइल पर कॉल करें, यदि कोई ईमानदार व्यक्ति उसे पता है तो वो लौटाने की कोशिश कर सकता है, और यदि मोबाइल ना मिले तो तुरंत अपने सिम कार्ड को ब्लॉक कराएं, अपने महत्वपूर्ण अकाउंटों के पासवर्ड बदलें, और यदि संभव हो तो मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करें या उसका डेटा दूर से लॉक मिटा दें। इसके बाद नज़दीकी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएं। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई शाहरुन अंसारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से, सैयद यूनुस और सैयद नोमान। आप कहते हैं कि मोबाइल खो गया तो सबसे पहले मैं नज़दीक के पुलिस स्टेशन पर जाऊंगा, मेरी कंप्लेंट दर्ज कराऊंगा। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है ये कि कभी भी इस तरह की अगर घटना हो जाए तो पुलिस कंप्लेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ साथ जिस कंपनी का आपका नंबर है तो उस नंबर को भी ब्लॉक ज़रूर करवाएं। और ये कमेंट हमें भेजा है प्रवीण चौहान ने, लेकिन ये कहाँ से भेजा है, ये कभी भी अपना पता लिख करके नहीं भेजते, तो हम आपसे फिलहाल पुनः निवेदन करते हैं कि आप अपना पता ज़रूर लिखें कमेंट में। आप कहते हैं कि फ़ोन खोने पर सबसे पहले तुरंत सिम ब्लॉक करवाएंगे, पुलिस में शिकायत दर्ज करेंगे, फिर जिस टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी की सिम थी उसी के कस्टमर केयर ऑफिस जाकर उसी नंबर की नई सिम निकलवाएंगे और भारत सरकार के CIER पोर्टल पर फ़ोन ब्लॉक करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन डिटेल्स जैसे IMEI नंबर, कंपनी, मॉडल नंबर डालकर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। फिर

0: किसी दूसरे डिवाइस से अपनी सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स और ज़रूरी ऐप के सभी पासवर्ड बदलेंगे। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। और ये कमेंट हमारे पास आया है रामबाबू मिश्रा और कृष्णा देवी का, ग्राम पोस्ट गोठा खंडुआ से। आप कहते हैं कि प्रोग्राम प्रस्तुतकर्ताओं को नमस्कार, आपको भी हमारा नमस्कार। पहली बात तो आपने अपने मोबाइल में जो लॉक लगाया है उसको सार्वजनिक नहीं करें, और मोबाइल खोने पर सबसे पहले हमको सिम ब्लॉक करानी चाहिए, उसके बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर मोबाइल खोने की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, और FIR की कॉपी भी ले लेनी चाहिए, जो कि वक्त पड़ने पर काम आएगी। जी बहुत धन्यवाद आपका। और देखते हैं कि ये हमारे अगले कॉलर कौन है।
1: जी नमस्ते।

0: अगले कॉलर कौन है?
1: नमस्ते सर।
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी सर, मेरा नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर का जिला बाराबंकी से बात कर रहे हैं।
0: बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। आज का हमारा विषय है मोबाइल खोने पर सबसे पहले आप क्या करेंगे?
1: जी सर, मोबाइल खोने के से पहले हम मतलब थाने में जाएंगे, पुलिस में कंप्लेन लिखवाएंगे, उसके बाद में जो है हम यहाँ नंबर ब्लॉक करवाएंगे सर।
0: जी जी,
1: ताकि कोई भी दुर्घटना आगे चल के हो न पाए सर।
0: जी बिल्कुल,
1: हम यही कहना चाहेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि कभी भी मोबाइल खो जाए तो नंबर को ब्लॉक करवाएं और पुलिस कंप्लेंट जरूर करवाएं, ताकि किसी तरह की मिस हैपनिंग आपके साथ ना हो, है ना। और क्योंकि मोबाइल वैसे हमारी जरूरत है, कोशिश करें कि मोबाइल को बड़ी सावधानी से रखें, कभी भी इस तरह की दिक्कत हमारे साथ ना आए, और हो जाती है तो तुरंत इसकी कंप्लेंट हम करेंगे, ठीक है। और साथ ही CIR जो पोर्टल होता है उस पर IMEI जाकर उस पर ब्लॉक करवाएं, ठीक है। चलिए, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: जी सर, फिल्म का नाम है धड़कन, उसमें का सॉन्ग है नाना करके प्यार, मेरी भराई भराई।
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: सोमवार को व्रत तो रखते ही होंगे आप।
1: हाँ सोमवार को व्रत रख लेते हैं, बस अब जो अभी भोलेनाथ के दिन चलना है
0: जी,
1: जरूर ऊपर रखा जाता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं आप।
1: पूजा पत्री बहुत करी जाती है, शंकर बोले दिन उनका बेल पत्री कराना है और उनको प्रसाद कराना है, तब ये उनको करा जाता है।
0: तो कहाँ करते हैं, घर पे करते हैं या मंदिर वगैरह में जाते हैं आप?
1: हमारे इधर मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर है हमारे पीछे, अस्पताल के सामने है
0: जी,
1: वहाँ चले जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छे दिन है ये, बड़ा पवित्र महीना है।
1: अलगनाथ चले जाते हैं साहब जी।
0: हाँ नहीं अच्छी बात है, कहीं पर भी जाएं आप, श्रद्धा मन के अंदर होना चाहिए। अच्छा हमारा आज का जो विषय है, मोबाइल खोने पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे?
1: तो पहले तो उनको लिए चाबी का तलाश करेंगे, अगर हमारा किसी ने अगर ले लिया है तो है तलाश करेंगे, अगर घर ना मिले तो उसकी फौरन कंप्लेंट करेंगे, उससे हम कर सकते हैं।
0: और साथ में सिम को भी ब्लॉक कराएंगे, है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर हमारा मोबाइल खो गया है या कहीं चुर गया है तो सबसे पहले हम उसको अपने नंबर पर फोन लगा करके देखेंगे, अगर नंबर स्विच ऑफ जाता है ना तो हम
1: अगर मिल जाता कोई दिक्कत नहीं, अगर ना मिले तो फौरन कंप्लेंट करें और उसके लिए अपनी जो है अपनी
0: जी जी बिल्कुल। बड़ा अच्छा बात आपने बताई राम प्रसाद शर्मा जी। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप इस प्रोग्राम में?
1: सीता जी का सुना, हवा के साथ साथ लड़ाके।
0: चलिए चलिए सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: और श्रोताओं, ये कमेंट हमारे पास आया है जमुना प्रसाद मौर्य का, कटर चांदा खां पुराना शहर बरेली से। आप कहते हैं कि आज का सवाल बहुत ही अच्छा है, हमारा मोबाइल कहीं गिर जाए या खो जाए तो सबसे पहले अपने नंबर पर कॉल करें, अगर कोई सही व्यक्ति होगा तो कॉल उठाकर ये फ़ोन आपका है क्या तो फ़ोन वापस कर सकता है, और अगर फ़ोन नहीं उठाता है तो सबसे पहले पुलिस चौकी में रिपोर्ट करें, फिर इस नंबर का दूसरा सिम निकलवाएं और वो सिम बंद कराएं। जी बहुत धन्यवाद आपका। और ये कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, आइए करते हैं इनसे बातचीत। हाँ, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं रामपुर साहब फरौला तरफ से कॉल
0: किया। क्या बात है रामपुर साहब शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है प्रोग्राम में, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया साहब, कृपा साहब मालिक
0: का सावन का महीना शुरू हो गया है तो

0: ये कमेंट हमारे पास आया तहसील मिलक ग्राम एचोरा जिला रामपुर से सखावत हुसैन मंसूरी का। आप कहते हैं कि मोबाइल खो जाने पर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करें और सिम लॉक करवा दें। जी बिल्कुल। बुलंदशहर से उमेश कुमार कौर कहते हैं कि गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। और आप ये कार्यक्रम के आखिरी कॉलर देखते हैं कि कौन है इस वक्त।
1: जी भैया नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी भैया योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है, छत्तीसगढ़ से इतनी दूर से आपने फोन किया है, पहली बार आपका कॉल लगा है?
1: नहीं भैया, लगभग इस कार्यक्रम में ये मेरा पांचवा फोन कॉल।
0: अच्छा लगता है आपको ये कार्यक्रम है?
1: हाँ जी, टॉपिक में बात करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखा।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रत्येक दिन हमारा कोई नया टॉपिक रहता है ताकि हमारे श्रोता जो है वो आसानी से उसका जवाब भी दे दें और उनको भी अच्छा लगे और साथ में उनकी फरमाइश भी हम पूरी करते हैं ना। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा जेन्युइन टॉपिक है कि मोबाइल खोने पर सबसे पहले आप क्या करेंगे। देखिए मोबाइल हमारी जरूरत है आज की डेट में, है ना?
1: बहुत ज्यादा जरूरत है भैया, कई प्राइवेट चीजें रहती हैं उसमें।
0: जी
1: तो सबसे पहले शुरुआती कदम तो मेरे हिसाब से भैया नजदीकी

0: शिकायत दर्ज कराया जा सका है और
1: जी
0: जितना जल्दी हो सके सिम को अपन बंद करा या ब्लॉक करा सके।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि बहुत सारे बैंक वगैरह के भी उसमें डिटेल्स होते हैं, UPI वगैरह होते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है सेफ्टी, तो जितना जल्दी हो सके सिम को ब्लॉक करवाना ज्यादा सही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही योगेश जी कि पुलिस कंप्लेंट करें और सिम को ब्लॉक करवाएं, और क्योंकि बहुत सारी हमारी जरूरत की चीजें जो हैं वो मोबाइल के अंदर ही होती हैं, तो कोई इसका मिसयूज ना करे, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि ये हम सारी चीजों को ब्लॉक करवा लें, है ना। बड़ा अच्छा लगा योगेश जी आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप इस प्रोग्राम में?
0: फिल्म साजन से सुनवा देंगे, तुमसे मिलने मनना।
1: सुनवाते हैं आपको ये गीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

श्रोताओं, ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आप भी हमारे अगर इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा फोन नंबर आप नोट कर लीजिए। हमारा फोन नंबर है 0581251720। फोन नंबर एक बार पुनः नोट कर लें, 0581251720। साथियों, इसी के साथ प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ से हमें दीजिए इजाजत, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। शाम के ठीक 5 बजे हैं और ये समय है कार्यक्रम विवरण का। तो श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी इस सभा के शेष और कल की सभा में हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज रात 8 बजे आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। आज शाम 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम किसानवाणी, इसमें आज की बात होगी कैचदा रेन। आकाशवाणी गांव में किसान के साथ, विषय रहेगा कैचदा रेन अभियान पर ग्रामीणों से बातचीत। साथ ही होगा बाजार भाव, मौसम, कृषि समाचार, सवाल और नसीहत और साथ में लोकगीत। आज शाम 7 बजे हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत, इसमें चर्चा रहेगी बरसात में रखें स्वास्थ्य का ध्यान और साथ ही चर्चा होगी स्तनपान का महत्व और लोकगीत भी हम आपको सुनवाएंगे और साथ साथ ओबीवी इस प्रोग्राम में आप सुन सकेंगे। फोन इन कार्यक्रम हेलो बरेली, जी हाँ श्रोताओं, आप सुनेंगे आज शाम 5:30 पर। पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे आज शाम 7:31 पर। और अब से कुछ ही देर में यानी 5:05 पर आप आनंद लेंगे भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या में। शाम 6 बजे हमारे युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी, कुछ खास है आज, पुरुषोत्तम दास टंडन की आज जयंती है और साथ ही लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि है, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही होगा डांस बरेली डांस और ओबी और प्यारे प्यारे गीत। श्रोताओं, एक नजर कल की सभा में हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर, इसमें ज्ञान की बात, अच्छे संस्कार जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, बाल मन के अंतर्गत मेरी सबसे प्यारी किताब या कहानी, फोन इन प्रोग्राम ओबी पर आधारित होगा ये। और साथ ही होगा कि आप जानते हैं कि अंतर्गत इंद्रधनुष कैसे बनता है, सवाल हमारे जवाब आपके और साथ में बच्चे सुन सकेंगे बाल गीत। प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग आप सुनेंगे कल प्रातः 8:45 पर। आपका पत्र मिला, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 11 बजे। प्रस्तुति रहेगी गौरव सक्सेना की और प्रस्तुति सहयोग गजेंद्र सिंह का। आपकी पसंद, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 10 बजे। पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे कल दोपहर 1 बजे। रसरंग में आप गजल, कव्वाली और लोकगीत सुनेंगे कल दोपहर 2 बजे। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 9 बजे और दोपहर में 2:30 पर और रात्रि 9 बजे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कल शाम आपकी बात आकाशवाणी के साथ आप सुनेंगे शाम 4 बजे से।

श्रोताओं मनभावन कल आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। श्रोता मंच का समय रहेगा कल शाम 5:45 पर। सेहतनामा में भेंट वार्ता आपको सुनवाएंगे कल शाम 7 बजे। और शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जनमंच, खेती से आय एवं वर्षा जल संरक्षण। प्रतिभागी होंगे तोताराम, गणेश डालचंद, संचालन करेंगे मिथिलेश श्रीवास्तव। कार्यक्रम ग्राम जगत आप सुनेंगे कल शाम 6:30 पर। चर्चा होगी अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु सुविधाएं, साथ ही एक भेंटवार्ता और लोक मंजरी। युवाणी कल शाम 6 बजे, इसमें कुछ खास है आज फ्रेंडशिप डे, और साथ ही जयंती होगी पुरुषोत्तम दास टंडन की, ओबी और हेलो फ्रेंड्स। कल शाम 5:05 पर आप सुनेंगे भजन संध्या, और रात्रि 8 बजे से आप सुन सकेंगे आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। तो श्रोताओं ये तो थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी हमारी आज।

की सभा और कल की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं स्वदेशी 104 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 5:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भजन संध्या में कुछ प्यारे प्यारे भजन। तो ये पहला भजन अनुप जलोटा के स्वर में।

0: श्रोताओं, ये भजन आपने सुना अनुपजलोटाबाद साथियों के स्वर में। और भी आपको हम भजन सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हमारे श्रोता सुन रहे हैं इस वक्त भजन संध्या 100.4 FM पर। श्रोताओं, आपका पत्र मिला लकी 3 और मनभावन के कमेंट हमारे आकाशवाणी वर्ली के व्हाट्सएप नंबर 9457395859 पर भी आप भेज सकते हैं। नंबर हमारा एक बार पुनः नोट कर लें, 9457395859 पर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भजन संध्या। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये प्यारा सा भजन।

FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल

0: हमारी ईमेल आईडी है airbareilly@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareilly@gmail.com।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भजन संध्या 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं अनुप बिलोटा के स्वर में ये भजन।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भजन संध्या। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं और आइए अब सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो बरेली शीशपाल के साथ।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम हेलो बरेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरू करते हैं आपके फोन कॉल्स का सिलसिला। हेलो बरेली।
2: हाँ जी, हेलो बरेली
1: जी, हमारे कौन से श्रोता हमसे बात कर रहे हैं?
2: मैं बरेली जंक्शन से गरीब भाई बात कर रहा हूँ आपसे सर।
1: जी गरीब भाई, क्या हाल चाल है आपके?
2: बहुत बढ़िया है, मैं इस समय किले के पुल पर खड़ा हुआ हूँ, किले का नजारा देख रहा हूँ। सावन अच्छा। का महीना है, बड़ा सुहाना महीना है, बड़ा सब तरफ हरियाली हरियाली है
1: जी,
2: और बड़ा आनंद ले रहा हूँ सावन का।
1: बिल्कुल आनंद लेते रहिए और अपने आप को सुरक्षित भी रहिए, मतलब
2: सुरक्षित।
1: हाँ,
2: आप सबको ध्यान रखता हूँ मैं सर
1: जी, बहुत जरूरी है। और मौसम कैसा हो रहा है?
2: बरेली से बहुत जानकारियाँ मिलती हैं, सब कुछ जानकारियों को साझा करते हैं हम
1: जी।
2: जी
1: बिल्कुल, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, सभी जानते हैं आपको। और बताइए कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है इन दिनों?
2: कार्यक्रम तो मुझे सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन एक कार्यक्रम आजकल आपके केंद्र से चल रहा है आकाशवाणी की बात आपके साथ
1: जी।
2: इसमें नए नए विषय रखे जाते हैं और एक विषय मैंने भी दिया दोस्ती का।
1: अच्छा।
2: सारे रिश्ते हमें विरासत में मिलते हैं लेकिन दोस्त हमें चुनना पड़ता है
1: जी।
2: तो हम दोस्त चुनते समय इस बात का ध्यान रखें कि दोस्त कैसा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: अच्छा दोस्त हम किसे कह सकते हैं
1: जी। बिल्कुल, हमें अपने दोस्तों का
2: ध्यान रहे तो आप रखिए
1: जी।
2: जी
1: जरूर। और कार्यक्रम हेलो बरेली
2: आज का कार्यक्रम हमने सुना आपका, नमस्ते बरेली, बीना मिश्रा जी से बातचीत हुई, आंगनवाड़ी बीना मिश्रा जी है कोई
1: जी,
2: उनसे बातचीत हुई, सब मतलब स्तनपान के बारे में बताया गया कि बच्चे का जन्म होने के 1 घंटे बाद उसको दूध खिलाया जाए
1: जी।
2: तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी है हमें, और रोड के बारे में बताया, डायविजन हुए हैं
1: जी,
2: और बरेली का हाल बताया, बहुत कुछ अच्छा, और गाना एक बजाया भोलेनाथ का
1: जी,
2: बहुत दिल खुश हो गया
1: जी। बिल्कुल, और हमारी कोशिश यही रहती है कि अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, सभी श्रोताओं तक पहुंचाई जाए। और
2: आपके कार्यक्रम की जितनी तारीफ की जाए कम है।
1: धन्यवाद गरीब भाई, आज आपका फोन कार्यक्रम हेलो बरेली में लग चुका है, तो बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएंगे हमारे सभी श्रोताओं को आप?
2: तो मैं गाना सुनाऊंगा, सावन का महीना चल रहा है
1: जी,
2: तो वो गाना है सावन का महीना पवन करे शोर,
1: बहुत सुंदर गीत,
2: बनवाना के मोर,
1: बहुत सुंदर गीत आपने चुना है। और गरीब भाई सुनिए अपने साथियों के साथ अपनी पसंद का ये गीत।
2: नमस्कार।

0: करे शोर।
1: करे
0: अरे
1: शोर,
0: बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। हाँ जिया रा।

0: कार्यक्रम हेलो बरेली में आपका बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं?
1: जी नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी।
1: जी मैं जिला बरेली थाना मीरगंज पोस्टो रोड ग्राम रसूलपुर इमामबाड़े के पास से अल्ताफ हुसैन अंसारी बात कर रहा हूँ।
0: अल्ताफ हुसैन अंसारी जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बस एकदम बहुत ठीक है। और आप आकाशवाणी परिवार में लोग कैसे हैं?
0: सब लोग बहुत अच्छे हैं अल्ताफ हुसैन जी। आप बताइए अपने बारे में, क्या चल रहा है आजकल?
1: बस आजकल बस ठंडा मौसम हो गया और थोड़ी बरसात हो रही है सुबह से।
0: हाँ, तो बरसात का आनंद लीजिए,
1: मजा ले रहे हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो रही है।
0: हाँ, सावन का महीना होता ही ऐसा है जी। और सावन का आनंद लेते रहिए, हरियाली को देखते रहिए और आकाशवाणी बरेली भी सुनते रहिए। और अब बताइए अपनी पसंद का गीत जो आप सुनने वाले हैं आज।
1: जी सर, आज फिल्म है मजबूर
0: जी,
1: और गाने के बोल हैं मेरे सनम तेरे सर की कसम मैं तेरा हो गया।
0: ठीक है अल्ताफ हुसैन जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू सर।
0: वेलकम।

0: हेलो बरेली
1: हेलो बरेली
0: जी, कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं अनोखीलाल मौर्य बोल रहा हूँ, खड़ा चंगा पुराना सर बरेली।
0: अनोखीलाल जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया सर।
0: रेडियो सुन पा रहे हैं आजकल?
1: जी, बराबर सुन रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक।
0: तो?
1: आज सुबह आपको नमस्ते बरेली कार्यक्रम सुना, बहुत ही अच्छा लगा।
0: अच्छा, धन्यवाद।
1: कांवरियों के बारे में जानकारी दी, बहुत ही अच्छी लगी।
0: जी धन्यवाद, आप इतना मन लगा के सुनते हैं। और आज आपका फोन कार्यक्रम हेलो बरेली में लगा है, तो बताइए कौन सा गीत सुनवाया जाए आपको?
1: कोई भी गीत सावन को सुनवा दीजिए।
0: सावन का
1: कोई भी गीत सुनवा दीजिए। बढ़िया,
0: ठीक है अनोखे लाल जी, आपको सुनवाते हैं हम सावन का ये गीत।

0: हेलो बरेली जी,
1: हाँ हेलो बरेली,
0: कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: मैं मोहल्ला तलैया उड़ला जागीर से फैजी भाई बात कर रहे हूँ।
0: फजुद्दीन भाई, क्या हाल चाल है आपके?
1: बहुत बढ़िया हाल चाल भाई साहब, अपनी सुनाओ।
0: बस सब बढ़िया है। क्या चल रहा है आजकल?
1: कुछ नहीं, चल रहा बैठे मैं भैया, अपने खिलाफ हेलो बरेली का नंबर है लगा मुझे।
0: बिल्कुल जरूर, आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं और आपका फोन कई बार लगता रहता है ना? और बताइए फजुद्दीन भाई, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज?
1: गाना सुनना, ऐसे तेरी याद आती जैसे जान मेरी जाती है।
0: ऐसे तेरी याद आती है जैसे जान मेरी जाती है।
1: नाम बोलना चाहता हूँ
0: जी, बताइए।
1: बोलना जागीर से सहरा बानो और अफसर खां और आलमपुर से जायद सलमानी।
0: ठीक है फजुद्दीन भाई, आप अपने साथियों के साथ सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: नमस्कार साहब।
0: नमस्कार।

0: हेलो बरेली।
1: हेलो बरेली, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: मैं रामपुर से बोल रहा हूँ। रामपुर के पास में सरकड़ा
0: जी। राम भरोसे जी, क्या हाल चाल है आपके? अपने बारे में बताइए कुछ, क्या चल रहा है?
1: हाल चाल हमारे बढ़िया है, ठीक ठाक है। आप बताइए, आकाशवाणी के बरेली परिवार में ठीक है?
0: हाँ, यहाँ पर सब लोग ठीक है। और क्या करते हैं राम भरोसे जी?
1: हम खेती किसानी करते हैं सर।
0: तो क्या लगाया है खेती में अभी?
1: खेती में समय है, गन्ना है और धान है, करीब 15-20 बीघा करीब।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी बात
1: है। है जी। गन्ना है इस समय 6-7 बीघा गन्ना है।
0: फसल कैसी हो रही है?
1: फसल तो इस समय ठीक हो रही है।
0: अच्छा, और बारिश के बारे में क्या विचार है आपके, कैसी हो रही है बारिश?
1: बारिश तो इस समय ठीक ठाक हो रही है सर।
0: तो पानी लगाने की जरूरत है कि नहीं?
1: पानी की तो कोई जरूरत नहीं है।
0: अच्छा,
1: इस समय बारिश सही हो रही है। अभी धान को पानी लगाया था
0: जी। बहुत अच्छी बात है राम भरोसे जी, और आपका फोन कार्यक्रम हेलो बरेली में लगा है। तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज?
1: ओ सवेरे मेरे दुश्मन जरा होशियार हो जा।
0: ठीक है राम भरोसे जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: तो नाम दे दूं मैं?
0: हाँ जी बताइए।
1: सुनील दोस्त है, चन्ना है, रवि है, हमारे भैया है जमुना प्रसाद
0: जी
1: और मनोज है, ये सारे सब दोस्त मिलकर गाना सुनना चाहते हैं।
0: बिल्कुल, आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुनिए अपनी पसंद का ये।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम हेलो बरेली अब यहीं संपन्न होता है। और यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप प्रत्येक शनिवार को हमें फोन कर सकते हैं 9:05 से, और हमारा फोन नंबर है 2517200। और अब दीजिए हमें कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो बरेली शीशपाल के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। लीजिए अब पेश है युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी आबिदा के साथ।

हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपना खूब खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, आपकी रेडियो हम सफर आबिदा फातिमा, लेकर आ चुकी हूँ आपका और मेरा फेवरेट प्रोग्राम युववाणी, जिसमें हम करते हैं आपसे ढेर सारी गुफ्तगू और सुनवाते हैं कुछ खूबसूरत नगमे भी। तो साथियों, आज भी मैं आपसे बातें बहुत सारी करने वाली हूँ और आपको जानकारी भी देने वाली हूँ, लेकिन आइए उससे पहले एंजॉय करते हैं इस सॉन्ग को।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 100.4 FM पर आकाशवाणी बरेली, और मैं हूं आपकी दोस्त आबिदा फातिमा। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने हिंदी भाषा के सम्मान और उसके प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जी हाँ साथियों, आज है जयंती पुरुषोत्तम दास टंडन की। पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म 1 अगस्त 1882 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। वो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, वकील और हिंदी के प्रबल समर्थक थे। आजादी के आंदोलन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी हिंदी भाषा के प्रति उनका समर्पण। वो चाहते थे कि हिंदी को देश में सम्मान और मजबूत स्थान मिले और आम लोग अपनी भाषा में अपनी बात आसानी से रख सकें। हिंदी के प्रति उनके योगदान को देखते हुए उन्हें राजश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। साल 1961 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। तो आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हुए ये याद रखें कि भाषा सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं, बल्कि साथियों हमारी संस्कृति, पहचान और विरासत का भी हिस्सा है। और आइए अभी फिलहाल एंजॉय करते हैं इस सॉन्ग को।

आप बनी हुई अपनी दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम युवाणी। और साथियों, आज हम भारत के उस महान स्वतंत्रता सेनानी को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए देशवासियों में आजादी की एक नई उमंग जगाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। वो एक राष्ट्रवादी नेता, शिक्षक, पत्रकार और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने अखबार केसरी और अन्य अखबारों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम किया। उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस एक विचार ने देशवासियों के अंदर स्वराज की भावना को और मजबूत किया। तिलक जी ने गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती को भी जन जागरूकता और लोगों को एकजुट करने के माध्यम के रूप में लोकप्रिय बनाया। जी हाँ साथियों, इतना ही नहीं, अंग्रेज हुकूमत ने उन्हें कई बार जेल भेजा, लेकिन उनका जो हौसला था वो कभी नहीं टूटा। भारत की आजादी के संघर्ष में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं और उनके देशभक्ति, साहस और स्वराज के सपनों को याद करते हैं। और आइए उनकी याद में सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप बने हुए अपनी दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी। और साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, आज सैटरडे है और सैटरडे में हमारा सेगमेंट डांस बरेली डांस होता है। तो आइए डांस बरेली डांस सेगमेंट में सुन लेते हैं ये डांस वाला सॉन्ग।

और अब साथियों प्रोग्राम में वक्त है आज के सवाल का। और सवाल हमने आपसे पूछा है कि फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 के फाइनल में स्पेन ने किसे हराया, और इसका सही उत्तर है, जी हाँ बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं, इसका सही उत्तर है अर्जेंटीना। और सही उत्तर देने वालों में नाम शामिल हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, उत्तम सिंह जाघेल, विष्णु, सुदर्शन शाह, संजय ढींगिया, जॉन डी कैस्ट्रो, दिनेश वर्मा, हीरा मणि, समीर सैफी, गंगा सिंह रावत, राम कुमार रेवार, राजवीर सिंह, राजकुमार, उमेश कुमार गौड़, राजेश वर्मा, मोहम्मद यासीन, ओम गायकवाड़, नवी हसन अब्बासी, सिद्धार्थ अनोखे लाल और हमारे अन्य सभी साथी। तो हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा अपने प्यारे प्यारे पत्रों के माध्यम से। हमारा पता है वाणी विभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, हमारा पिन कोड नंबर है 243001। और अब दीजिए इजाजत इस उम्मीद के साथ कि कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी आबिदा के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 104.4 FM पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
2: पुतला बोल रहे हैं।
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी। अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है
1: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: गांव की मिट्टी में पले बड़े मेहनत की रोटी खान बारे और किसान बाड़ी कार्यक्रम सुनन बारे सब भैया बहनन को आपके भैया सुरेंद्र
5: और आपके भैया धारा की
4: राम राम
5: स्वागत है। भैया बहनों आप सब लोगों को आपके पसंदीदा कार्यक्रम किसान बाड़ी में और सुरेंद्र भैया देखो हल्की हल्की बूंदाबांदी और खेतों में जो खड़े हैं धान उनकी निराई कर रहे किसान भाई उन सभी के चेहरे खिले हुए हैं।
4: क्योंकि भैया ऐसे हो ना इस समय अगर बरसात होत रहे तो खेतियों को नजारों हो बदल जाता है और जो हमारे किसान भैया बहन है ना उनके चेहरा पर जो मुस्कान आ जाती है। अभी आपने देखी दो तीन दिन बरसात रहे भाई।
5: हाँ भैया
4: तो उनके चेहरा पर हर किसी सेकंड से महसूस ही गई कि हमारे खेत में भैया दर्रा ना पड़े।
5: हाँ और जब जुगाड़ करने लग रही है भैया अब पानी कैसे लगाए पंपिंग सेट से लगावे या फिर भैया नहर को पानी आ जाए।
4: हाँ
5: तो ये सब बातें हैं भैया। देखिए अगर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है तो हमारे भैया बहनों के चेहरे खिले हुए हैं और सुरेंद्र भैया देखो इस समय की जो हल्की बूंदाबांदी है और जो बरसात हो रही है वो हमारे गन्ने की फसल जो खड़ी हुई खेतों में उसके लिए भी बहुत अच्छी है। खरपतवार निकाल लें और बहुत जल्दी समय रहते जो खाद की शेष मात्रा बची हुई है वो अपने खेतों में दे दें और आगे आने वाले समय में भैया अपने खेतों की मिट्टी चढ़ाई और जो है उनको काम जो होने वालों वो कर लें।
4: गन्ना की बात भैया आपने बकरी हमारे किसान भैया बहन धान लगाए के फिर ही गया धान में ज्यादा काम ना है उनके तो वे सब गन्ना में डट गए क्योंकि इस बारिश की हल्की हल्की बूंद की बारिश में गन्ना में जो घास को काम उखड़न को निराई को होता है पत्ती काटने काम होता है वो बड़ा अच्छा जाता है गर्मी ना लगती है।
5: अच्छा भैया देखो बातचीत तो हम लोग करेंगे और आज दिन है शनिवार को और जिन भैया से गांव में पहुंच करके बात हुई है वो भी हम लोगों को पहुंचा देंगे है ना। लेकिन हमारे कार्यक्रम की जो एक परंपरा पड़ी हुई है कि हम अपने भैया बहन से एक सवाल पूछे तो और उसका जवाब किसान भाई सोशल मीडिया के माध्यम से देते हैं और हम उसका जवाब भी मिलान कराते हैं। तो आज का सवाल कौन सा है
4: भैया? आज को सवाल है जैसे आपने आगे बूंदन की बारिश की बात करी ना तो हम सवाल वह ले आए कि बरसात के पानी का संरक्षण करने के लिए किसान भाई कौन कौन से उपाय कर सकते।
5: बहुत ही आसान और अच्छा सवाल इस समय आपने किया है इसका जवाब हमारे भैया बहन बहुत ही जल्दी सोशल मीडिया के माध्यम से दे देंगे। जब तक सवाल का जवाब आए आइए हम उनको सुनवा देते हैं ये क्षेत्र संकलित कार्यक्रम आकाशवाणी गाँव में किसानों के साथ।

किसान साथियों, आज आकाशवाणी बरेली से निकलकर झुमका चौराहे के रास्ते हम फतेहगंज पश्चिमी से पहुंचे हैं गांव टिटौली, जो फतेहगंज पश्चिमी से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। गांव तक सड़क है, काफी अच्छो गांव है, मकानात काफी बढ़िया बने हुए है, बिजली व्यवस्था है गांव में, खरंजा काफी अच्छो, साफ सफाई काफी अच्छी है गाँव में। और जैसे हमने गाँव में भैया प्रवेश करो

0: यहाँ पर गांव में जानवर भी काफी लोग पाल रहे हैं, खेतीबाड़ी के साधन भी काफी अच्छे हैं। अब देख रहे हैं हम कि चौपार पर कुछ भैया बहन बैठे हैं, अब इनसे बातचीत कर ले रहे हैं। किसान साथियों राम राम।
1: राम राम भैया।
0: भैया क्या नाम है आपको?
2: महावीर।
0: आप जय गाँव में रहते?
2: जी।
0: कितनी उम्र हुई आप?
2: 30 साल।
0: पढ़ाई लिखाई करी आपने? कहाँ तक करी पढ़ाई लिखाई?
2: हाई स्कूल तक।
0: हाई स्कूल के बाद पढ़ाई लिखाई नहीं करी?
2: हाँ।
0: का कारण रहो जो पढ़ाई लिखाई नहीं करी?
2: ये घर की स्थिति देख के ना हो पाई पढ़ाई।
0: घर की स्थिति थोड़ी सही ना आई? हाँ। और अच्छा उस समय थोड़ो पढ़ाई लिखाई को ज्यादा ध्यान ना हो?
2: हाँ।
0: आज जितो पढ़ाई लिखाई को ध्यान है।
2: हाँ, महत्व जो आज
0: वो उस समय ना,
2: उस समय ना हो।
0: अगर हम 20-25 साल पहले की बात करें तो ना हो। तुम
2: ना हो?
0: अब का काम धाम करते हो?
2: अब वही खेती बाड़ी कर लेते हैं।
0: खेती बाड़ी? सिर्फ खेती बाड़ी कर दो और कोई काम करते हो?
2: मजदूरी भी कर लेते हैं कहीं।
0: अच्छा,
2: मिल जाता है।
0: खेती बाड़ी तो खेती बाड़ी में कौन कौन सी फसलें?
2: धान है और अरबी लगी है।
0: अच्छा, अरबी लगाई है? अरबी कितनी लगाई है आपने?
2: 2 बीघा है।
0: कब लगाई अरबी?
2: माह में लगी थी।
0: अब चल रहा है सावन, महा फागुन चैत बैसाख जेठ अषाढ़, यानी 5-6 महीना हुई है। कितने दिन की फसल है अरबी की?
2: 8-9 महीने की है।
0: अब तो काफी अच्छी हुई अरबी तो?
2: हाँ, अभी तो खुद रही है।
0: अच्छा, खुद रही है अरबी? एक बार में खुदती है या अलग अलग खुदती है? थोड़ी आज खोद ली, थोड़ी फिर खोद ली?
2: एक बार में भी खुद जाती है और बार बार भी खुद जाती है जैसे।
0: अच्छा अच्छा, एक बार में खत्म ना हो तो खुद गए?
2: हाँ ना,
0: धीरे धीरे खुदत रहे और वहां पीछे पीछे उतनी बढ़ती रहो। कितनी लग जाती है एक बार खुदाई में?
2: एक बार में ऐसे वो तो आपकी मर्जी के हिसाब से है कि एक बार में कितनी निकालने हैं।
0: अच्छा, कोई जरूरी ना है? हाँ, सब खोदने हैं?
2: सब खोदने हैं।
0: जितने बेचने हैं उतनी हमें निकालने
2: हैं? नहीं, हमें निकालने
0: तो काफी अच्छी फसल है अरबी की। उसको मतलब है कि हमें जितनी जरूरत है उतनी निकालने, बाकी जमीन में रहने।
2: हाँ, जब हमें बेचने हैं तब हम खोदेंगे।
0: खराब ना होती है?
2: ना, खराब नहीं होती है।
0: कहाँ बेचने जाते हो अरबी के लिए?
2: मार्केट में, बाजार में।
0: फतेहगंज बेच देते हो? मंडी जाते हो?
2: फतेहगंज बेचते हैं।
0: फतेहगंज बेचते हैं। क्या भाव बिक जाती है इस समय?
2: इस समय तो 30 रुपए चल रही है।
0: तो लगभग कितने कितने दिन बाद खोद लेते हो और कितनी कितनी खोद लेते हो?
2: हफ्ते में 2 बाजार होती हैं, 2 बाजार कर लेते हैं।
0: अच्छा, बाजार में लेके जाते हो तो सब बिक जाती है बाजार में?
2: हाँ, बिक जाती है सारी।
0: वैसे कोई गांव में लेने वाले आते हैं ना, थोक में आते ना? आते
2: हैं। हाँ, आते भी हैं।
0: थोकों में आ जाता है तो यूँ दे थोक। कुल मिला के अरबी की फसल काफी अच्छी है?
2: हाँ, अच्छी है।
0: अच्छा, अब अरबी की फसल में कोई काम है या केवल खुदाई काम रहा?
2: अब तो खुदाई का ही काम है
0: और कोई काम ना है? तो पहले जब आपने लगाई तो जब का काम करे आपने?
2: पहले तो नराई उराई है, खाद लगाना है, पानी लगाना है, यही काम चलता है। मिट्टी चढ़ती है उस पे।
0: तो जब आपने अरबी लगाई तो जैसे आलू गड़ते वैसी अरबी गड़ती?
2: हाँ, हाँ, वैसे ही गड़ती है।
0: पुती गड़ती है वैसे?
3: आलू की कुड़ी बनती है।
0: अच्छा, तो इसमें तो आपने पानी, देसी खाद, यूरिया, डीएपी सब लगा?
2: सब लगाई।
0: देसी खाद ज्यादा लगाते?
2: हाँ, देसी खाद जब पड़ेगी तभी अच्छी होगी।
0: अच्छा, देसी खाद पड़ेगी तो अच्छी होगी। अच्छा, अरबी के लिए जमीन कैसी हुआ?
2: सिवाय जमीन हुआ,
0: सिवाय
2: रेताली जमीन,
0: मतलब जो रेता टाइप की जमीन हुआ, बाम ज्यादा अच्छी।
2: हाँ, अच्छी बैठे।
0: बहुत अच्छी तरीका से आप अरबी खेती करते हो। और अरबी की खेती में आप बता रहे हैं कि हर हफ्ता में 2 बाजार कर लेते हैं। अच्छा, अभी कितने दिन तक चलाई अरबी?
2: अभी तो वो चलते रही जब तक पकेगी नहीं, दीपावली तक चलेगी।
0: अच्छा, दीपावली तक चलते रही?
2: हाँ।
0: आगे आगे खोदते रहो, पीछे पीछे होते रही? अच्छा, तो काफी अच्छी फसल है। लगभग कुल मिलाकर बात करिए तो 1 बीघा में कितने कुंटल अरबी लेकर आती है पूरी खुदाई में? हर बार
2: 10 कुंटल करीब में लेकर आती है,
0: मतलब जितनी बार खुदा टोटल मिला के 10 कुंटल बीघा की औसत दे देती है। काफी अच्छी औसत की लेकर आती है। और बिकने में कोई दिक्कत ना है अरबी?
2: ना, बिकने में कोई दिक्कत नहीं है।
0: देसी खाद आप लगाते हो खेत में? जानवर पालते हो?
2: हाँ।
0: कौन कौन से जानवर है?
2: एक भैंस है, 2 पड्डे हैं।
0: दूध दे रही है भैंस?
2: हाँ, दूध दे रही है।
0: दूध बेच तो ना?
2: हाँ, बेचते हैं।
0: अच्छा, दूध बेचने का फायदे?
2: वो ये है, चोकर वगैरह आ जाता है, भैंस का खर्चा निकल जाता है।
0: कुल मिला करके हमारे जो रोजाना के छोट मोट के खर्चा होता है, बाजार हाट के खर्चा होता है, दूध से बेखर्चा निकल जाता है। और जो भैंस को हम चारों वाटो खवा रहे हैं
2: वो निकल जाता है।
0: आज रेडियो पर आपकी और हमारी बातचीत बहुत सारे भैया बहन सुन रहे होंगे, क्या कहना?
2: जानवर वगैरह, खेती बाड़ी वगैरह, वो भी भैया बहन करे आप?
0: अच्छा, यानी जैसे आप खेती बाड़ी कर रहे हैं ऐसे और भैया आपकी बातचीत सुन रहे हैं, बेहू खेती बाड़ी कर रहे हैं, जैसे आप अरबी की खेती कर रहे हो, यानी सब्जी की खेती करना बहुत जरूरी है।
2: बहुत जरूरी है।
0: ठीक है, आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके ले आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: भैया। आपका नाम?
4: जय प्रकाश।
0: आप जय गाँव में रहते
4: जी?
0: आपकी उम्र कितनी हुई?
4: ऐसी सर 35 साल करी आसपास।
0: आपने पढ़ाई लिखाई करी?
4: जी सर, 5वीं छड़े तक।
0: अच्छा, 5वीं छड़े तक पढ़े, आगे ना पढ़े?
4: आगे मजबूरी आ गई थी, पिताजी का पैर फ्रैक्चर हो गया था, उस चक्कर में पढ़ाई नहीं कर मिली थी, छोड़ दी थी।
0: अच्छा, पढ़ाई छोड़ने के बाद खेती बाड़ी शुरू कर दी?
4: हाँ जी सर।
0: तो क्या क्या खेती कर?
4: सर यही धान, गेहूँ, बरियाना।
0: इस समय कौन सी फसल है?
4: इस टाइम धान लगे हुए है।
0: धान कितने दिन को है?

0: यहाँ पे
1: ऐसे ही भाई सर, करीब 18-20 दिन के लगे हुए हो गए।
0: 18-20 जो आपने धान लगाए भाई, तैयारी कैसे करी आप?
1: तैयारी क्या सर, जुताई उसके बाद रुपाई उपाई पानी उनी जो करना था वो कर दिया, लेकिन हमारे इधर सिवाई जमीन है उसमें एक शिकायत आती है बहुत तगड़ी, जिसमें कहते हैं दीमक, वो बहुत लगती है।
0: अच्छा, दीमक एक ऐसी बीमारी समझ लो या ऐसा कीट समझ लो कि जिस खेत में लग जाए वो खेत को खराब कर देता है।
1: खत्म कर देती है सर, उसमें जब तक पानी है जब तक तो बुरने लगती है दीमक, और जहाँ पानी खत्म हुआ वही खेत की खेत भी बैठा देती है।
0: दीमक की समस्या क्षेत्र में बहुत जगह है, अब बहुत जगह आती है, लेकिन इसको उपाय क्या है
1: सर? इसके उपाय के बारे में अभी तो जानकारी सर हमें भी नहीं मिल पाई है। सरकार की तरफ से काफी योजना चल रही है, आते हैं कृषि लोगों को लेकिन बताते हैं, लेकिन ये कोई उपाय नहीं बता पाया इस दीमक को इस प्रकार से खत्म कीजिए।
0: कारगर उपाय कोई ना है?
1: कोई नहीं।
0: जैसे अगर खेत में पानी रहे भरपूर मात्रा में तो दीमक कम रही?
1: पानी रहे तो सर दीमक कम आती है।
0: आपकी जमीन है सिवाई
1: जमीन पूरे क्षेत्र में
0: तो पानी ज्यादा भर नहीं सकते, पानी रुकेगा नहीं उसमें?
1: आज सर भरा कल निकल जाता है।
0: एक उपाय है हम बता रहे हैं आपको दीमक को।
1: बताइए सर।
0: कंडा हर घर में होता है?
1: हाँ,
0: जगह जगह खेत में जाकर के एक बीघा खेत में लगभग 10 कंडे गाड़ दो।
1: ठीक ठीक
0: आइडिया जहाँ तक, और 8 दिन बाद वो कंडे उखेर गए, आप उन्हें जला दो, मिट्टी का तेल डाल गए, कुछ भी करो यार, उनको नष्ट कर दो। खेत की जितनी दीमक होगी उन कंडों पे आ जाएगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने।
0: दीमक जो होती है वो कंडे पे बहुत जल्दी आती है मिट्टी में छोड़ कर। अगर एक बार दीमक खत्म हो गई फिर दोबारा खेत में दीमक नहीं आएगी।
1: छह सर उपाय आपका काम कर गया तो ये भी करके देखेंगे।
0: करके देखना, देसी उपाय है।
1: देसी उपाय
0: खर्चा भी नहीं है, और बहुत से किसान भाइयों ने ये उपाय किया है कि कंडे डालने से जो है दीमक कम हो जाती है। तो अब धान की फसल आप बता रहे हैं कि हमारी 18 से 20 दिन की लगभग होगी।
1: हो गई।
0: अब बामक का काम होता है?
1: अब तो सर खाद लगना ही है, यूरिया वूरिया ये, और यूरिया की सर समस्या चल रही है अभी। ठेका फेका पे जमीन करते हैं, अब जिसके नाम पे जमीन है सर यूरिया तो उसे मिलेगी, अब हम ठेका पे ले रहे हैं, अब उसके जाके नोहरे करें, बोले सर ये अपनी खतौनी दे दो, फार्मोगाइड दे दो, हम यूरिया ले आए, तो वो टहला पड़ा है, बोले सर अभी नहीं है, मिलेंगे या हूं गए हैं। अब ये समस्या सर हम झेल रहे हैं ना छोटे किसान।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही, जो मेन समस्या है किसानन की वो कि जो यूरिया की किल्लत, अब हम किल्लत है यूरिया की का?
1: यूरिया किल्लत यही सी कारण है, हम छोटे किसान है, खेती लेते हैं ठेके पे, अब हमें क्विंटल बीघा देना है, अब जिससे खेती ली हमने, अब उसने तो अपनी फॉर्मिक आईडी लगाएगा, अपनी आईडी देगा तभी तो मिलेगी यूरिया में, अब वो देना नहीं चाहता है जल्दी, बोले हमारे कोई आधार कार्ड लगा हुआ है, वो हैंग ना कर ले या जमीन नाम में नहीं करा ले, बहुत सी चीजें होती हैं, हमें टाइम पे अपने खेतों में फसल में यूरिया लगाने को मिल नहीं पा रही है।
0: यानी कि यूरिया लेने को तरीका एक ही है, अगर आपके नाम जमीन ना है तो आपको यूरिया ना मिलेगी, जमीन है तभी मिलेगी। जिनकी जमीन आपने ठेका में डाली है वो यूरिया अगर आपको दे रहे हैं तो सही है। अच्छा, प्राइवेट दुकानों में पहले यूरिया मिल जाती है, अब नहीं मिल जाएगा?
1: सर मिल रही है, उन पर ये कम से कम देते हैं 20-25 रुपए किलो।
0: अच्छा, महंगी देते हैं?
1: महंगी देते हैं।
0: अगर महंगी डालोगे तो हम खेती में औसत ना आवे।
1: सर क्विंटल बीघा का दे दिया हमने, 2 क्विंटल बीघा खेती हो रही है, उसमें कम से कम 14-15 सौ रूपए खर्चा ठोर आ रहा है पौधा लगाने में।
0: खेती बाड़ी में अगर हम खर्चे को ध्यान में रखकर ना करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं हम ठेका बटाई में खेती लेते हैं, आपको उनको भी देने हैं, उसके बाद आपको अपने बचाने हैं,
1: बचाना भी है,
0: तो इन सब चीजों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे धान की फसल है, कितने दिन बाद यूरिया लगाना चाहिए धान की फसल?
1: 20-25 दिन के जब हो जाते हैं धान, उसके बाद यूरिया की मांग आती है, यूरिया मांगती है खेती।
0: अच्छा, यानी कि धान लगाने के 20-25 दिन बाद यूरिया लगा देना चाहिए?
1: हाँ, जिससे पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है।
0: दूसरी यूरिया कितने दिन बाद लगा फिर?
1: दूसरी यूरिया वही लगाते करीब 45-50 दिन में,
0: मतलब 20-25 दिन में खेत में यूरिया लगा देना चाहिए।
1: लगाना चाहिए।
0: अच्छा, बात कर रहे हैं धान में काम की, अब और कौन कौन से काम जैसे निराई गुड़ाई का काम है?
1: पहले सर निराई गुड़ाई होती थी, लेकिन अब ये दवाई बहुत ऐसी ऐसी तरीके आ गई हैं जिसमें निराई गुड़ाई खत्म ही कर दी है, इससे पैदावार भी कम हो रही है।
0: अच्छा, निराई गुड़ाई की अब कोई आवश्यकता नहीं?
1: कोई आवश्यकता नहीं,
0: पौध लगाई
1: और
0: दवाई डाल दी, अब घास ना होती है?
1: घास बहुत ना के मात्रा में,
0: अगर ना के मात्रा में घास होगी तो अपने घास से खड़ी जाती है?
1: वो तो अपने डंगर पोए के लिए घर के लिए आया खेत,
0: तो गैले डाली जाती है खेतों में धान के, उनको का मकसद होता?
1: उनका सर मकसद ये होता है जो कल्ला टूटता था, जो मुड़ता था उसके बराबर से ही कल्ला दूसरा आता था।
0: अच्छा,
1: वो मुंड बड़ी बनाता था, अब जो दवाई लगाते हैं इससे मुंड नहीं बनती, जैसे पेड़ा चल रहा है वैसे चलता रहेगा।
0: तो वो जो धान तोड़ो जाता वो तोड़ना जरूरी है?
1: जरूरी था, वो इसलिए जरूरी था उससे कल्ला और नए निकलते थे।
0: तो अब धान तोड़ा जाता है? न तोड़ा जाता,
1: अब नहीं तोड़ा जाता है,
0: अब न तोड़ा,
1: अब आलसी हो गया,
0: अब काम जो है वो शारीरिक काम बहुत कम है,
1: कम हो गया।
0: पहले जमाने नराई हो ही आती खेत की,
1: खेत को घूमे आते घूमे आते,
0: हम देखते हैं ना खूब अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गैले डाल देते हैं, धान को तोड़ देते बिल्कुल
1: छा देते तोड़ देते, उससे कल्ला मोटे होता था और

0: कि अगर 3-4 दिन देखते हो धान की फसल काफी अच्छी हो जाती है।
1: हाँ।
0: जैसे हम पीछे देख रहे हैं जो बच्चे
1: खेल
0: रहे हैं, बहुत छोटे हम खेलते
1: हैं, ऐसा है आप भी खेलते हैं, हम भी खेलते थे, लेकिन ये बच्चों को क्या है, पढ़ लिख के आए तो बच्चों को थोड़ा बहुत खेलना भी जरूरी है।
0: नहीं, शारीरिक मेहनत गांव में जरूरी है। जो खेल अब भी गांव में जिंदा है,
1: जिंदा
0: शहर में जो चीज नहीं है देखने के लिए,
1: शहर में तो पार्क वगैरह में घूम लिए, और
0: शहर में मेन चीज क्या है, बच्चा मोबाइल में आके गेम देखता है। अब यहाँ पर इतने एक साथ बच्चे गेम खेल रहे हैं तो इनको थोड़ी शारीरिक मेहनत भी है रही है।
1: हाँ।
0: और खेल खेलना भी चाहिए साहब, भाई पूरे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे होकर खेल खेलते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है और जब हमें समय भी कट जाता। आज रेडियो पर आपकी और हमारी बातचीत बहुत सारे किसान भैया बहन सुन रहे हैं, क्या कहना चाहूंगा उनसे?
1: सब किसान भाइयों को राम राम करना चाहूंगा और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा सरकार से एक चीज की मांग करें, जो छोटा किसान है उसके लिए कोई सरकार अपनी तरफ

0: सरकार से एक चीज की मांग कर रहे हैं, जो छोटा किसान है उसके लिए कोई सरकार अपनी तरफ से एक दुकान काफी सुविधा दे रही है, कोई दुकान या वैसे करके गांव गांव रखे, उससे किसान को उसके लाभ मिले और किसान तक जो जरूरत के सामान है वो प्राप्त हो।
1: यानी कि आपकी ये इच्छा है कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो लाभ है, वो हर घर तक पहुंचे,
0: घर तक
1: और हर किसान तक पहुंचे। सरकार को प्रयास भी है और सरकार प्रयास भी कर रही है कि जो सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचे। आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको क्या नाम है?
2: हमारा नाम गंगा प्रसाद शर्मा है।
1: आप जय गाँव में रहते हो?
2: इसी गाँव में रहती हूँ।
1: कितनी उम्र हुई आपकी?
2: 52 साल।
1: अब आप खेती बाड़ी कर रहे हैं?
2: हाँ।
1: जानवर पालते हो ना? पालते
2: जानवर, गाय है ना?
1: गाय है।
2: हाँ।
1: तो गाय की देखभाल कैसे करते हो आप?
2: गाय की देखभाल उसका जो समय सब उसकी देखभाल, चारा है या दूध कम क्यों दे रही है, इसमें कुछ क्या परेशानी आ गई, तो उसका जो है डॉक्टरों के द्वारा उपचार कराना है, दवा दिलवाना है। और गाय से हमें बहुत जो है लाभ है, गोबर जो है देसी खाद बनती है, वो खाद हम अपने खेतों में डालते हैं। मतलब
1: अच्छा, जो गाय का जो गोबर होता है वो देसी खाद बना लेते
2: हैं? हाँ।
1: गाय पालन से बहुत ज्यादा फायदा आपने कराया है। घर में जब दूध मठा होता है तो एक बार अगर साग सब्जी ना हो तो काम चल
2: जाता है।
1: बेचते ना? बेचते दूध
2: ना? बेचे नहीं था।
1: अपने खान लाग रहा
2: बस बस।
1: अब इस समय बरसात कैसी हो रही है?
2: बरसात इस समय जो हल्की हो रही है।
1: हल्की हो रही है।
2: हाँ।
1: खेती बाड़ी में तो बरसात इस समय ज्यादा होती है, छुला गए
2: ज्यादा छोटा तो लाभदायक है किसान के लिए। मतलब किसान को अभी आफता बारिश की बारिश हो जाए, बारिश होने दे रही है तो उसमें मजबूरी है।
1: दो तीन दिन तो बारिश खूब गई, अब दो तीन दिन से बारिश ना रही
2: ना भैया बारिश।
1: अच्छा, खेती में कौन कौन सी फसल है?
2: खेती में जो केवल धान है और उड़द लगाया है।
1: उड़द कब लगाओ आपने?
2: अभी लगाया संडे के लिए।
1: अच्छा, अभी लगाया है?
2: हाँ,
1: 6-7 दिन पहले।
2: हाँ।
1: कैसे करके लगाओ उड़द आपने?
2: उसमें हमने पहले बोया था ढेचा, तो ढेचा उसे हमने लौटवाया, फिर ढेचे की जो खाद बनी बढ़िया, फिर दोबारा खेत उसका जो है रूटा बोटे से जुतवाया, फिर उसमें जो है बुआई की उड़द की।
1: अच्छा, आपने पहले हरी खाद डाली उसमें?
2: हाँ।
1: अच्छा, हरी खाद बहुत कम भर है किसान भैया,
2: कम भर
1: लेकिन आपने हरी खाद को इस्तेमाल आजो कर रहे हैं और हरी खाद बहुत अच्छी खाद होती है खेत में लगाने के लिए। अच्छा, तो जो उड़द आपने बो वो पवेरा बो या सीस बो?
2: ऐसे पवेरा।
1: पवेरा बो? तो अब जाओ का काम होंगे उड़द में?
2: अब इसमें जो है समय पर इसकी जो है दवा लगाना, जैसे मुझे फूल नहीं आ रहा है तो फूल की स्प्रे लगानी है, या मकड़ा लग रहा है तो उसकी भी स्प्रे करानी है, और हमें जो उसका जो है उसमें खेत में खतपर बार है उसको भी देखना है।
1: अच्छा, मतलब कुल मिला के बीमारी जो है घास वगैरह है?
2: हाँ।
1: सिंचाई की तो बरसात को मौसम हल्की फुल्की बारिश की जरूरत ना पड़ेगी सिंचाई की?
2: ना, इसमें ना पड़ेगी। उड़द में
1: उड़द को जो कल्ला है वो कितने दिन में फूटे? फूट को ना फूटो?
2: 24 घंटे फूट जाता है।
1: 24 घंटे फूट जाता है?
2: हाँ।
1: खेत में दिखाई देने लगो?
2: खूब।
1: अच्छा, खूब दिखाई दे रहे हो?
2: हाँ।
1: मतलब 7 दिन ही के मान लो आज, तो 7 दिन में आपको उड़द दिखाई देने लगो खेत में?
2: दो दो पत्ती होगी?
1: दो दो पत्ती होगी।
2: हाँ, निकल जाएंगी।
1: 90 दिन की खेती है उड़द?
2: 90 दिन खेती है।
1: आज रेडियो पे आपकी और हमारी बातचीत बहुत सारे भैया बहन सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहोगे उनसे?
2: हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे किसान भाई जो खेती कर रहे हैं उन्हें समय समय पर जो है खाद मिले और सिंचाई हो, और हमारा जो उसमें अगर मतलब कीटनाशक लग रहे हैं तो उनका जो है सुचारू ढंग से जो है उनका
1: उपचार। बहुत अच्छी बात आपने कही, जो कीट लग रहे हैं उनके उपचार अच्छी तरीके से ही जाए, खाद की जरूरत है हम खाद से समय से मिल जाए, सिंचाई की व्यवस्था ही है, किसान को यही 3 चीजों की जरूरत है तो उसकी आय जरूर दुगनी ही जाए। आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपको क्या नाम है?
3: अरविंद कुमार।
1: आप हो जाए गाँव में रहते?
3: जी।
1: आपकी कितनी उम्र हुई?
3: 40 साल।
1: आपने कभी पढ़ाई लिखाई ना?
3: पढ़ाई लिखाई करिए।
1: कहाँ तक पढ़ाई लिखाई करी?
3: ग्रेजुएट है।
1: अब क्या काम करते हो?
3: अब रोजगार सेवक है संविदा पे।
1: क्या का काम होता है भैया रोजगार सेवक के?
3: रोजगार सेवक में क्या कहते हैं, कच्चे चकमार्ग है, तालाब है, नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, ये काम होते हैं गाँव वालों की सुविधा के लिए।
1: अच्छा, गाँव वालों की सुविधा के लिए जो कच्चे चकमार्ग होते हैं, तालाब है, इनके अलावा और कोई काम होता है?
3: इनके अलावा और जैसे कोई ज्यादा वो है गरीब है तो आके खेत अगर ऊंचा नीचा आए तो उसको समझा करके देते हैं, और मेड़बंदी।
1: अच्छा, तो मेड़बंदी को पैसा लग जाता है ना? लग जाता है
3: ना, फ्री सेवा।
1: तो ये तो काम वो करते होंगे जो लोगों के जॉब कार्ड बने वो होंगे?
3: हाँ, जॉब कार्ड वाले करते हैं।
1: तो जॉब कार्ड कैसे करके बना पाते हैं?
3: जॉब कार्ड आप उसको लाभार्थी को जो है मजदूर को आवेदन करना होता है, ग्राम पंचायत का निवासी हो और क्या कहते हैं उम्र 18 साल से ऊपर हो, उसकी काम करना चाहता है तो उसका जॉब कार्ड बन जाएगा।
1: जिन लोगों के जॉब कार्ड ना है बे अगर अपना जॉब कार्ड बनवा।

0: चाहे तो कहाँ पर आवेदन करेंगे?
1: ग्राम पंचायत कार्यालय में।
0: जो ग्राम पंचायत कार्यालय बने हुए वहाँ पर अपना आवेदन करें तो उनको जॉब कार्ड बन जाए। अच्छा, एक बार जॉब कार्ड बनने के बाद में साल में कितने दिन काम की गारंटी हो?
1: अब तो 125 दिन कर दिया गया है
0: एक जॉब कार्ड धारक को। तो एक दिन की जो मजदूरी है वो कितनी मिलती है?
1: 300 रूपए।
0: ऐसा हो जाता है कि काम न मिल पावे 125 दिन?
1: हाँ, ऐसा भी होता।
0: अगर जैसे वो 125 दिन को काम आप सब मांग आए, भाई उसको अधिकार दोगे हुए कि 125 दिन को काम उसे एक साल में मिले हुए, और वो काम अगर 125 दिन ना मिल पावे हुआ है, फिर उसके लिए क्या प्रावधान है?
1: बेरोजगारी भत्ता मिलता है उसे।
0: अच्छा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है उसके बदले में अगर उसे काम नहीं मिलेगा तब। बड़ा अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे यहाँ पर हम, जैसे कहीं आपने गाँव में चकमार चिन्हित करो कि जब चकमार पर काम हुए तो सूचना कैसे पहुँचाते हो?
1: मुनादी पिटवाई जाती है।
0: अच्छा,
1: उससे क्या कहते हैं गाँव के जो चौकीदार होता है उससे, और मुश्किल से भी आवाज है 25-30 आदमी।
0: अच्छा, 25-30 आदमी, जितने आदमी की आपको लगभग आवश्यकता होता उतने तो आई जाते होंगे?
1: कभी को बनाया पाते हैं, कभी को ज्यादा आ जाते हैं, कम हो आते हैं।
0: अच्छा, सूचना तो आप सबको पहुंचा देते हो?
1: सबको मिल जाती है।
0: अब एक बात आती है कि जो इनकी हाजिरी लगती है जॉब कार्ड धारक हैं जो काम करने आते हैं, वो उपस्थिति कैसे करके लगती है उनकी?
1: फेस अटेंडेंस हाजिरी लगती है दोनों टाइम, ऑनलाइन लगती है।
0: ऑनलाइन? अच्छा, फेस मोबाइल से ही? पहले जो वहाँ पर लिखी जाती कागज पे रजिस्टर पर ऐसा कुछ ना?
1: ऐसा कुछ नहीं है।
0: पहले की जो उपस्थिति लगती है और आज की जो उपस्थिति है वहाँ में क्या अंतर है?
1: अंतर बहुत है। जो भ्रष्टाचार रुको हो जाए, कुछ जगह जो है बिना लेबर को ले जाए हाजिरी लग जाती, अब जो 100% प्योर काम है, भ्रष्टाचार खत्म।
0: अच्छा, अब जो है प्योर काम है बिल्कुल, अब फर्जी वालों बिल्कुल ना है।
1: वाला ना है, जो काम पे जाएगा वही बस,
0: जो काम पे जाएगा उसी के खाते में पैसे जाएंगे, जो काम पे नहीं जाएगा उस खाते में पैसे नहीं जाएंगे। अच्छा, आप एक बात और कह रहे हैं कि जो जमीन ऊंची नीची है उसका समतलीकरण भी मनरेगा के द्वारा हो जाता है, वो हम मनरेगा कह रहे हैं, क्या इस योजना को नाम चेंज भी हुआ?
1: चेंज हुआ,
0: क्या नाम रख दो?
1: जी राम जी विकसित भारत जी राम जी योजना रख दिया गया है। और पहले महात्मा गांधी नरेगा में 100 दिन का था, इसमें 150 दिन कर दिया गया।
0: अच्छा, जो नौ नाम जो अब बदलो हुआ है, जै नाम से ब नाम से कोई फर्क तो ना है काम करने में?
1: काम कौन फर्क ना।
0: पहले अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो जॉब कार्ड धारक है जो काम करने आते हैं तो उन्हें नाप के दे दी जाती है खंती वगैरह।
1: पहले खंती नाप के दी जाती,
0: अब ऐसा कुछ सिस्टम है?
1: अब है, मगर लेबर को तो पूरे दिन रोकनी है वहाँ।
0: अच्छा, नाप के अब भी देना है?
1: हाँ, लेबर को पूरे दिन रोकना है।
0: लेबर को पूरे दिन रोकना है,
1: खातिर दोनों टाइम लगेगी उसकी।
0: आज रेडियो पर आपकी और हमारी बातचीत, बहुत सारे भैया बहन सुन रहे हैं और वो लोग भी सुन रहे होंगे जो जॉब कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनसे?
1: बस मैं यही कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग काम करें, साल में 2 महीने की छुट्टी भी है, 20-20 दिन की तीनों टाइम खेत में काम होगा, बीबी जी राम जी बंद रहेगी, 20-20 दिन का अंतर दिया गया है तीनों फसलों में।
0: अच्छा, मतलब जब फसल में काम होता है तो जो योजना कोई छुट्टी हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि जब खेती बाड़ी में काम हो तो अपने
1: काम करें,
0: अपने काम करें। आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बड़ा अच्छे तरीका से हमें अपनी खेती बाड़ी के बारे में, अपने गांव के बारे में, पशुओं के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। और अब हम चलते हैं आकाशवाणी बरेली की ओर, जिस रास्ते आए उसी रास्ते वापस। अब लो हमारी राम राम।

0: भैया बहनों, अभी आपने सुनो क्षेत्र संकलित कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में किसानों के साथ। आज भैया सुरेंद्र पहुंचे ग्राम टिटौली विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी के गांव में, और यहां पहुंच करके प्रगतिशील किसान भाई महावीर, जयप्रकाश, गंगा प्रसाद, अरविंद जी से बातचीत की। उनकी खेती बाड़ी, पशुपालन, गाँव के हालचाल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बातचीत हुई। अगर आप लोग भी इस तरह से अपने गांव बुलाना चाह रहे हो, अपने गांव के हालात, खेतीबाड़ी कैसे करके आप लोग अपनी फसल से अच्छा उत्पादन लेते हो, इन सब बातों के बारे में अगर बताना चाहते हो, तो फिर हमारे कार्यक्रम में एक पत्र लिख दीजिए या फिर सोशल मीडिया पर अपने गाँव का स्पष्ट पता लिख कर हमें दे दीजिए, और साथ ही साथ एक फोन नंबर अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे कि हम आपसे संपर्क करके आपके गांव पहुंच सकें। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति रही मिथिलेश श्रीवास्तव की, और प्रस्तुति सहयोग आपके भैया धारा और सुरेंद्र को।
1: धारा भैया, देखो समय और ना बचो, अपने भैया से बातचीत करें, लेकिन बात से पहले बता दे कि भैया कल मौसम कैसा रहेगा।

0: हाँ भैया बिल्कुल।
1: तो भैया बहनों, कल आसमान अधिकांश समय बादलों से घिरा रहने की संभावना है। रुक रुक कर और हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा पूरब दिशा से लगभग 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। तो धारा भैया देखो, हम तो अपने किसान भाइयों से यह कहना चाहेंगे कि वर्षा की संभावना को देखते हुए खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। कीटनाशक एवं उर्वरकों का छिड़काव वर्षा रुकने के बाद ही करें तथा मौसम की ताजा जानकारी के अनुसार कृषि कार्य की जो है योजना
0: जी
1: बनाएं।
0: भैया, और अब बारी है उस सवाल की जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा था, उसका जवाब बता दें।
1: तो भैया सवाल हो, बरसात के पानी का संरक्षण करने के लिए किसान भाई कौन कौन से उपाय करें, तो जाको भैया जवाब है। और हमारे भैया बहनों ने सोशल मीडिया पर जवाब दे दिया
0: जी
1: कि किसान भाई मेड़बंदी करें, खेत तालाब और वर्षा में जल संचयन जैसे उपाय अपनाकर बरसात को पानी बचा सकता है।
0: और कैच द रेन के बारे में जो सरकार ने बीड़ा उठाया है उसको भी पूरा कर सकते हैं। और चलते चलते आज की नसीहत यही कि बरसात के पानी का संरक्षण करें, यही भविष्य की खेती की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: इसी के साथ कार्यक्रम किसान बाड़ी से अपने भैया सुरेंद्र,
0: और धारा सिंह को दीजिए अनुमति। भैया बहनों, राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
2: प्रधानमंत्री किसान मान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाड़ी, धारा सिंह और सुरेंद्र पाल के साथ। 100.4 FM पर यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत, सुरेंद्र पाल और धारा सिंह के साथ।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम में एक बार फिर सब भैया बहन को बहुत बहुत स्वागत है। धारा भैया देखो, बरसात की बात तो घरे कर ही रहे, बरसात चलिए रही है। बरसात में सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना।
1: भैया देखिए, ऐसे मौसम में जो है नमी होती है और बरसात हो रही होती है तो मक्खी है, मच्छर है, वो बहुत ज़्यादा पनपने लगते हैं। और जब मक्खी मच्छर ज़्यादा पनपते हैं तो ऐसे में तमाम प्रकार के रोग जो है वो पनपने लगते हैं। तो ऐसे में खुला हुआ अगर पानी रखा है तो उसको सेवन ना करें, बासी भोजन ना करें, और जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनको अगर लेकर के आ रहे हैं तो अच्छी तरह से साफ करके और साफ पानी से धुल करके ही उसका खाने में इस्तेमाल करें।
0: और इस समय ये देखो, साफ सफाई को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कहते हैं जहाँ स्वच्छता हो वहीं स्वास्थ्य अच्छे हुए, यानी कि साफ सफाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और भाई बहनों, आप सुनवा दे तो आप छह संगत कार्यक्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता स्तनपान सप्ताह पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं और इन सब बातचीत कर रहे हैं।

0: हमारे भैया धारा से।
1: जैसा कि कार्यक्रम में हम समय समय पर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहते हैं और कार्यक्रम में विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं, आज इसी कड़ी में हमारी बातचीत का विषय है विश्व स्तनपान सप्ताह के संबंध में। विश्व स्तनपान सप्ताह क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है और क्या इसका महत्व है, इस संबंध में जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा जी के पास में। आप महिला प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं और आज आपसे हमारी बातचीत का विषय भी यही है कि विश्व स्तनपान सप्ताह क्यों मनाया जाता है, इस बारे में आप हमारे सभी सुनने वालों के लिए बताइए।
2: विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त से लेकर हर साल 7 अगस्त तक मनाया, इसका मुख्य उद्देश्य जो है स्तनपान के प्रति महिलाओं को, परिवार को, समाज को जागरूक करना, स्तनपान की इम्पोर्टेंस बतानी है, जिसे हम ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, उसकी ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में समाज में अवेयरनेस लाने के लिए स्तनपान का आयोजन किया जाता है।
1: जी, समय समय पर महिलाओं के लिए या जो गर्भवती महिलाएं हैं या जिनके अभी शिशु जन्म हुआ है, उनको ये राय देनी बहुत जरूरी होती है कि वो स्तनपान कराएं, क्योंकि महिलाएं स्तनपान कराना नहीं चाहती हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है महिलाओं के लिए?
2: मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी कि स्तनपान केवल शिशु के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: जी,
2: जैसे महिलाओं के लिए सबसे पहले अगर जैसे कोई भी महिला अपने शिशु को स्तनपान कराती है तो उसे ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो है रिलीज होता है। तो जैसे बच्चे को जन्म देने के बाद जो बच्चेदानी का है उसका साइज बहुत बढ़ जाता है।
1: जी,
2: तो जो ऑक्सीटोसिन वो रिलीज होगा तो उससे क्या होगा, जो बच्चेदानी जो है सिकुड़ना शुरू कर देती है।
1: जी,
2: एक तरह से नेचुरल ऑक्सीटोसिन स्रावित होना शुरू हो जाता है, जिससे महिलाओं में पीपीएच यानी पोस्टमार्टम हेमोरेज का खतरा बहुत कम हो जाता है, ब्लीडिंग बहुत कम होती है।
1: जी,
2: तो सबसे पहले नंबर एक फायदा तो ये हो गया महिलाओं के लिए। दूसरा, जो डिलीवरी के बाद वजन बढ़ जाता है 10 से 15 किलो, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे सुरक्षित और सबसे आसान उपाय है महिलाओं के प्रति जो बाद में वजन बढ़ रहा है उसको कम करना। अगर कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उसका वजन नेचुरली रूप से अपने आप कम होना चाहिए।
1: माँ का प्रथम दूध है उसे कितनी देर बाद पिलाना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या कहना?
2: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जनरली लोग कहते हैं माँ भी बहुत कमजोर है तो अभी दूध पिलाने के लायक, ये बिल्कुल अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तब भी बच्चे को दूध पिलाना 1 घंटे के बाद शुरू कर देना चाहिए स्तनपान, और अगर सीजरियन डिलीवरी हुई है तब भी माँ को 1 या 2 घंटे के बाद स्तनपान करा सकती है। लेकिन हाँ, उसमें हेल्प लगेगी, डॉक्टर हेल्प कर सकते हैं, नर्स हेल्प कर सकती है, या आपके परिवार के परिवारजन हेल्प कर सकते हैं स्तनपान सही कंडीशन में।
1: एक महत्वपूर्ण बात डॉक्टर भी आपसे यहाँ जानना चाहूंगा कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है या सिजेरियन डिलीवरी होती है, बच्चा समय से जन्म लेता है तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि बच्चे समय से पहले जन्म ले लेते हैं या किसी भी कारण से उनको समय से पहले जन्म करवाना पड़ता है और बच्चा कमजोर भी होता है या जो महिला है वो भी कमजोर होती है, ऐसे में फिर स्तनपान करने में समस्या भी आती है, तो इस बारे में आपका क्या कहना?
2: जैसे प्री मैच्योर बच्चा है तो वो सकिंग नहीं कर पाए,
1: जी
2: चूस नहीं पाएगा, उसकी सकिंग पावर कमजोर होती है, लेकिन उसका सांस में इंटेस्टाइन भी बहुत वीक है, लंग्स भी वीक है, तो बाहर का फार्मूला मिल्क, गाय का दूध या बकरी का दूध जैसे लोग खिला देते हैं तो वो उसके लिए बहुत हानि।
1: जी,
2: माँ का दूध जो है बच्चे के लिए काफी हल्का होता है, पचाने में सबसे आसान होता है और जितने पोषक तत्व होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं।
1: जी,
2: चूंकि वो सेकंड नहीं कर पाएगा तो उसके लिए कहते हैं हम लोग सक्शन पंप, ये होता है ब्रेस्ट पंप जो होता है, उससे आप बॉटल में निकाल कर रखेंगे, इस दूध को आप 4-5 घंटे तो नॉर्मल टेम्परेचर पर सकते हैं और फ्रिज में आप 24 घंटे तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध कटोरी या चम्मच।
1: माँ का दूध, पहला दूध जिसे हम खीस के रूप में भी कह सकते हैं आम भाषा में, बच्चे के लिए इम्यूनिटी पावर, उसकी शारीरिक व्यवहार के लिए कहें या जो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की क्षमता रखता है, कभी कभी होता है कि किसी कारणवश बच्चा दूध नहीं पी पाता है या माँ उसको दूध नहीं पिला पाती है, तो ये आपने राय दी कि सकिंग पंप के माध्यम से इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन किसी कारण से अगर माँ बिछड़ जाती है,
2: जी,
1: बहुत सी ऐसी बातें आती हैं, उस समय फिर स्तनपान का क्या तरीका निकाला जा सकता है आपके हिसाब से?
2: स्तनपान के लिए आजकल तो इस तरह के मिल्क बैंक भी उपलब्ध हैं, तो आप उनसे डोनेशन ले सकते हैं, भाई माँ का इंतजाम कर सकते हैं, और अगर कोई भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो आप पीडियाट्रिशियन की बाल रोग विशेषज्ञ की सलाह से फॉर्मूला ले, गाय का दूध या बकरी का दूध या फिर भैंस का दूध, तो आप अवॉइड करें।
1: बच्चे के लिए कितना महत्वपूर्ण है स्तनपान?
2: बच्चे के लिए स्तनपान बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे पहले 3 दिन

0: का जो फीस आता है जिसे हम दो लक्षण कहते हैं, वो तो आप समझ लीजिए बिल्कुल इस तरह ऐसे है जैसे कर्ण के लिए कवच और कुंडल थे,
1: जी जी जी,
0: इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। तो आप अगर पहला टीका आप मान लीजिए दो लक्षण, अगर बच्चे को तीन दिन तक आपको दे दिया तो उसकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगी, बीमार नहीं पड़े। बच्चे के लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे कर्ण के लिए कवच और कुंडल।
1: बिल्कुल बात आपने बिल्कुल सही कही कि स्तनपान इसीलिए भी जरूरी है कि उसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे यहाँ जानना चाहूंगा कि बच्चों को दूध किस माह तक, किस उम्र तक जो है पिलाना सबसे अच्छा माना जाता है?
0: ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। वैसे तो बच्चों को स्तनपान तो 6 महीने तक बहुत जरूरी है, लेकिन 6 महीने तक बच्चा 6 महीने का हो जाएगा उसके बाद केवल स्तनपान से काम नहीं चलेगा। उसके बाद आप उसको दाल का पानी दे सकते हैं, चावल का पानी दे सकते हैं, या फ्रूट को आप मैश करके दे सकते हैं, इसके साथ साथ देना चाहिए। और स्तनपान आप 2 साल तक जारी रखिए और इसके साथ 6 महीने तक तो केवल स्तनपान ही कराना है, उसके साथ कोई शहद भुट्टी या पानी कुछ भी नहीं देना है। और 6 महीने के बाद आप स्तनपान भी कराइए और साथ में दूध दूध भी दे सकते हैं, खीर भी बनाकर दे सकते हैं, दाल का पानी भी दे सकते हैं, मांड भी दे सकते हैं, इस तरह का थोड़ा थोड़ा दो आहार भी देना चाहिए।
1: कुछ कामकाजी महिलाएं होती हैं जहां शर्म की वजह से या वहां सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना?
0: मैं तो ये कहूंगी स्तनपान हर बच्चे का पहला अधिकार है और माँ का प्रथम कर्तव्य, बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। अगर हमें समाज में सबसे पहले तो इस बदलाव की जरूरत है, अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको अश्लीलता की नजर से ना देखें,
1: बिल्कुल
0: वो अपने बच्चों को भोजन करा रही है तो आप उसे मातृत्व की नजर से देखें ना कि अश्लीलता की नजर।
1: जी जी जी, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस संबंध में कही है, क्योंकि महिला की सुरक्षा करना हम सबका ये दायित्व है, चाहे वो कहीं घर पर है, ऑफिस में है, या कहीं भी कामकाजी स्थान पर है, कि उसको बच्चे के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्तनपान कराना बहुत ही जरूरी है।
0: एक अपील मैं सारे ऑफिसेज से और इन सबसे भी करना चाहूंगी कि अगर कोई आपके यहाँ कोई ऐसी स्तनपान कराने वाली महिला है तो आप उसको एक स्थान प्रोवाइड कराइए जहाँ वो आसानी से अपने बच्चों को स्तनपान करा सके
1: जी।
0: और उसको अश्लीलता की नजर से ना देखें बल्कि उसको प्रोत्साहित करें कि आप अपने बच्चे को कराइए
1: जी।
0: और परिवारों से भी मैं अपील करूंगी कोई स्तनपान कराने वाली महिला है तो आप उसके पालन उसका पोषण का पूरा ध्यान रखें, अगर महिला स्वस्थ होगी तभी बच्चे को वो स्वस्थ दूध दे पाए।
1: अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आपसे यहाँ जानना चाहूंगा कि आज आधुनिकता का समय है, महिलाएं फैशन के दौर में हैं, जो भी अपने बच्चे को स्तनपान कराने से बचती हैं, हो सकता है उनके मन में ये हो कि हमारे शारीरिक सुंदरता या हमारा शारीरिक जो स्वभाव है वो बिगड़ सकता है, तो इस बारे में भी कोई आपकी सलाह है महिलाओं के लिए?
0: जो भी मैंने आपको बताया जैसे डिलीवरी का 10 से 15 किलो वजन बढ़ता है
1: जी,
0: तो ये सबसे नेचुरल तरीका है बॉडी का अपनी बॉडी को शेप में, अगर महिला स्तनपान करा रही है तो उसका शरीर जो है वापस 4 से 6 हफ्ते में, लगभग 6 महीने के अंदर अगर स्तनपान प्रॉपर करा रही है तो उसी शेप में आ जाए, और अगर नहीं करा रही है तो उसी शेप में आने की संभावना बहुत कम।
1: अंत में क्या सलाह देना चाहेंगे स्तनपान के संबंध में?
0: मैं समाज को ये कहूंगी कि स्तनपान के बारे में आप पहले तो अपना नजरिया बदलिए, स्तनपान बच्चे का अधिकार है और माँ का पहला कर्तव्य है और समाज की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को माँ का दूध। तो परिवार से भी मैं गुजारिश करूंगी अगर आपके घर में कोई स्तनपान कराने वाली महिला है तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके खान पान का ध्यान रखें और उसे ऐसा स्थान प्रोवाइड कराएं कि जिससे जहाँ वो अपने बच्चे को दूध आसानी से पिला सके, उसके आराम का पूरा ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात, आजकल लोग मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, वो खुश रहे, जब वो खुश रहेगी मानसिक तनाव से दूर रहेगी तो बच्चे का विकास उसका विकास बहुत अच्छा होगा। बच्चे जो नौनिहाल होते हैं हमारे देश का भविष्य होते हैं, एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ समाज का निर्माण करती है और स्वस्थ समाज से ही देश का विकास होता है।
1: जी जी, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा जी आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी स्तनपान कराने के लिए दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे भैया बहन सुन रहे 6 संगत कार्यक्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता स्तनपान सप्ताह पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, और इन सब जानकारी जुटा रहे हमारे भैया धारा सिंह। भैया देखो अब अपने भैया बहनों को सुनवा देते हैं लोकगीत, बोल हैं जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया, नत्था सिंह की आवाज़ में।

0: आज के इसी मधुर लोकगीत के साथ आज का कार्यक्रम ग्राम जगत यहीं पर संपन्न होता है। अपने भैया धारा
1: और अपने भैया सुरेंद्र को दो अनुमति। भैया बहनों
0: राम राम, राम।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत धारा सिंह और सुरेंद्र पाल के साथ। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्ति से संबंधित सूचना सुनिए। राजवीर सूचित करते हैं कि इनकी पुत्री सत्यवती, जिनकी उम्र 36 वर्ष है, कद 5 फीट, रंग गेहुआ है, धोरा बदन, चेहरा गोल, बाल लंबे हैं, आंख काली, जो काले पीले रंगे वाली पत्ते वाली साड़ी और काली ब्लाउज, पैरों में हवाई चप्पल पहने हुए हैं, जो 2/6/2026 ग्राम सरवा थाना बिसौली जिला बदायूं से लापता हैं। जिस किसी व्यक्ति को मिले वो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बिसौली जिला बदायूं को सूचित करें।

खोए हुए व्यक्ति संबंधित एक और सूचना सुनिए। पवन मौर्य पुत्र पन्नालाल मोहल्ला चौवारी चौधरी सराय जिला बदायूं। सूचित करते हैं कि इनकी पुत्री सुहानी मौर्य जिनकी उम्र 15 वर्ष है, कद 5 फुट, रंग

हुआ, चेहरा गोल, आंख काली, बाल काले घने व लंबे, जो सफ़ेद शर्ट और काला जीन्स पहने हुए हैं। 6/6/2026 मोहल्ला चौधरी सराय, थाना कोतवाली, ज़िला बदायूं से लापता हैं। जिस किसी व्यक्ति को मिले वो थाना कोतवाली ज़िला बदायूं को सूचित करें या प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली ज़िला बदायूं को सूचित कर सकते हैं। और इनका मोबाइल नंबर है 8755542511। खोए हुए व्यक्ति संबंधित सूचना समाप्त हुई।

0: FM 100.4 MHz यानी आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें। आकाशवाणी
1: समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार।

पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सहित देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा होंगे कार्यक्रम में शामिल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में बुद्ध थीम पार्क का किया लोकार्पण। कहा, भगवान बुद्ध के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा थीम पार्क। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस वर्ष राज्य में 5 करोड़ घरों पर फहराया जाएगा राष्ट्रध्वज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अभियान में भाग लेने का किया आह्वान। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर अस्मिता डे ने जूडो में 48 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। नमस्कार, प्रदेश के समाचार।

0: समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा, समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सहित देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इस अभियान के अंतर्गत हर रविवार देशभर में जागरूकता और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव का वाहक बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में बुद्धा थीम पार्क का लोकार्पण किया। उन्होंने कपिलवस्तु बुद्ध स्तूप में लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया। श्री पुरी ने कहा कि यह थीम पार्क भगवान बुद्ध के शांति, करुणा और मानव कल्याण के कालजयी संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में श्री पुरी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कल स्वीकृत की गई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को क्रांतिकारी बताया।
2: एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर के लिए मंत्रिमंडल ने 84,000 करोड़ का एक योजना अप्रूव की है। इसके तहत 4 साल में डेटा कलेक्शन, डीप वाटर ड्रिलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में होगा। इस योजना के साथ आने वाले समय में हम 1,00,000 करोड़ तो प्रतिवर्ष बचा पाएंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर घर तिरंगा केवल एक अभियान नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देश के गौरवशाली इतिहास से जन जन को जोड़ने का राष्ट्रीय अभियान है। इसे व्यापक जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाना चाहिए। कल लखनऊ में मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान, स्वतंत्रता दिवस तथा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि 14 और 15 अगस्त को प्रदेश के सभी सिनेमाघरों में राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का अनिवार्य रूप से प्रसारण निश्चित किया जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में सहभागिता का आह्वान करते हुए इस वर्ष 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा रैली, तिरंगा संगीत समारोह, तिरंगा प्रदर्शनी और सेल्फी विद तिरंगा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों, सार्वजनिक स्थलों, प्रमुख बाजारों और चौराहों को तिरंगा थीम पर सजाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के सभी कार्यक्रम पूरे सम्मान, गरिमा और राष्ट्रभक्त के भाव के साथ आयोजित किए जाएं। 9 से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सभी स्मारकों, स्मृति स्थलों और शहीद स्थलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। समाचार कच्छ से ओम अवस्थी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा मामले को लेकर संसद परिसर में नाटक करने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में आज मुकदमा दर्ज किया गया। काशी जोन के पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने बताया कि संतों की तहरीर पर सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया गया है।
4: संतों के द्वारा जो है कोतवाली थाना में एक तहरीर दी गई है। मैं उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि राजेश रंजन और सरस्वती यादव जी, राहुल गांधी जी और अवधेश जी जो ये हैं, इनके द्वारा सदन में, संसद में कुछ ऐसे

0: किए गए हैं जिसके द्वारा जो सनातन धर्म है उसका अपमान हुआ है, उसी में अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाए।
1: उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले पर कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच एसआईटी कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: जो तथ्य सामने आए हैं उन तथ्यों के आधार के ऊपर जो लोग प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए थे उनको सजा हुई है, वो जेल में है। बाकी जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, एसआईटी की रिपोर्ट माननीय मंत्री जी स्वयं, उसके हम सब लोग चिंतित हैं, जो भी रिपोर्ट आएगी जो भी उसमें दोषी हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
1: नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने आज वाराणसी में विंध्य आर्थिक क्षेत्र के 7 जनपदों के सुनियोजित विकास की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को वर्ष 2030 के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए और इसके लिए तकनीक आधारित निगरानी तथा डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को और मजबूत बनाया जाए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना में उत्तर प्रदेश ने देश के शीर्ष 100 जनपदों की सूची में अपने 17 जनपदों को शामिल कराया है। सूची में लखनऊ ने पहला स्थान हासिल किया है। एक रिपोर्ट।
3: यूपी नेडा डायरेक्टर रविंदर सिंह ने बताया कि इस सूची में राजधानी लखनऊ ने 1,24,167 रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना के साथ देश का नंबर एक जनपद बनने का गौरव बरकरार रखा है। वहीं वाराणसी ने भी देश में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा कानपुर नगर 14वें स्थान पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, समयबद्ध स्वीकृति, डिस्कॉम और संबंधित एजेंसियों के बेहतर समन्वय तथा सब्सिडी वितरण की प्रभावी व्यवस्था ने इस अभियान को नई गति दी है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर स्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में जूडो में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्मिता को इस जीत के लिए बधाई दी है। अस्मिता डे ने बताया कि देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर बहुत खुशी हो रही है।
4: मैं अपने भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीतकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और गर्व हो रही है। ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों का है जिन्होंने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद और शुभकामना दी है। मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी हुई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया को 2030 से 31 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी सप्ताह के दौरान मानसूनी सक्रियता में वृद्धि का अनुमान जताया है। विभाग ने कल से 5 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इस बीच प्रदेश में कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। बदायूं में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है जबकि फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में गंगा खतरे के निशान के पास बह रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सहित देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा होंगे कार्यक्रम में शामिल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में बुद्ध थीम पार्क का किया लोकार्पण। कहा, भगवान बुद्ध के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा थीम पार्क। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस वर्ष राज्य में 5 करोड़ घरों पर फहराया जाएगा राष्ट्रध्वज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अभियान में भाग लेने का किया आह्वान। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर स्मिता डे ने जूडो में 48 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
7: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं स्वदेशी मतलब 4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 और 10 सेकंड हुए हैं और आइए अब

शुरू करते हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम अनुरोध गीत में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत करते हैं इस पहले खत के साथ। खटर चांद खां मौर्य मंदिर पर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, अरोही मौर्य और स्वाति मौर्य। आप हैं बरेली से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची करमकर, तनु करमकर। आप हैं हमारे राजेंद्र नगर निकट तालाब के पास डीला पीर रोड जिला बरेली से पप्पू भाई, सलीम भाई और इनके सभी साथी। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। बरेली जंक्शन के पास से ये खत हमारे पास आया है। रिक्की भाई, रोमी भाई, दीपू भाई और साथ में पंकज शर्मा का। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे, गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय बैद, रानी बैद, महिमा बैद, नीतू बैद। आप हैं फजलिका पंजाब से, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा और भूषण खेड़ा, ट्वांसी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, आरवी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह और खेड़ा परिवार के सभी लोग। ये खत हमें भेजा है बठेना से बालकरण अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चढ़ौदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सोद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। आप हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराज से अभिजीत ग्वालकर, सरिता सिद्धांत, प्रिंस ग्वालकर, विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश ग्वालकर, वैशाली, श्वेता, सुमित ग्वालकर, ध्वनि ग्वालकर और इनके परिवार के सभी लोग। कृष्णा नगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दिबे, रमाताई डोंगर दिबे, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई, राहुल ताई डोंगर दिबे और डोंगर दिबे परिवार के सभी सदस्य। आप हैं वार्ड नंबर 5 बिलसी से रहमान अलवी, अनोखी बेगम अलवी, फिरासत अलवी, गुलशन बेगम अलवी, जानवी अलवी, हानिया अलवी, नजाकत अलवी, शाहीन बेगम अलवी, आहिल बाबू अलवी और आदिल अलवी। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका उत्कर्ष नेताम। आप हैं गांधी पार्क मनपुरा तहसील पिछाड़ जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से मनोज नामदेव, मंची नामदेव, शिवम राहुल, नरेंद्र नामदेव, दासू नामदेव, छोटू नामदेव, मिन्नी सपना, खुशबू रीना, रेखा ममता और समस्त नामदेव परिवार। बुड़गहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता प्रजापति और लक्ष्मीकांत प्रजापति। औरंगाबाद से राजेश सांबले पाटिल, राजेश शीतल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और इनके परिवार के सभी लोग। दुर्गा प्रसाद बीसलपुर से जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके मम्मी पापा। आप हैं कस्बा शेरगढ़ ग्राम टांडा से मोहम्मद उमर इदरीसी, परवीन, नेहा, निदा, सना, आलिया, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद कमर, इम्तियाज इदरीसी। राबर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। आप हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और अमनदीप। कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। वार्ड नंबर 6 औला बजरिया से आप हैं मोहम्मद तारिक अंसारी, महफूज अंसारी, आरिफ अंसारी, आसिफ अंसारी। तो आइए सुनते हैं आप सभी के अनुरोध पर फिल्म आन मिलो सजना का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत है, आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म का नाम है धर्मवीर, आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, और पसंद किया है आप सभी ने। बरेली जंक्शन से गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, विक्की भारद्वाज, अमन सैद, इसरार भाई, पदम भारद्वाज, सुंदर भाई, प्रदीप पाल, नमन और उमर शंकर। फूलबाग किला छावनी बरेली से विशेषदत्त भारद्वाज, शिवदत्त भारद्वाज, गंगादत्त भारद्वाज, विक्की भारद्वाज, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु, भावना, आदित्य, देवकी देवी भारद्वाज, शिवरा, नीलम भारद्वाज।

मुन्नी देवी भारद्वाज और श्री राम राठौर। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद से आप हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन, निसार मस्तान बाबा, खुर्जा यूपी से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। आप हैं गंगवार रेडियो श्रोता संघ, ग्राम दलपतपुर पोस्ट चटिया, जिला बरेली से ओमपाल गंगवार, अनिता गंगवार और इनके मम्मी पापा, ग्राम पिपरिया पोस्ट नगरिया सोबरनी, जिला बरेली से अमन गंगवार, आशा गंगवार, संध्या गंगवार, छोटे लाल गंगवार, मोहल्ला गड़ैया बरेली मस्जिद के पास से मोहम्मद कैसर शमशी, मोहम्मद अजीम शमशी, मोहम्मद सलीम शमशी, मोहम्मद नवैश शमशी, रजिया शमशी, राजा बाबू और इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं शीतल रेडियो श्रोता संघ, ग्राम बहरामपुर टेमा, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से त्रिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, ईशिका वर्मा, अंजलि श्वेता वर्मा, यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीस खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, इरफान मीना, कासिफ मीना और हाशिम मीना। सनाबत कॉलोनी सनाबत मध्य प्रदेश से ये खत हमारे पास आया था। भूड़ बरेली से रजत कुमार का खत हमारे पास आया था। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकर, योगेश मालाकर, सुनीता मालाकर, मुस्कान मालाकर, आप हैं गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी, कस्बा शीशगढ़, मोहल्ला गौड़ी से, और ये खत हमें भेजा है तहसील जाफराबाद, जिला जालना हुन से सुधाकर राय यादव, प्रशांत जागुताई, संचित प्रथमेश, सुमेश प्रणाली और सानवी। आप हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितिश कृष्णा, पीहू स्वर्णकार और समस्त स्वर्णकार परिवार। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी, अल्ताफ अंसारी, डुमराव बिहार से आप हैं डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, सरीमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एस डी अंसारी, मेहताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी, मिराज अंसारी, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलठाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाडे, ज्योति नरवाडे, आकांक्षा नरवाडे, आकाश कुमार। आप हैं जिला बदायूं, ग्राम दूनी नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सत्येंद्र कुमार कठेरिया, गुड्डू विशाल, संगम विभू, आदर्श आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरिता और अंतिमा। ये कदम भेजा है परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, असलम सैफी, एई खान, गंजुंडवारा से शमशुल कमर, जायद अली। आप हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर, बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुलनिशा बेगम, अकरम सैफी, आबाद खान। आप हैं अलवायान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद बोकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदा रानी और आलिया परवीन, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से आपने ये खत भेजा है। तो आइए सुनते हैं धर्मवीर फिल्म का ये गीत।

सतीश अनेजा बिमला अनेजा चंडीगढ़ से आपने ये ख़त हमें भेजा है और आप हैं शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू रिंगनी से दिनेश वर्मा रतरंगी से भागवत वर्मा दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन नईमा बेगम कासिम अली नदीम अली रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी आप हैं वजीरगंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से प्रेम कमल वाशने सुशीला कमल प्रभात कमल अमरीश कमल सलोनी कमल सचिन कमल नीरू कमल देविका कमल कार्तिक कमल वेदरिचा कमल और ऐश्वर्या कमल वाशने ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव पुष्पेंद्र यादव आनंद सनोज अमन सोनी अंकिता विनीता अनिता सुनीता और सूरजश्री यादव कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन पलक करण गीतू निहारकर वंशी बत्ता गणेश शर्मा शगुन शर्मा कार्तिक पवन युवराज इशिता पंकज शर्मा वीर शर्मा संदीप शर्मा चंचल शर्मा चिंकी शर्मा सूरज शर्मा पुराना होली चौक ग्राम करगहना बरेली से आप छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा जावेंद्र कुमार वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य बिमल ठाकुर सरिता ठाकुर शुभ लब गुनगुन अमर सिंह नीलो रीना नीरज बक्सेना दातागंज से गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जैतेक बिरक और मीका बिरक ऊंची मस्जिद उसैद से चांद मियाँ तबस्सुम आसा सत्तार शाहजहां अलीबाबा मर्जीना अलबख्श जी कंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम एच लल्ला एन बी मिर्जा मुनव्वर हुसैन नसरीन बेगम ककशा बेगम अनवर मियाँ गुमनाम शाह बेनाम शाह नामोलम शाह और इनके परिवार के लोग ये खत हमारे पास आया है शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी नाजरा इदरीसी नईम इदरीसी नदीम इदरीसी का अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा आशीष मल्होत्रा स्वीट बेबी गाभिया जयपाल यादव आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा और साईनाथ शर्मा आइए सुनते हैं फिल्म निशान का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में

श्रोताओं, कार्यक्रम का यह अंतिम गीत फिल्म का नाम है बरसात, आवाज़ अलख याग्निक की और पसंद आप सभी की। मोहल्ला तलैया उल्ला जागीर से फजलुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई और इनके परिवारीजन, पीर बहोड़ा बरेली से आज़ाद खान दिलशाद, मुस्तकीम तबस्सुम और परिवारीजन, आप हैं पंडित नंगला बाईपास मुरादाबाद से अख्तर हुसैन, असलम हुसैन, बीबीपुर से महमूद हुसैन, बैटला जर्सी से मकसूद हसन, निकट मोती मस्जिद कस्बा नवाबगंज जिला बरेली से नसीम अहमद, मेराज भी, मुस्कान भी, मोहम्मद रेहान, अलशबा भी, मन्नत भी, बहेड़ी से अंजुम भाई, खालिदा बेगम, कहकशा, दानिश आदिल, शबक, आप हैं वारिस अली खान, शकील अहमद, जावेद अली, अल्फिशाह खान, हमजा खान, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला भाई, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा, सवालिया खान, शोएब खान, मुस्तफा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, नखासा रोड उसैद बदायूं से डॉक्टर मसरूर हसन, अमर अब्बासी, सोहेल अंसारी, भरत यादव, अनस मंसूरी, अजवाद खान, रेखा कश्यप और इनके परिवारजन, आप हैं राम प्रसाद शर्मा, वंदना शर्मा, मनोरमा देवी, अजय शर्मा, रीता देवी, विनोद वंश, कनिष्का, होली चौक, अशरफ खां बरेली से, कोटबा नारायणपुर बाबा पट्टी से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, गांव चौराहिदा बागपत से संजय डिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल और इनके परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं फिल्म बरसात का ये गीत अलका याग्निक की आवाज़ में।

मुस्कुराती है नजर, दिल तड़प के रोता है और चोट जब लगती है

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104 FM पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का यह दूसरा सप्ताह था। यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से मिला जुला रहा। इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि दोनों सदनों ने लंबी चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन

में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सदन की बैठक 2 बजे शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद शाम 5:45 की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। 11:00 बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा जारी रखा और बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर यही मुद्दा उठाया और मांग की कि गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान दें। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक शाम 5:15 तक और पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार के विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। 11:00 बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर

2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक के पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी।
प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य व्यक्ति या विचार

0: धारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने विधेयक का विरोध किया, उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। विधेयक के समर्थन में भाजपा के बृजलाल ने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को मात्र 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। जदयू के संजय झा ने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक अहम कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, तब इस तरह प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ एनटीए ही नहीं बल्कि यूपीएससी रैंकिंग और रेलवे और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसमें सुनिए भजन, कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल।

अभी आप सुन रहे थे भजन, कलाकार थी अनुराधा पौडवाल। इसी के साथ सुगम संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट से।

तेरे घर के सामने। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को। शब्द रचना हसरत जयपुरी की थी और संगीत तैयार किया था SD बर्मन ने। और अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम दीदार यार।

और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म जानी दुश्मन का ये गीत। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की है, शब्द रचना वर्मा मलिक का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

जानी दुश्मन फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित होंगे।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। 7

0: भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष

0: बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
0: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
0: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBA स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
0: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 44 करोड़ 55 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किस्त के रूप में 379 करोड़ 35 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 193 करोड़ 95 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है।

0: वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
1: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
0: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
2: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।

0: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेलगाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
1: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कंपटीशन में से और ज्यादा फोकस करूंगा और आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल ले आऊंगा। मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और BFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
0: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
2: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म एनिमल से, आवाज़ विशाल मिश्रा की थी। गीत के बोल राजशेखर के और संगीत विशाल मिश्रा का ही।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म लाल सिंह चड्ढा से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है

0: है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म भूल भुलैया 2 से। आवाज़ें अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल समीर के और संगीत प्रीतम का।
1: तड़क तड़क भड़क दिल धड़क धड़क गया अटक अटक ना माना लट गए रे उलझ गए कैसे कोई हट गया मन से लिपट अनजाना वो नील अंग सा रूप रंग लगन समाधि प्रेम भंग चढ़ अंग अंग फिर मन में दंग और संग और खाना

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

इस धुन को सुनकर सुनने वाले के पांव न थिरके, ऐसा कोई बिरला ही होगा। हिंदी फिल्म संगीत के, खास तौर पर पुरानी फिल्मी गीतों के चाहने वालों में से शायद ही कोई होगा जिसने ये गीत ना सुना हो। जिस फिल्म का ये गीत है उसके निर्माता, निर्देशक और नायक की हम बात करने वाले हैं। इस कलाकार को हम क्या कहें, एक्शन हीरो, रोमांटिक हीरो, कॉमेडियन, ये कलाकार था ही अलबेला। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है भगवान दादा की।

भोली भाली सूरत मगर दिल के सच्चे थे भगवान दादा। पहलवानी के शौक के कारण सभी उन्हें दादा कहकर बुलाते। भगवान दादा का जन्म महाराष्ट्र में 1 अगस्त 1913 को हुआ। वास्तव में उनका नाम था भगवान आबाजी पालव, एक मिल मजदूर का बेटा। भगवान बचपन से ही फिल्मों के सपने देखा करता। हालात से मजबूर भगवान दादा को बहुत जल्द पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मुंबई आकर वो मजदूरी करने लगे और करने लगे तकदीर के बदलने का इंतजार।

मुंबई आकर भगवान दादा जब फिल्मों में काम पाने का प्रयास करने लगे तब मूक फिल्मों का जमाना था। किसी फिल्म निर्माण कंपनी में मजदूरी के साथ साथ वो छोटी छोटी भूमिकाएं भी करने लगे। अपने काम के साथ साथ भगवान दादा फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में पूरी तरह से डूब गए। बतौर अभिनेता उनकी सबसे पहली फिल्म थी क्रिमिनल, जो एक साइलेंट यानी मूक फिल्म थी। 1938 में बनी फिल्म बहादुर किसान का उन्होंने सह निर्देशन किया। 1938 से 1947 तक भगवान दादा लो बजट की स्टंट और एक्शन फिल्में बनाते रहे, जो मजदूर वर्ग में काफी लोकप्रिय थीं। उस दौरान यानी 1941 में एक उल्लेखनीय तमिल फिल्म उन्होंने बनाई वन मोहिनी, जिसमें एम के राधा और श्रीलंका की अभिनेत्री थवमणि देवी ने भूमिकाएं अदा की। 1942 में भगवान दादा ने फिल्म निर्माण कंपनी बनाई जागृति पिक्चर्स। फिल्म निर्माता तो बन गए मगर कमोबेश मुफलिसी का दौर अब भी जारी था। तुम अर...

0: नाम जी।
1: और लॉटरी लगी, सवा लाख की नहीं बल्कि लाखों की। 1947 की बात है, जागृति पिक्चर्स के लिए चेंबूर्स में जागृति स्टूडियो का इंतजाम किया गया। राज कपूर की सलाह पर भगवान दादा ने एक सामाजिक फिल्म के निर्माण की तैयारी की। नायक तो वो स्वयं थे ही, नायिका के रूप में उस समय की मशहूर अदाकारा गीता बाली को चुना गया। फिल्म के संगीत का जिम्मा उठाया भगवान दादा के जिगरी दोस्त सी रामचंद्र ने। रुपहले पर्दे पर फिल्म आई अलबेला। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और इस फिल्म की अपार सफलता ने भगवान दादा का जीवन बदल कर रख दिया। सी रामचंद्र के संगीत में बंधे गाने बेहद लोकप्रिय हुए। इन गीतों का शोला कुछ ऐसे भड़का कि सुनने वालों के दिल आज तक धड़क रहे हैं।

फिल्म अलबेला के गीतों की एक और खास बात यह है कि जिन गीतों पर नृत्य किया है भगवान दादा ने, उनके साथ डांस करने वाले बाकी कलाकार असल में नर्तक नहीं थे बल्कि स्टंट्समैन थे, जो आमतौर पर भगवान दादा के साथ एक्शन फिल्मों में मारधाड़ वाले दृश्यों में भाग लेते थे। तो अलबेला के ये खासियत भरे बाकी गीत भी सुन लेते हैं।

अलबेला की सफलता का स्वाद चखने के बाद उसी टीम के साथ भगवान दादा ने 1953 में फिल्म बनाई झमेला, जिसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। उसके बाद भगवान दादा ने एक और फिल्म बनाई लाबेला, जिसके निर्माण में उन्होंने अपनी ज्यादातर दौलत झोंक दी, मगर यह फिल्म बुरी तरह पिट गई। किस्मत ने उनसे फिर किनारा कर लिया।

आगे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए भगवान दादा छोटी छोटी चरित्र भूमिकाओं में दिखने लगे। ये फिल्में थी झनक झनक पायल बाजे, चोरी चोरी और मिस बॉम्बे। गरीबी ने अपना रंग कुछ ऐसा बिखेरा कि जुहू बीच पर बना 25 कमरों वाला बंगला बेचना पड़ा। किसी जमाने में हफ्ते के सातों दिन वो अलग अलग मॉडल की कार से जाया करते, वो सातों गाड़ियां बिक गईं। भगवान दादा के सभी सहकारी उन्हें छोड़कर चले गए सिवाय सी रामचंद्र, ओम प्रकाश और राजेंद्र कृष्ण के। 4 फरवरी 2002 दादर की एक चौल में बने दो कमरों के मकान में

0: अलबेले कलाकार भगवान दादा पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम अभी आपने सुना। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: देश विदेश की विविध संगीत सभाओं में अपना गायन प्रस्तुत करती आ रही हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन टीवी चैनलों पर आपके द्वारा प्रस्तुत अनेकानेक कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। चिन्मया भगिनी अनेक पुरस्कार एवं उपाधियों से अलंकृत हैं। आज के कार्यक्रम में चिन्मया भगिनी के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर।
2: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका। Chinmaya sisters are one of the leading and popular duo in the field of Carnatic music. With their mellifluous voices, spirited singing and strict adherence to classicism, the duo has captured the hearts of rasikas worldwide. Chinmaya sisters are senior disciples of Padma Bhushan awardee Madurai Sri T.N. Seshagopalan and Kalaimamani Neyveli Sri R. Santana Gopalan, and have successfully imbibed and observed the specialities of their guru style in their singing. They have travelled extensively and performed in prestigious venues all across India and abroad. They are A-graded artists of Akashvani and have had the privilege of performing in many special programs organized by Akashvani and Doordarshan. In tonight's concert, Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika are accompanied by Srimati Shraddha Ravindran on the violin, Sri B. Ganapati Raman on the mridangam and Sri N. Sundar on morsing.
1: कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं नाट्य राग और रूपक ताल में हरिकेशनल्लूर मुत्तैया भागवतर की रचना शक्ति गणपतिम।
2: The concert for tonight begins with the composition of Harikeshanallur Muthaiya Bhagavathar in Raga Nattai.

0: चिन्मया भगिनी अब प्रस्तुत कर रही हैं मां मव मीनाक्षी, वराली राग और मिश्र चापुताल में मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका फर्दर कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद मा मव मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन रागा वराली सेट्टू मिश्र चापू तालम।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं चिन्मया भगिनी, श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर।
1: In tonight's national program of music, we are listening to a Carnatic classical vocal recital by Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika. They are accompanied by Srimati Shraddha Ravindran on the violin, Sri B. Ganapati Raman on the mridangam and Sri N. Sundar on morsing.
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं मोहनम राग और आदिताल में रचना नन्नू पालिम्पा। रचनाकार हैं संत त्यागराज।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद नन्नू पालिम्पा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन रागा मोहनम सेट्टूर आदितालम।

0: अभी आपने सुना तनिया वर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर।
1: You just heard to a Thani Avartanam played on the Mridangam by Shri B. Ganapati Raman and by Shri N. Sundar on Morsing.
0: कार्यक्रम का समापन करते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं जौनपुरी राग और आदिताल में पापनासम शिवन की रचना मुरुगनई बजी मनमे।
1: चिन्मया सिस्टर्स कंक्लूड देयर कॉन्सर्ट विद मुरुगनई बजी मनमे, अ कॉम्पोजिशन ऑफ पापनासम शिवन इन रागा जौनपुरी सेट टू आदितालम।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के चेन्नई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: In tonight's national program of music, you just listened to a Carnatic classical vocal concert by Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika. They were accompanied by Srimati Shraddha Ravindran on violin, Sri B. Ganapati Raman on mridangam and Sri N. Sundar on morsing. With that, we come to the end of tonight's national program of music. This program was recorded at the studios of Akashvani Chennai and was broadcast from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप समाचार सुनेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
4: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MP स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
3: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी,

जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।